मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि, तदनुसार 23 जुलाई 2026, प्रातः के 5:56 और 10 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: सभा की शुरुआत रोज ही की तरह समाचारों के साथ हिंदी और अंग्रेजी में। समाचारों के लिए आइए आपको दिल्ली लिए चलते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया

0: पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सेया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोबजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएँ जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना दी है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Subhadra Ramachandran. President of North Macedonia, Gordana Silonovska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashwani correspondent in Skopje, North Macedonia, Ms. Davkova said earlier she was impressed by India's long history and also spirituality. She said after meeting President Murmu, she was very much impressed. She said after meeting President Draupadi Murmu, she strongly felt that only women can change the world.
2: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
1: Senior BJP leader, Union Minister JP Nadda, has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said it is a matter

श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ईश्वर के बारे में कुछ किताबें पढ़ने से या किसी गुरु के आशीर्वाद मात्र से ईश्वर और उनकी महिमा को नहीं समझा जा सकता। यह केवल एक अनुभूति है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इसे आपको स्वयं ही अनुभव करना होता है।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात वो हमें हजार दानों के रूप में प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा भी हम पर इसी प्रकार बरसती है। जब हम ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर हजार कदमों के साथ हमारी ओर आता है। ईश्वर इस जगत के कण कण में है, वो सदा हमारे पास हमारे सुख दुख में रहते हैं। जब भी आपके मन में किसी के प्रति बुरे विचार या घृणा आ रही हो तो ऐसे समय में अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाएं। ऐसे विकार केवल ईश्वर के मनन से ही दूर हो सकते हैं। भगवान से कुछ मांगने पर न मिले तो उनसे नाराज होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता हो, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो।

ईश्वर सत्य हैं और वो लोगों के दिलों में विराजमान रहते हैं। ईश्वर की कृपा पाने के लिए केवल सिर का झुकना ही काफी नहीं है, उनकी कृपा तो तब बरसती है जब आप सिर के साथ साथ अपने मन अपनी आत्मा को भी झुकाते हैं। जिस प्रकार फूल में उपस्थित होते हुए भी गंध किसी को दिखाई नहीं देती, दूध में उपस्थित होते हुए भी घी नजर नहीं आता,

इसी प्रकार हमें अपनी बुराई, दूसरों की भलाई, बीज में छिपा वृक्ष और सभी स्थानों पर उपस्थित ईश्वर नजर नहीं आता।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: गीता में कर्मयोग पर इतना विशद विवेचन है कि मद भगवत गीता स्वयं कर्म का पर्याय बन गई। एक सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। इसमें एक बात ये स्पष्ट होती है, हमारे हाथों में केवल कर्म ही है, फल पर नियंत्रण हमारा नहीं होता है। पुरुष व महिलाएं जब भी आराधना स्थल पर जाते हैं, श्रद्धा भाव से ईश्वर को जो कुछ भी अर्पित करते हैं, वह भी तो ईश्वर का ही दिया होता है। हमारा तो वहां भी कर्म ही होता है। जीवन के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी तो कर्म पर ही आधारित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मोक्ष का मूल आधार भी कर्म है। यह भी सत्य है कि कर्म रहित जीवन का कोई औचित्य नहीं होता। कहा भी जाता है, अकर्मण्य व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई वजूद नहीं होता है। परिवार, समाज, देश के लिए वो भार स्वरूप होता है। येषां विद्यान तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणोन धर्म है ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आप जानते हैं, किसान वर्षा होने के बावजूद यदि खेत में बिजाई और निराई नहीं करता है, खेत की समय पर उचित देखभाल नहीं करता है, तो वह अच्छी फसल की उम्मीद कैसे कर सकता है।

अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं भी अपना अध्ययन कड़ी मेहनत से नहीं करते हैं, यानी एकलव्य जैसी एकाग्रता, कलाकार जैसी सतत साधना और रियाज नहीं करते हैं, तो सफलता की उम्मीद करना बेमानी होता है। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति कार्यरत है तो उसे कर्म की प्रधानता तो स्वीकार करनी ही होगी। जीवन में कर्म ही एक ऐसा योग है जिसके करने से हम अपना अभीष्ट लक्ष्य अर्जित कर पाते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात मात्र इच्छा करने अथवा हवा में किले बनाने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, उसके लिए करना होता है उद्यम परिश्रम। उसी प्रकार जैसे जंगल में सिंह सोया रहता है, विचरण नहीं करता है, तब ऐसे में उसके मुख में स्वतः ही कोई आहार नहीं जाता है, यानी शेर को भूखा रहना होता है। कर्मयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, व्यक्ति का कर्ता भाव। जहां भी व्यक्ति कर्ता भाव बनकर कर्म करता है, वहीं प्रकृतिजन्य परिणाम जुड़ जाते हैं। अतः उचित यह है कि कर्म भी करें और कर्ता भाव का बंधन या अहंकार व्यक्ति पर हावी न हो। व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे कर्म तो करना ही होता है। कर्म ही लक्ष्य प्राप्ति अथवा सफलता का मूल स्रोत होता है। जीवन यात्रा में चरैवेति चरण वै मधु विदंती ही, यानी चलते रहो निरंतर कर्म करते रहो। अनवरत चलने वाले पथिक कर्म योगी को ही जीवन के माधुर्य और सौंदर्य के दर्शन होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:10 पर सुनिए कार्यक्रम खेती हरा वास्ते। जानकारी देंगे बोर्डो मिश्रण कैसे बनाएं। मानस गान का समय रहेगा 7:20। आज सुनवाएंगे भाग संख्या 313। 7:30 पर सुप्रभात में बात करेंगे एकता में बल है, समय का महत्व और जीवन में अनुशासन। 8:45 पर सुगम संगीत में कुछ भजन आप सुन पाएंगे। अल्लाह जिलाई बाई को सुनिए। कार्यक्रम होगा मरुमंगल। समय 9:10। 9:30 पर फिल्म संगीत और प्रातः 10 बजे आपके फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन पाएंगे। 11 बजे फिल्म संगीत और कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत 12:05 पर। 12:30 पर सुगम संगीत और 12:50 पर खेत खलिहान में जानकारी देंगे मधुमक्खी पालन लाभकारी व्यवसाय। 1:05 पर महिला जगत में सुनिए साइबर सुरक्षा और महिलाएं, बरसात के मौसम में महिलाओं की सेहत का ध्यान, महिलाओं के लिए फूड स्टार्टअप आइडियाज, चाय के विभिन्न प्रकार, साथ ही साथ समाज सेविका रजनी महंत से गुलशन मेघानी की बातचीत आप सुन पाएंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत और उर्दू सर्विस के प्रसारण दोपहर 3 बजे से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5 बजे युववाणी में बात करेंगे बुजुर्गों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, स्वच्छता और जनभागीदारी, सामाजिक मूल्यों का संरक्षण, सड़क

सुरक्षा समाज की साझा जिम्मेदारी और साथ ही साथ आज का इतिहास। शाम 7 बजे चौपाल में सुनिए, खान पान का रखें विशेष ध्यान, सड़क पर चलते समय ध्यान रखने योग्य बातें, सिंचाई की आधुनिक विधियां, साथ ही साथ बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी देंगे। सुनवाएंगे नाटक टोडियो, लेखक हैं बीआर चांवरिया, प्रस्तुति राजेश चड्ढा। शाम 7:45 पर फिल्म संगीत और संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन पाएंगे। 8:45 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से और रात्रि 10 बजे संसद में हुए प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन पाएंगे। शास्त्रीय संगीत रात्रि 10:30 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: प्रकरणात् राजनैतिक लाभस्य प्राप्त्यै प्रयत्नः अपि न समीचीनः। असौ ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवदत् यत् एतत् अन्वेषणस्य विषयः अस्ति अथ अस्मिन् विषये गम्भीरविमर्शस्य च आवश्यकता वर्तते। असौ एतदपि अवदत् यत् एषा गम्भीरा समस्या अस्ति यस्याः विषये सम्यक् निष्कपटश्च विमर्शः अपेक्षितः।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पोंडेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस देश से मनीला नगरे आयोजित क्वाड देशानां विदेश मंत्रणां उपवेशनस्य अंतराले कनाडा देश से विदेश मंत्रिणा अनीता आनंद इत्यनया सह मेलनम अकरोत्। असौ सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे अवदत् यत् भारत कनाडा देशयोः मध्ये सहकार्यं निरन्तरं सुदृढं भवति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् उभय देशयोः प्रधानमन्त्रिभ्यां निर्धारित लक्ष्याणां सिद्धि विषये वार्ता जाता। उत्तर मेसिडोनिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना गोर्दाना सल्जानोस्का दावकोवा इत्येषा अवदत् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रस्य भारतस्य राष्ट्रपतिः एका महिला अस्ति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सा एतदपि अवदत् यत् राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनानन्तरं सा अतिप्रभाविता जाता तथा महिलाः विश्वे परिवर्तनम् आनेतुं समर्थाः सन्ति इति तया एतदपि अनुभूतम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नेव दिवसे 27-99-शततमे वर्षे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्य संस्थानस्य अंतर्गते बॉम्बे केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं जातम्। 37-99-शततमे वर्षे जून मासस्य 8 दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयं दिवसः भारतस्य विकासे शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनसे न केवल सरकार के कामकाज में सुधार होना चाहिए बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भी प्रगति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गंभीर समस्या है जिस पर ईमानदारी से बातचीत होना जरूरी है।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन।

0: करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय ना हो।
1: श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसर डैन, सीनेट अध्यक्ष मिर्सोआ अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरेन ग्रिंडियानू से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दोना सिल्जानोवस्का दाफोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपिये में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में सुश्री दाफोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। अमेरिका की सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज होने के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह समुद्री मार्गों से गुजरने वाले नागरिक और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब अमरीका होर्मुज जलडब्रू मध्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। President of North Macedonia, Gordana Silvanoska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani correspondent in Skopje, North Macedonia, Ms. Davkova said earlier she was impressed by India's long history and also spirituality. She said after meeting President Murmu, she was very much impressed. She said after meeting President Draupadi Murmu, she strongly felt that only women can change the world.
3: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
2: Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. Prime Minister made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Vikasit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence at 7 Lok Kalyan Marg focused on strengthening governance, improving interministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said it is a matter

0: of investigation and requires in-depth discussion. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion.
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं. What are the factors which are leading to paper leak? Who are the people involved? And how the central government has responded? जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है?
0: The union minister said that NDA government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has taken up this matter very seriously. He reiterated the government's stand that it is ready for a discussion on NEET issue in parliament and opposition should decide the duration of the debate. The centre has approved two electronics manufacturing clusters, EMCs, in Tamil Nadu with a combined investment of over 1,012 crore rupees. The move is aimed to strengthen the state's electronics manufacturing ecosystem and further India's push towards self-reliance in the sector. The announcement was made by Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwani Vaishnaw, in a written reply in the Lok Sabha yesterday. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Canadian counterpart, Anita Anand, on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines yesterday. In a social media post, Dr. Jaishankar said that India-Canada cooperation has been steadily growing. He said that the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. The 23rd Commonwealth Games, CWG, will begin today in Glasgow, Scotland. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lavlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. It will feature just 10 sports, 9 fewer than at Birmingham 2022, with competitions spread across 4 venues within an 8-mile corridor. Athletics, swimming, 3x3 basketball, track cycling, weightlifting, bowls, artistic gymnastics, netball, boxing and judo make up the schedule for the game. In men's cricket, first T20 international of 3-match series between India and Zimbabwe will be played today in Harare. The match will begin at 4:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती हरा वास्ते. आज जानकारी देंगे बोर्डो मिश्रण कैसे बनाएं.
3: किसान भाइयों राम राम. किसान भाइयों अपना इस क्षेत्र गवा अपना जो किसान भाई है वे बागवानी करे है और बागवानी करता टाइम कई बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई बार यहाँ हो जाए कई तरह की हरी बीमारी कीड़ा कांटा लाग जाए और अपन पतो ना हो तो कई बार अपनी फसल ने नुकसान हो सके. तो किसान भाइयों आज थाने जानकारी बता दें बोर्डो मिश्रण जो को है. बोर्डो मिश्रण एक प्रभावशाली फपूंद नाशक है और बिया देखा तो सगला जगह फलदार पौधा है. बाम बोर्डेक्स मिश्रण और पेस्ट को जो को महत्व है बहुत ज्यादा है. किसान भाई कॉपर सल्फेट है, चुन्नू है, पानी है, अंग मिश्रण चू बनाए गयो वो जो को पेस्ट है बिंगो प्रयोग पौधा पर फपूंद नाशक के तौर पर आप कर सका. पौधा की काट छांट के बाद गां पौधा का तना पर फपूंद से बचना के लिए आपने इन पदार्थों का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इन चीज का फायदा भी आपने मिले. तो किसान भाई बनाने की विधि की है बातन बता दें. बोर्डेक्स जो को मिश्रण है वो 2:230 रखनो है. कॉपर सल्फेट जकान अपन नीलो थोतो भी कह दे वो अपन 2 किलोग्राम लेनो है. ये चुन्नो जो को है वो अपन 2 किलोग्राम और पानी की जी मात्रा किसान भाई वो अपने 230 लीटर रखनी है. किसान भाई 2 किलोग्राम कॉपर सल्फेट ना अपा 115 लीटर पानी का घोल लेवा. ठंडा पानी का जो कॉपर सल्फेट है वो थे भी जनों के कम घुले तो इन वास्ते सर्दी का मौसम में अपन गर्म पानी है जो को खोसो पानी है बिंगो इस्तेमाल कर लेना चाहिए और 2 किलोग्राम चुन्ना ने आप थोड़ा सा पानी में घुल गए और बुझा लेना चाहिए ताकि भी जी की गर्माश है वह खत्म हो जाए. तो वो जो को घोल वो अपने 115 लीटर तैयार कर लेना है और बाद में क्या करना है कि दोनों जो का घोल है भी अपने मिला लेना है. ये किसान भाई दूसरा तरीको है जकान आप बोर्डेक्स पेस्ट इनमें की है कि कॉपर सल्फेट अपने 2 किलोग्राम रखनी

है, चुन्नू है वो भी 3 किलोग्राम रखना है, और पानी की जिसकी मात्रा है भाभी 30 लीटर अपन ने रखनी है। तो 2 किलोग्राम कॉपर सल्फेट ने आपा थोड़ा सा पानी में पहला घोल लिया, फिर 15 लीटर पानी को अपन घोल तैयार करके, बीम 3 किलोग्राम चुन्नू है वो थोड़ा सा पानी में घोल के और बुझा के, और बाकी को जो को बचड़ो पानी है वो मिला के अपन 15 लीटर जो को घोल है वो तैयार करना है। बीम बाद में किसान भाई अपन दोनों घोल है आप बढ़िया तरीका से मिला देना है। इन तरह से वो पेस्ट तैयार हो जाएगा, और जो को तैयार पेस्ट आप अपने पौधा का जगह घाव है या फिर कई जगह छाल उतरेड़ी हुए बठा पानी ने लगाना है। इन सफेदी को जो को मिश्रण है किसान भाइयों वो भी अपने तैयार करना है। तो कॉपर सल्फेट जखन आप नीलो तो केवा थाने बताई दियो वो अपन 2 किलो रखना है, चुन्नू है वो 25 किलोग्राम रखना है, सरेस है वो भी अपन 2 किलो रखना है, और पानी की जिसकी मात्रा बा अब की बार 100 लीटर रखनी है। 2 किलो कॉपर सल्फेट ना थोड़ा सा पानी में घोल लिया पहला, फिर 25 किलोग्राम चुन्नू है बिन पानी में घोल के ठंडो कर लिया, सरेस ने गर्म पानी में घोल लिया, तो तीनों ने मिला के अपन 100 लीटर जो को घोला वो तैयार कर लेवा, और बाद में ई मिश्रण ने पौधा का तना के ऊपर लगा देवा। ये किसान भाइयों बोर्डो पेंट है, पेंट हुआ थाने बताई देंगे पेंट करना यानी कि कड़ी करनी लिपा पोती करनी। तो इंगो जो को तरीको है किसान भाई वो थाने बता देवा, नीलो जो को थोतो है वो अपन 2 किलो रखनो है, और चुन्नू है वो 3 किलो रखनो है, और अलसी को जो को तेल है किसान भाइयों वो अपन 3 लीटर रखनो है। तो नीले थोता ने गर्म करके सफेद अपन कर लेना चाहिए। किसान भाई कई किसान भाई यह बात सोच वो करे कि वो जो को मोनोहाइड्रेट नीलो थोता है वो किसो है, तो नीला थोता ने गर्म करके आप सफेद कर लेवा बिन आप मोनोहाइड्रेट नीलो थोतो के। मोनोहाइड्रेट जो को नीलो थोते है चूना को जो को बारीक चूर्ण ने आप अलसी के तेल में मिला के है वो मिश्रण तैयार करना है, और बाद में अपना जगह अपना बागवानी है अपना जगह पौधा है भंग माएंगे प्रयोग करना चाहिए। पर आम चीजें ने तैयार करता टाइम किसान भाइयों कई तरह सावधानियां रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो आ है किसान भाइयों का सारा पदार्थ जगह भी अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए। कई बार यहाँ ना आप चुनू बाजारों ले गया वहां भी माटी राख है मिलड़ी हुए तो अपन एकदम अच्छी गुणवत्ता का जगह पदार्थ है बेराखना है, और कॉपर सल्फेट और चूना जो घोल है किसान भाइयों वो अलग अलग बर्तना में तैयार करना है। यहाँ नावे का एक ही बर्तन या एक ही मटको ले लेवा बिगवा सारी चीजा ने घोल लेवा। इनके अलावा किसान भाइयों अपन कॉपर सल्फेट है वो धातु का जगह बर्तन है जहाँ लोह है स्टील है तांबो है बंग बर्तन के अंदर अपन कत्ते नहीं घोलना चाहिए। तो अपन ने इन खातर की करना है कि मिट्टी का जगह बर्तन है या फिर प्लास्टिक का जगह बर्तन है बंग माँ ही इन घोलना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर अपन घोल है जो वो ताजो ही तैयार करना चाहिए। कई बार तैयार करके घोल रख दें और फिर बाद में महीना 15-20 दिन तक बर्तन तो फिर वो यहाँ केस का के ज्यादा असरकार कौन रही बनी, और ज्यादा गर्मी में बोर्डेक्स जो को मिश्रण है वो अपने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यानी भी कोई छिड़काव है जो को कतई नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों मिश्रण में जो कॉपर सल्फेट की मात्रा ज्यादा होगी नहीं तो फिर वह जो पौधा होगा जो कोमल भाग है कोमल टहनियां है बने एकदम यहाँ केस का जला देसी। तो अपन इनको पत्तो लगाने खातिर एक पेपर आवे जकन आप लिटमस पेपर के देवा, तो बी पर आप पेल पो थोड़ा सोक लगा के जांच पर रख लेवा, जे वो पेपर लाल रंग हो जावे तो अपन भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कॉपर सल्फेट की मात्रा जो अपने घोल में ज्यादा है तो अपन के करना है कि थोड़ा सा अलग चुनो और मिक्स कर देना चाहिए ताकि बिंगी अनुपातिक जी मात्रा है बा सही हो जाए। तो आ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना जरूरी है, और बढ़िया एकदम बोर्डो मिश्रण को जो को घोल है वो तैयार करके और जो कि फफूंद नाशक बीमारियां हैं बने आप खत्म कर सका। तो अब मैं खेत का नहीं चलूँ सा राम राम सा राम राम।

प्रातः के 7:20 हुए हैं। समय है कार्यक्रम मानस गान का।

हे राक्षसराज, तू बड़ा अभिमानी है। मैं तो रघुनाथ के सेवक का सेवक हूं। यदि प्रभु के अपमान का विचार न होता तो मैं तुझे धरती पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके तेरी स्त्रियों सहित सीता जी को यहां से ले जाता, किंतु ऐसा करना मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जो जीते जी मृतक के समान है, उसे मारने से क्या लाभ? उल्टी दिशा में चलने वाले कामी, कंजूस, मूर्ख, दरिद्र, बदनाम, अत्यंत वृद्ध, चिरंतन रोगी, हर पल क्रोधी, भगवत विद्रोही, वेद और संतों का विरोध करने वाले, केवल अपना पेट भरने वाले, पर निंदक और महापापी, ये 14 प्रकार के प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान होते हैं। बस यही सोचकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। तू अब ऐसे वचन न बोल जिससे मेरा क्रोध और भड़क उठे। अंगद के ये वचन सुनकर रावण क्रोध से कांपने लगता है। सोचता है, इस वानर का काल आ पहुंचा है। श्री राम के प्रति अवमानना के शब्द सुनकर अंगद ने दांत किटकिटाकर घोर गर्जन के साथ अपने हाथ धरती पर पटके तो भूचाल सा आ गया। रावण के सभासद एक दूसरे पर गिर पड़े। रावण के जो

अभी आप सुन रहे थे मानस कान। आज हमने आपको सुनाया भाग संख्या 313। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

दोस्तों, समय हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। समय वो चीज़ है जो लौट कर नहीं आ सकती। समय वो चीज़ है जिसे कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। समय हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें जीवन के अंत तक हर पल का सदुपयोग करना आवश्यक है। समय को लेकर एक प्रसिद्ध कहावत है कि जो हमें समय के महत्व को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। यदि आप एक वर्ष का मूल्य जानना चाहते हैं तो उस छात्र से पूछें जो किसी विषय में फेल हो गया। यदि आप एक मिनट का मूल्य जानना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति से पूछें जिसकी बस छूट गई हो। यदि आप एक सेकंड के 100वें हिस्से का मूल्य जानना चाहते हैं तो उस एथलीट से पूछें जिसने ओलंपिक में रजत पदक जीता हो। यह है समय का महत्व। एक मिनट से अगर आपकी बस या ट्रेन कभी छूट गई तो आप सिर्फ एक मिनट लेट नहीं हुए। यदि आप किसी विवाह समारोह या किसी की डेथ पर जा रहे हैं तो आप जीवन भर के लिए लेट हैं। यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप शायद 6 महीने या 1 साल के लिए लेट हैं। कितनी देर हम लेट हैं उससे ज़्यादा महत्व इस बात का है कि हम कहाँ और किस काम से जा रहे थे। आजकल हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपना बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं। ये हमारा इतना समय ले लेते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कितना कुछ खो रहे हैं। समय बिताने के साथ इन ऐप्स का उपयोग नई चीज़ें सीखने के लिए यदि हम नहीं कर रहे तो इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि इच्छा है या जुड़े रहना चाहते हैं तो एक समय सीमा निर्धारित करें, 30 मिनट, 1 घंटा, है ना। समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन हमारे जीवन को बदल सकता है। हमें पता ही नहीं लगा कब हम छोटे थे, कब किशोर हो गए, जल्दी ही व्यस्क हो गए, बूढ़े भी हो गए। कहा जाता है कि वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। यदि हम अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर काम करें तो हमारा भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाता है। सुबह जल्दी उठें, इससे आपका दिन लंबा होगा। प्रत्येक दिन की शुरुआत एक कार्य सूची बनाकर करें। कार्यों को उनकी महत्ता और तात्कालिकता के आधार पर प्राथमिकता दें। विभिन्न कार्यों पर व्यतीत समय का हिसाब रखें। खुद को व्यवस्थित करें। गैर जरूरी कार्यों को, गैर जरूरी गतिविधियों को हटा दें। पहले से योजना बनाएं और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दिन की शुरुआत स्पष्ट विचार के साथ करनी है कि उस दिन क्या आवश्यक करना है। अंत में समय हमारे पास मौजूद सबसे अनमोल चीजों में से एक है। समय का सम्मान करना होगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा।

दोस्तों, समय के साथ साथ अनुशासन भी जीवन में बड़ा ज़रूरी है। एक आम कहावत है कि यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो दूसरे आप पर कैसे विश्वास करेंगे। जीवन में कुछ भी हासिल करने का रहस्य उसे आदत बना लेना है। कहते हैं किसी भी काम का 23 दिनों से अधिक अभ्यास करने पर वो आदत बन जाती है, एक अनुशासन बन जाता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने खुद पर भरोसा किए बिना किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त की हो। अनुशासन से चलते रहें तो हिम्मत, हौसला, मेहनत ये पहाड़ों को भी हिला सकती है। सशक्त चिंतन शक्ति ही सफल और प्रभावशाली व्यक्तियों को एकजुट करती है। अनुशासन के बिना आप मानसिक शक्ति और सहन शक्ति विकसित नहीं कर पाएंगे। यदि लोग अनुशासन में रहते हैं, आप यदि अनुशासन में रहते हैं तो दूसरों को समझाने के लिए आपको किसी प्रकार के प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट है। इसलिए उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है, इसलिए सारा संसार उसे स्वीकार करता है।

दोस्तों, बचपन से ही हम सुनते आए हैं एकता में बल है। यदि हम साथ मिलकर रहें, एकजुट रहें, एक दूसरे के साथ सहयोग करके चलें, तो जाहिर सी बात है हमें, हमारे समाज को, हमारे देश को कोई नहीं तोड़ सकता। अलगाववादी ताकतें हर समय देश तोड़ने पर, हमारे प्रेम को तोड़ने पर जोर लगाती हैं, लेकिन जब तक हम एक हैं, जब तक हमें स्वयं पर विश्वास है कि हमारी एकता, हमारी अखंडता ऐसे ही सलामत रहेगी, तब तक हमें कोई नहीं तोड़ सकता।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म क्रीचर का गीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का सुप्रभात कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
6: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान कर

0: देखते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचे।

0: गी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
1: What is the most important?
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: With deep feelings, emotional intelligence.
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
4: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
5: पीओजे के में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर हैं।

0: हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूँ। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज सिटीजन वेलफेयर मस्ट रिमेन एट हार्ट ऑफ रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स शुड बी डिजाइंड अराउंड पीपल्स नीड्स। Union Minister JP Nadda says government ready to discuss neat paper leak issue in parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today, and 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
3: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Highlighting the rapidly evolving governance landscape, Mr. Modi stressed the need to modernize governance processes in line with changing times. Calling for greater convergence among ministries, he said the vision of Viksit Bharat should become a Jan Andolan, with the country's youth forming the foundation of this national mission. Addressing the issue of drug abuse among young people, Prime Minister stressed the need for an institutional mechanism that promotes coordination across departments and integrates youth-centric initiatives to tackle the challenge more effectively. On sports, Mr. Modi advocated an integrated development strategy to position India as a global sporting destination. Prime Minister also highlighted the transformative potential of the PM Kusum scheme in strengthening the agriculture sector through wider adoption by farmers. He further emphasized the need for a global mapping of skill requirements to align India's workforce with emerging international opportunities and future employment demands. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the neat paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in

0: question, oil on the boil again, writes, Brent spot prices have gone well past $90 a barrel with the war clouds over West Asia. The prospect for costlier oil is bad news for countries like India that imports 88% of its energy requirements, which would widen its trade deficit and push up inflation. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और अवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत के इकदाम तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपये मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगी और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अलाक्वामी T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद हर इस्लाह का बुनियादी मकसद होना चाहिए और हुकूमत के इकदाम अवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर तैयार किए जाने चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाहात को न सिर्फ हुकूमत के कामकाज को बेहतर बनाना चाहिए बल्कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफ़र को भी तेज़ करना चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वज़ीर आज़म मोदी ने यह बात सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कही, जिसमें देही तरक्की, ज़राअत, समाजी बहबूद और दिगर मुतल्लिका शोबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। ये मीटिंग वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मुनाकिद हुई, जिसमें हुक्मरानी को मज़ीद मुअस्सर और मजबूत बनाने, मुख्तलिफ वज़ारतों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाने, अवामी फलाह के लिए इस्लाहात पर तेज़ी से अमल दरामद करने पर ज़ोर दिया गया। तेज़ी से बदलते हुए हुक्मरानी के मंजरनामे को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने बदलते हुए वक्त के मुताबिक हुकूमत के निज़ाम को जदीद बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि विकसित भारत का विज़न एक जन आंदोलन बनना चाहिए, जिसमें मुल्क के नौजवान इस कौमी मिशन की बुनियाद हों। उन्होंने नौजवानों में मुनशियात के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तआवुन और नौजवानों पर मरकूज़ प्रोजेक्टों को मरबूत करने के लिए एक इदारा जाती निज़ाम कायम करने की ज़रूरत है, ताकि इस चैलेंज से ज़्यादा मौसर अंदाज में निपटा जा सके। इसके अलावा खेलों के शोबे में भी वज़ीर आज़म मोदी ने जामे और मरबूत तरक्की पर ज़ोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक जामे हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए, ताकि भारत को खेलों के आलमी मरकज़ के तौर पर कायम किया जा सके। उन्होंने PM कुसुम स्कीम की ज़रिए शोबे की कायापलट की सलाहियत को भी उजागर किया और कहा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस स्कीम को अपनाएं तो इससे ज़राअत को नुमाया फ़ायदा पहुंच सकता है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दुनिया भर में दरकार महारतों का जामे जायज़ा लिया जाए, ताकि भारत की अफरादी क़ुव्वत को आलमी सतह पर उभरने वाले रोज़गार के मौक़े और मुस्तक़बिल की मुलाजमतों की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार किया जा सके। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि तलबा की जानिब से उठाए गए नीट पेपर लीक मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए और इस मामले से सियासी फ़ायदा उठाना मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ये जाँच का मौजू है जिस पर तफसीली बातचीत की ज़रूरत है। जनाब नड्डा ने कहा कि पेपर लीक एक संगीन मसला है

0: जिस पर संजीदगी से गौर खोज जरूरी है।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पोंडेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
0: मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया है। उन्होंने हुकूमत के इस मौकिफ को दोहराया कि पार्लियामेंट में नीट के मामले पर बहस के लिए वो तैयार है और अपोजिशन बहस के दौरान ही का फैसला कर सकती है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट ही वो सबसे मुनासिब मौजू फोरम है जहां इस मामले पर तफसीली और जाम बहस की जा सकती है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि अपोजिशन पेपर लीक जैसे संगीन मामले पर बामानी पार्लियामानी बातचीत की बजाय इल्ज़ाम तराशी का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कौमी तशवीश का मामला है जो किसी एक हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है, लेकिन फिर भी अपोजिशन इस मामले को सियासी रंग देने में लगी हुई है।
1: मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा, क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? ये स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, आपका उद्देश्य एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है।
0: जनाब नड्डा ने कांग्रेस और अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों में मुख्तलिफ इम्तिहानात के पेपर लीक के मामले भी उठाए। उन्होंने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर जानिबदारी बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल पूछा कि वो इन वाकयात पर बात क्यों नहीं करते। जनाब नड्डा ने जनाब गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस मामले से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, जो कि अफसोसनाक है। जनाब नड्डा ने कहा कि जनाब गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई प्रेजेंटेशन में 150 इम्तिहानी पर्चों के लीक होने से मुतालिक बात की। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि ये जांच का मौजू है और हुकूमत बिलाशुबा इसकी जांच करेगी और मुल्क और अवाम के सामने सच्चाई को पेश करेगी। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बामानी मुबाहसे के लिए तैयारी की बात दोहराई है। लोकसभा में कल इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत मुल्क के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामानी जवाबित के तहत इस मामले के सभी पहलुओं पर बामानी मुबाहसे के लिए तैयार है। जनाब रिजिजू का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब नीट पेपर लीक मामले तलबा के मुजाहरों समेत मुख्तलिफ मौजूदात पर पार्लियामेंट की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामा आरई की वजह से कल लगातार तीसरे दिन भी रखनांदाजी का शिकार रही। इस दौरान राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे के बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर हुकूमत ये यकीन दहानी कराए कि नीट पर्चा लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे गए खत में जनाब वांगचुक ने दोनों वजीरों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मंगल की रात अस्पताल में उनकी अयादत की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल मरकज़ और दिल्ली पुलिस से उन दरख्वास्तों पर जवाब तलब किया है जिनमें पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने वाले मुजाहरीन के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया था। अदालत ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो पुलिस कार्रवाई से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड महफूज रखें जिनमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं। अदालत ने मुतालिका हुकाम को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली समाअत 11 सितंबर को होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने इत्तला दी है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अगले हुक्मनामे तक सुबह 7:30 बजे से 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। DMRC ने कहा है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एटमी तवानाई के महकमे के ममलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत साल 2033 तक स्वदेशी बनावट के कम से कम 5 छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियाई रिएक्टर्स को फाल करने का इरादा रखती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में डॉक्टर सिंह ने बताया कि पार्लियामेंट ने शांति कानून 2025 को नाफिज करते हुए प्राइवेट शराकत दारों के लिए न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे के दरवाजे खोल दिए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि

0: एटॉमिक रिसर्च सेंटर 220 मेगावाट का एक भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, 55 मेगावाट का एक रिएक्टर और एक हाई टेंपरेचर गैस कूल्ड रिएक्टर डेवलप कर रहा है जो हाइड्रोजन पैदा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने न्यूक्लियाई तवानाई मिशन के तहत ऐलान करदा साल 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियाई बिजली सलाहियत हासिल करने के मकसद से रोड मैप वज़ा किया है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि रोड मैप के मुताबिक 8.78 गीगावाट की मौजूदा न्यूक्लियाई बिजली की सलाहियत के साल 2031-32 तक 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। ये हौसलियाबी उन प्रोजेक्टों के ज़रिए हासिल की जा सकती है जो फ़िलहाल नफाज के मुख्तलिफ मरहलों में हैं। नई दिल्ली से कमोदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मरकज़ ने तमिलनाडु में मजमूई तौर पर 1012 करोड़ रुपये की सरमायाकारी से दो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मिक्स्ड EMC को मंजूरी दी है। इस कदम का मकसद रियासत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निज़ाम को मुस्तहकम करना और इस सेक्टर में भारत को खुद इन्हेसारी की सिमत में आगे बढ़ाना है। यह ऐलान कल लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने दी। दोनों मिक्स को मनालुर और पिलापक्कम में फ़रोग दिया जाएगा। मनालुर EMC 474.3 एकड़ रकबे पर फैला होगा और इस प्रोजेक्ट पर 587.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि पिलापक्कम EMC की तामीर 379.3 एकड़ में 424.55 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से दो रोज़ा रोमानिया दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू रोमानिया के सदर निकोसरदान, उबूरी वज़ीर आज़म इली बोलोयान, सीनेट के सदर मिर्सिया अब्दुरिडियान और चेंबर ऑफ डिप्यूटीज़ के सदर सोरिन ग्रिंडेन्यू से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया का रोमानिया भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के अराकीन से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। सदर जमहूरिया फिलवक्त शुमाली मकदूनिया के तारीखी दौरे पर हैं। ये मकाम न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती बल्कि गोनागों तारीख और आलमी अहमियत की हामिल लेक ऑर्हिड के लिए जाना जाता है। इससे पहले शुमाली मकदूनिया की सदर गोर्डाना दावकोवा ने कहा कि यह फ़ख्र की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत की सदर एक खातून हैं। स्कोपिये में आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए मोहतरमा दावकोवा ने कहा कि वो भारत की तवील तारीख और रूहानियत से काफ़ी मुतासिर हैं। आज नशरियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है। साल 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो नशरियात का आगाज़ हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम तब्दील करके इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR रख दिया गया। ये दिन भारत की तरक्की, तालीम के फरोग और सकाफती विरसे के तहफ्फुज में नशरियात के अहम किरदार को उजागर करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये दिन भारत की तरक्की, तालीमी आगाही और सकाफती विरसे के तहफ्फुज में नशरियात के अहम रोल को उजागर करता है। आज़ादी की तहरीक से लेकर मुल्क की तामीर तक रेडियो ने मालूमात की तरसील, खानदगी के फरोग, सेहत से मुतालिक आगाही पैदा करने और ख़ासतौर पर देही इलाकों में ज़रिए मालूमात पहुँचाने में नहायत अहम किरदार अदा किया। कई नस्लों से आकाशवाणी अपने नस्ब उलैन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ऐन मुताबिक आवाम की को मालूमात, तालीम और तफरीह फराहम करता रहा है। नई दिल्ली से दिल नशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया समीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि सरहदी इलाकों में अमन इस्तेहकाम भारत और चीन के दरमियान मामूल के ताल्लुकात की पहली शर्त। अखबार इनकलाब की सुर्खी है खातून अरकान पार्लियामेंट पर काबिल एतराज तबसरे की पादाश में रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल। मुल्क में तैयार आबदोज शिकन जंगी जहाज INS मालवन बहरिया के बेड़े में शामिल, इस खबर को भी अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार की एक और सुर्खी है अपोजिशन की हंगामा आरई की वजह से लोकसभा में मुसलसल तीसरे दिन वक्त पर सवाल नहीं हो सका। अखबार इनकलाब लिखता है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दाना हमले में हेड कांस्टेबल की मौत। अखबारात की बैन अलावी खबरें इस तरह हैं ईरान के साथ मुजाकरात के लिए तैयार हैं वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान ईरान के जवरी

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हमारे जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। राज्य में जनवरी 2025 के बाद 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गए। प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश। और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आज 12 जिलों में अति भारी बरसात का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, साथ ही ईमानदारी से व्यापक चर्चा की जानी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा की अवधि तय और सभी पहलुओं पर खुलकर बात हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दे।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से 3 महीने पहले शुरू किया गया संबल सखी अभियान महिला सशक्तिकरण का जन आंदोलन बन चुका है। श्री शर्मा कल शाम मुख्यमंत्री निवास पर संबल सखी यंग प्रोफेशनल से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संबल सखियों द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प संबल सखियों के समर्पण से ही साकार होगा। मुख्यमंत्री ने संबल सखियों से संवाद करते हुए उनके विचार भी जाने। प्रदेश में जनवरी 2025 के बाद 1,56,000 से ज्यादा नए जरूरतमंद लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गए हैं। साथ ही गिव अप अभियान के तहत करीब 93 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। श्री गोदारा ने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग 4,46,00,000 लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। इस सीमा के पूरी हो जाने के कारण नए पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया।

0: आ रहा था। ऐसे में नवंबर 2024 से शुरू हुए गिव अप अभियान के तहत सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। श्री गोदारा ने बताया कि ये प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धियों में से एक है जो गिव अप अभियान के कारण संभव हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों से परामर्श कर इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इससे गंभीर एनीमिया की स्थिति को माइल्ड एनीमिया में बदला जा सकेगा और गर्भवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने कहा कि गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए चलाए गए 5 दिन के अभियान के दौरान ये तथ्य सामने आया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लक्षणों में अधिकतर एनीमिया से संबंधित है। श्रीमती राठौर ने कल स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण में कम प्रगति वाले करौली, फलौदी, कोटपुतली बहरोड, जोधपुर, बालोतरा, खैरथल तेजारा, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर और डीग जिले के CMHO को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रदेश के सहकारी भंडारों को विभिन्न मापदंडों के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सभी महाप्रबंधकों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। शासन सचिव ने कल जयपुर में सहकारी भंडारों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें भंडारों की मासिक रैंकिंग जारी करते हुए उन्होंने बताया कि अजमेर भंडार विभिन्न मापदंडों में पहले स्थान पर रहा है, वहीं बीकानेर दूसरे और कोटा तीसरे स्थान पर रहा है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में आज ही के दिन भारतीय प्रसारण कंपनी के अंतर्गत बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को भारतीय प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील हो गई। ये दिन भारत के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। प्रसारण ने भारत के विकास में अहम योगदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो सूचना प्रसार और एकता को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली माध्यम था। स्वतंत्रता के बाद इसने ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता और कृषि ज्ञान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। आकाशवाणी अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को सार्थक रूप से साकार करते हुए जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने का काम कर रहा है। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से कई जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बारा, बूंदी, दौसा, झालावाड़, कोटा, पाली, राजसमंद और टोंक जिलों में कहीं कहीं भारी तो बारा जिले में अति भारी बरसात हुई। बांसवाड़ा में 7 इंच पानी बरसा, ब्यावर, भीलवाड़ा और अजमेर में तेज बरसात हुई। पाली में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश बरसने से झरने बहने लगे हैं। जालौर और जयपुर में भी रुक रुक कर बरसात का दौर जारी रहा। हनुमानगढ़ में मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिले के कई स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। जोधपुर में भी तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। बाड़मेर के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज पानी बरसा। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: तीसरे पहर मौसम का मिजाज बदल गया। देखते ही देखते काली घटाएं घिराई और बरसात का दौर शुरू हो गया जो देर शाम तक जारी रहा।

0: इस दौरान जिला मुख्यालय के अलावा चौहटन, धनाऊ और सेडवा समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई। शिव इलाके में तेज आंधी के चलते बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इस बीच किसानों में खुशी की लहर है। वहीं तापमान में गिरावट आने से लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली है। आज घने बादल छाए हुए हैं और मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: मौसम केंद्र जयपुर ने आज 12 जिलों में अति भारी बरसात का और कई अन्य जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार आज बांसवाड़ा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर और उदयपुर में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और अति भारी बरसात की आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। राज्य में जनवरी 2025 के बाद 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गए। प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश। और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आज 12 जिलों में अति भारी बरसात का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मुरमंगल में आज हम आपको सुनवाएंगे लोक गायक अल्लाह जिलाई बाई के गायक कुछ लोकगीत।

मीडियम वेव 320.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतकर से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अयुब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वरों में, गुलजार का लिखा और आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया नगमा। फिल्म का नाम है घर।

طيب سنتي، उम्मीद फिल्म से मोहम्मद रफ़ी को गीत शकील बदायूनी का और संगीत रवि का।

फिल्म राजपूत का गीत सुनिए, किशोर कुमार के स्वरों में गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र।

0: यार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए अब सुनते हैं फिल्म सोहनी महिवाल का गीत, आशा भोंसले और शब्बीर कुमार के स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम अनुरोध की।

दूसरा आदमी फिल्म का नगमा अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वरों में। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई थी कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका, भोपाल से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता लाली और सारा परिवार, एटा से नबी हसन, शहनाज, नवेद, सुहेल, अनम, यशफ और रसीद, रतलाम से जगदीश धाकड़, रंजूबाई, युवराज सिंह, शिवांगी धाकड़, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत गुरकीरत और गुरशब्द सिंह, नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा, खरगोन से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी और रमेश चंद्र वर्मा, चक 58 NP रायसिंह नगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी मलखट, हरवंश लाल, बनवारी लाल, गोपी राम, ललित कुमार और नरेंद्र कुमार मलखट, खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी, गांधीनगर से जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष, दीपल, लखवाली हेड से मास्टर भवनलाल, कृष्णा, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकना राम और उनके साथी, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी, जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी। आइए अब सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से उदित नारायण को, गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का, पसंद आप सबकी। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, कोहला हनुमानगढ़ से महावीर, सुथार, नरेंद्र, अमरजीत, सोनील, मोहन, पवन और उनके साथी, गंजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, विजय ताइडे, जिगांव से बसंत भोजने और PS नवहानकर, डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया नारंग, नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, उज्जैन से विनोद मुनत, नेहा, दीपक, मयंक, चेतन, दीक्षा और कुश, यहीं से विजय पाटिल, पद्माबाई, चिरंजीवी, ज्ञानेश्वर कुमारी, तेजस्विनी पाटिल,

जींद से जसबीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये नगमा।

0: दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। श्रीकरणपुर से पवन कटारिया, समीर कटारिया, शालू और उनके साथी। सूरतगढ़ से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह और उनके साथी। सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार और रिंकी। बिजनौर से मोहम्मद वक्कार, फरीदी इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन, प्रवीण, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना कौसर। केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता चांदनी, विश्वजीत, आशीष सूद। वड़शिंगी महाराष्ट्र से अनमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। करणपुर से राजू टुटेजा, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मीनू, शिव सेठी, स्माइल और पवन गुज्जर। गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, हरीश जौहरी। गांव घुमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमन्ना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढूकिया और ईवा धारणिया। खोखरावाली श्रीगंगानगर से विनोद बरासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बरासा। आप सभी ने पसंद किया है किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वरों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया नगमा। फिल्म का नाम है दिल्ली का ठग।
1: ये रातें, ये मौसम।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: सूरतगढ़ से लेखराज, पवन कुमार, रवि कुमार, सुरजीत सिंह, कुंदनलाल, युवराज सिंह और उदय सिंह। नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, नगेत्यानंद, ओमकार, साई गायकवाड़। असम से हितेंद्र दास। गंजरुंडवारा से मास्टर खिल्लू, परवेज बेगम, इमराना, नवाजिश, दानिश और अमन अफरीदी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। भोपालगढ़ से धर्मेंद्र छींपा, कपिल छींपा, इंशान और पूजा परिहार। जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित गे बेबी गर्वी, हिमाक्ष चौहान। बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक येले। भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश कड़वासरा और युधव। फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश और डॉक्टर मदनलाल वर्मा, साथ ही साथ कीर्ति सिदक और प्रियांशी वर्मा। हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, योगी, बब्बू, डब्बू। कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म मधुमति का गीत। मुकेश के स्वरों में गीत शैलेंद्र का और संगीत सलील चौधरी का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण, नीति, पवनीत, विक्रमजीत ग्रोवर। अहमदगढ़ पंजाब से मोहम्मद अनवर, रवीना, आफिया, सना, समा, हिना, शकीला, जस्मीन, रजिया, अख्तर अंसारी, सूरज, मोहम्मद अंसारी, जावेद और उनके साथी। केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल, मगनलाल, बिंदा, मुंशीराम, महेंद्रा, हीरालाल, गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद, दाइमा। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक, मोहम्मद खान, समीम, इमरान, इरफान और जिशान। जोगीवाला से प्रेम, सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। सुल्तानपुर से यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या, विरल सिंह। उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश, नाचानी, विनीत, मिथिल, नाचानी। लालगढ़ जटान से रामेश्वर जी, निरानिया, सुमन, दिव्या, न्यूतन, पंकज, मनीषा, हेमू और ब्रिजलाल। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। सांगली से अल्ताफ, सैफुल्ला, सबाहत, किरत और रेहान। रानी बाजार बीकानेर से बिट्टू झाम, रानी जाम। आप सबने पसंद किया है फिल्म कोयला का गीत अलका।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये राधिका गजबिये, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत, प्रवीण शाहाना, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अब्बान और उनके सदस्य, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राजी और महराज जहां, महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, साक्षी, संगीता, जयश्री, अंजलि, बाला साहब, रामनिवास, संजय और पी बी कुल थे। सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत, गुरनूर, कुलविंदर, हरविंदर और राज सिंह प्रीत मान, नोखा से पुखराज, बड़गुजर, कैलाश, गोर्धन, फरसाराम, सोलंकी, घनश्याम, भार्गव, बाबू, गौरी और हसन सिक्का। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म जुर्माना का गीत, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में गीत आनंद बख्शी का और संगीत आर डी बर्मन का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंदसौलिया, मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला आरती गौरी और ओम कुमार, हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तड़, कृष्ण, मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव और हिमानी जाखड़, 15 पीएस से केआर भाटिया, प्रेरणा भाटिया, डिंपल भाटिया और रोशनी, नाभा से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर, मन्नू और उनके परिवार के सदस्य। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म निगाहें का गीत मोहम्मद अजीज के स्वरों में, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
3: सावन के

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हमराज फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वरों में। गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत रवि का, पसंद आप सबकी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, पिकिस डिकेस्ट्रो। छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, नसर, रेहान। भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल, कुरार मेहरा। चक 15 PS से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह, आदर्श पाल, रोबिन सिंह जोसन, वैंकूवर। 5 MD पतरोड़ा से मंगल जानागल, रोशनी, अंकुर जानागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जानागल। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का यह नगमा।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म रॉकी का गीत। स्वर हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के, गीत आनंद बख्शी का, संगीत आर डी बर्मन का और पसंद आप सबकी। 12 से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता हिमानी, हर्षिता अभिषेक श्रीवास्तव, गंजनूड 12 से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, कैफ अनवर, लुबना आलिया, फाजिलका से ओम बगड़िया, क्रियांश योगेश, रजत और बेबी गरिमा, करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु, तासु, अर्णम और सत्यम। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये नगमा।

1942 अ लव स्टोरी। जी हाँ, इस फिल्म से ये गीत सुन रहे हैं आप कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

अच्छा लगता है अकेले बैठकर अपने बीते हुए पलों को याद करना। कभी कभी बीते हुए पल ही सबसे ज़्यादा सुकून देते हैं। यादों में खो जाना

कभी भी पनाह बरस पड़ी, कभी गुम सी है। क्या ये बारिश कुछ कुछ तुम सी है? ये बारिश सिर्फ पानी नहीं, एहसासों की कहानी सी है। हर बूंद में आज कोई याद पुरानी सी है। भीगी हुई सी रात, खामोश सा आसमान, और दिल में किसी का इंतज़ार लिए आज खड़ी सी है ये बारिश।

हरिहरन और साधना सरगम की आवाज़ों में गाया ये गीत दहक फिल्म से है। इस गीत को लिखा है मजरू ने और संगीत आनंद मिलंत का है।

कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें सांसें चाहिए, खुला आसमान चाहिए, नम हवा चाहिए और कुछ एहसास चाहिए। उन्हें भी थोड़ी सी ज़मीं चाहिए। रिश्तों में घुलने से महक जाए फिजाएं, ऐसी मोहब्बत की बारिश चाहिए। अगर दीवार हो भी जहां, तो दबी हो ख्वाहिशें, उन्हें तोड़ने के लिए दो पल का सुकून चाहिए। उन्हें भी तो कोई साथी चाहिए।

फिल्म का नाम है वीर ज़ारा। इस गीत को गाया है उदित नारायण ने, जावेद अख्तर की शब्द रचना है और संगीत मदन मोहन का है।

श्रोताओं, हम सब अपने अपने नज़रिए से ये दुनिया देखते हैं, इसलिए एक ही बारिश किसी के लिए सुकून, किसी के लिए उदासी, तो किसी के लिए घर लौटने की जल्दी। अजीब है ना, मौसम एक ही होता है पर उसके भीतर कोई अपना अपना किस्सा पड़ रहा होता है। शायद दुनिया अलग नहीं, बस खेल तो सारा नज़रिए का है।

मैं खिड़की के पास खड़ी सोचती हूँ कि क्या बारिश भी कभी थकती होगी या मेरी तरह खुद को हल्का करने के लिए बरसती होगी। काश काश इन बूंदों के साथ कुछ दर्द भी हमारी जिंदगी से बह जाते, कुछ सवाल भी धुल जाते और दिल थोड़ा सा सुकून चुरा लेता।

श्रोताओं, खुशियों की खोज ठीक वैसे ही है जैसे घने कोहरे में रास्ता खोजना। रास्ता हमारे इर्द गिर्द ही है, बस नज़र नहीं आता। कोहरे में वैसे ही खुशी भी हमारे भीतर होती है पर नज़र नहीं आती, और अंततः मिल जाती है। जैसे मिल जाते हैं खोए हुए रास्ते, बस ढूंढना हमको खुद को पड़ता है।

यस बॉस फिल्म से ये गीत सुन रहे हैं आप, कुमार सानू और अलका याग्निक की मिलीजुली आवाजों में। जावेद अख्तर की शब्द रचना है और संगीत जतिन ललित का है।

जाने वाले कभी पूरी तरह नहीं जाते, वे रह जाते हैं पुरानी तस्वीरों में, कुछ अधूरी बातों में और उन जगहों में जहां कभी कभी हम साथ खड़े हुआ करते थे। और फिर जब हम उन जगहों से गुजरते हैं तो लगता है जैसे समय कुछ देर के लिए बस वहीं रुक गया हो। लीजिए अब सुनते हैं दुश्मन फिल्म से ये गीत कुमार सानू और लता मंगेशकर की मिलीजुली आवाजों में। आनंद बख्शी की शब्द रचना है और धुन उत्तम सिंह की है।

श्रोताओं, सबसे भारी चीज क्या है? पत्थर नहीं, शब्द भी नहीं। सबसे भारी होता है वो एहसास जो हम किसी से कह नहीं पाते, जो धीरे धीरे आवाज से उतरकर आदतों में ढल जाता है। और फिर हम मुस्कुराते भी हैं, बातें भी करते हैं, और भीतर कहीं एक वाक्य अधूरा सा रह जाता है। हर बोझ दिखाई नहीं देता, कुछ मन की आवाज में भी छुपा होता है।

गुलजार का लिखा ये गीत है फिजा फिल्म से। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की है और इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

काश काश फिर से कोई मुलाकात लिखी जाए, इस अधूरी सी कहानी को नई पाथ लिखी जाए। जो पल वक्त के साथ छूट गए, उन्हें दिल की किताब में फिर जोड़ा जाए। ज़रा ठहर कर ख्वाबों में एक नज़र तो डालो, क्या पता वो फिर से कहीं मिल जाए।

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। जी हाँ, इस फिल्म से गीत सुन रहे हैं आप राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। गीत को लिखा है इर्शद कामिल ने और संगीत प्रीतम का है।

श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और उनके प्रसारण समय की।

स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संसद में हुए प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। संसद समीक्षा आज रात्रि 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी श्रोता सुनेंगे आज शाम 6:40 पर। थोड़ी ही देर में श्रोता सुनेंगी कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आज बातें होगी प्रसारण दिवस, चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक के जन्म दिवस पर। सुगम संगीत का समय होगा 12:30 पर, और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गायक कुछ चुनिंदा गजलें, और सुगम संगीत होगा रात्रि 9:15 पर। खेत खलियान का समय रहेगा आज 12:50 पर, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय रहेगा मधुमक्खी पालन लाभकारी व्यवसाय, और चौपाल के अंतर्गत श्रोता आज सुनेंगे खान पान का रखें विशेष ध्यान, सड़क पर चलते समय ध्यान रखने योग्य बातें, सिंचाई की विधियां और बाजार भाव व मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही नाटक टोडियो सुनेंगे आप, जिसके लेखक बीआर चावलिया और प्रस्तुतकर्ता राजेश चड्डा होंगे। चौपाल का समय रहेगा आज शाम 7:00, और ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे सुनील वर्मा। महिला जगत कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे आज 1:05 पर। इस कार्यक्रम की आज के विषय रहेंगे साइबर सुरक्षा और महिलाएं, बरसात के मौसम में महिलाओं की सेहत का ध्यान, और महिलाओं के लिए फूड स्टार्टअप आइडियाज, और चाय के विभिन्न प्रकार, और साथ ही इस कार्यक्रम में भेंट वार्ता सुनेंगे आप। समाज सेविका रजनी महंत की गुलशन मेघानी से बातचीत, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति सविता कुमारी की रहेगी। फिल्म संगीत का समय रहेगा 2:30 पर, शाम 7:45 पर और रात्रि 8:15 पर एक ही फिल्म से जानकारी और गीत होंगी। युवाणी का समय रहेगा आज शाम 5:00, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बुजुर्गों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, स्वच्छता और जन भागीदारी पर चर्चा, सामाजिक मूल्यों का संरक्षण, सड़क सुरक्षा समाज की जिम्मेदारी, और साथ ही आज के इतिहास पर भी चर्चा होगी, और होंगे कुछ चुनिंदा गीत, प्रस्तुति पूजा वर्मा की रहेगी। श्रोताओं, ये थे हमारी आज के सभा के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं को नमस्कार। आज आपके साथ आपकी दोस्त स्मिति। दोस्तों, वो कौन सी आवाज है जो दूरियों को मिटाती है, लोगों को जोड़ती है और समाज को जागरूक बनाती है? जी हाँ श्रोताओं, वो आवाज है रेडियो की। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसका अर्थ है अधिक लोगों के कल्याण और सुख के लिए। ये आकाशवाणी का आदर्श वाक्य है, जिसने लोगों को गांवों से शहरों तक समाचार, कृषि, स्वास्थ्य, संगीत, साहित्य और मनोरंजन से जोड़ा। 23 जुलाई 1927 को भारत में संगठित रेडियो प्रसारण दिवस की शुरुआत हुई थी और इसलिए आज ही के दिन हम राष्ट्र प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं। श्रोताओं, आपका और हमारा रिश्ता आवाज़ की मखमली डोर से बंधा है। आज का दिन समर्पित है उस क्षण को जिसने संवाद की ऐसी धरोहर दी जिसकी गूंज आज भी करोड़ों दिलों के भीतर तक सुनाई देती है।

राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें उस ऐतिहासिक यात्रा की याद दिलाता है जिसने एक आवाज़ को देश की कोने कोने तक पहुंचाया। रेडियो सिर्फ एक संचार माध्यम नहीं बल्कि यह हमारी यादों, संस्कृति और समाज का अभिन्न हिस्सा है। आकाशवाणी जो सिर्फ प्रसारण का माध्यम नहीं बल्कि विविध भाषाओं, परंपराओं को एक ही धागे में पिरोने वाला एक सेतु है। दोस्तों, आज तकनीक का दौर है। टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया के बावजूद रेडियो ने अपनी उपयोगिता और लोकप्रियता बनाई हुई है।

0: सुरों की यह यात्रा राष्ट्र की धड़कन बन गई। कहते हैं शब्दों में संसार बदलने की शक्ति होती है। जब यही शब्द संवेदना का स्पर्श स्वर बनते हैं तो वे सीमाओं को लांघ जाते हैं। वे किसी गांव की चौपाल से लेकर महानगरों की ऊंची इमारतों तक, किसानों की आशाओं से लेकर विद्यार्थियों के सपनों तक, सैनिकों के साहस से लेकर माँ की प्रार्थनाओं तक हर दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने। आवाज़ें समुद्र और आसमानों तक छनती रही। इसलिए बतौर उद्घोषिका ये कहने को मन करता है, धन्यवाद और आभार आकाशवाणी का, जिसने लोक कलाकारों को, लोक गीतों को, राजस्थानी गीतों को, भजनों को और भूले बिसरे गीतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया।
1: नफरत की

श्रोताओं, अक्सर लोग कहते हैं कि अपनी इस जिंदगी रूपी कहानी का हीरो बनना इतना आसान नहीं होता। फिर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आसान क्या है? अपनी कमियों, खामियों और असफलताओं के लिए दुनिया को दोष देना? नहीं, हीरो होने का मतलब है दायित्व उठाना, अपने हर सही गलत निर्णय का, अपनी हर असफलता सफलता का, अपनी हर खूबी और खामी का दायित्व उठाने का साहस। हम उस क्षण अपनी जिंदगी के नायक होने लगते हैं जिस क्षण हम ये जान लेते हैं कि हमारे सपनों, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। और श्रोताओं, आज हम उस नायक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन दो ऐसे नायकों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने उसूलों, आदर्शों और अपने नारों से भारत को स्वतंत्र करवाने में अपनी जान तक फूंक दी।

स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के ये वो शब्द थे जिन्होंने आज़ाद भारत की उस तस्वीर को बनाया जिसे हम आज देखते हैं। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के किसी काम न आए वो बेकार जवानी है। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने हिंदुस्तान की आवाज़ को आज़ाद सांसें दी। ये लोग एक विचारधारा बन गए जिसने लोगों को जीने का हक लेना सिखाया, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाया, जिन्होंने हमें संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना है ये सिखाया, और आज पूरा देश इन्हें नमन करता है।

श्रोता अभी कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गायक कुछ चुनिंदा गजलें।

0: श्रोता अभी सुगम संगीत के अंतर्गत जगजीत सिंह की गायक कुछ चुनिंदा गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेत खलियान, और आज इस कार्यक्रम का विषय है मधुमक्खी पालन लाभकारी व्यवसाय।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करा आज आप मक्खियों के पालने के बारे में। देखो किसान भाई जी का है खेती पाती तो आप करा ही हैं किसान भाइयों, पर सागे सागे आप और भी ऐसा काम धंधा है जिका खेती के काम के सागे सागे आप करिए और भी शुभ आप अच्छी आमदनी ले सका। हाँ इतने ही अपने जी की सेहत वाली मक्खी हुए बाँसू भी किसान भाइयों आप खूब जी की आमदनी कर सका। हाँ तो इन खातर आपने अच्छी तरह जानकारी लेगे और इनको अगर आप पालन करा तो आपने अच्छी कमाई हो जाए। और देखो मक्खियों को पालनो जिको है मिनखा खातर और अपने फसलों खातर दोनों खातर ही अच्छो रेवे, और आपने माखियाँ सू जो शहद मिले या मोम मिले बीसू कमाई तो वही हुए, पर सागे सागे अपना जिका खेत में फसल है बंग में भी माखियाँ पालने से अपने फायदो हुए। और आप देखा कि अपना जिका पुराना ग्रंथ है बंग में भी यो लिखेड़ो है कि शहद जिको है वो अपनो भोजन जिको है बिंग रूप में, और सागे सागे आप इन्हें औषधि के रूप में भी आप काम में ले सका। हाँ और अपन देखें यहाँ कि कई अपना कोई हरी बीमारी हो जाए जैसे अपना अपन ने बतावे है कि शहद जी को लेना है बिंग में अच्छो मानी जाए है। इनके सागे सागे किसान भाइयों आमदनी तो हो ही है, और इसके अलावा शहद जी को है अपना कोई बार त्यौहार है अपने जन्मने से ले गए और अपने मृत्यु तक आपने देखो भांत भांत का जी का अवसर आवे कोई बार त्यौहार आवे बंग में भी शहद जी को है कई बार आप देखा कि पाठ पूजा में भी काम आवे और अपना पंचामृत जी को बनावा बिंग में भी काम आवे। तो देखो शहद का बहुत सारा फायदा है।

और बहुत जगह काम आवे। और सारों मोटी बात है कि इन्हें बेच के आपन जी की कमाई भी आपा कर सका हाँ। तो ये खातर देखो आपा ने अलग छू कोई जगह की जरूरत को नहीं हो, अपना खेत में जठा अपने फसल बाड़ी हुआ है तो बठे भी आप वो काम कर सका हाँ। और किसान भाई जी का है छोटे स्तर पर भी इन्हें कर सके है, या फिर जिका किसान भाई है जिका कम भाई तो है तो वह भी इन्हें करे तो सागे सागे अपन के अलग छू अपने आमदनी हो जाए और इसमें अपने फायदा होने लग जाए। तो माखियाँ के पालने खातर अपन है जिका डब्बा आप बनावा हाँ, और आगे सागे सागे बाकी को और जो सामान है बाकी जरूरत पड़े तो इसमें आपा देखा कि वे डब्बा लेवा या दूसरों सामान लेवा तो वो सामान जठू लेवा तो वहाँ भाइयों ने भी इनको फायदा होवे बांगे भी आमदनी इसमें ज़्यादा हो जाए। तो इनके सागे सागे जी का दूसरा कोई छोटा मोटा जी का कारखाना है उद्योग है तो बने भी बढ़ावा मिले। और इनकी जी की तकनीक है किसान भाइयों वह बहुत ही साधारण है, और आपने देखा कि इन खातर आपने कोई अलग से मेहनत करने की भी जरूरत को नहीं, और आपने घरे टबरियाँ टीकरान छोड़ के बाकी जी की लुगाया है वे भी वो काम जी को कर सके है। तो इन सागे सागे आपने माखियाँ से सेहत है मोम है या फिर जो को गूंद हो जिके ना आप प्रोपालास भी बोला हाँ, वो एक अंग्रेजी को शब्द है तो वो भी आपने कम लागत में आपन मिला है। और इन में आप देखा कि आपने माखियाँ जिकी है फसलांग में जिका पर परागण जिका हुआ है तो बिंग में भी सहायता करे तो बीच में भी उपज में जिको है बहुत फ़ायदों मिले। तो किसान भाइयों देखो बहुत सारा फायदा है, तो वो आपा खेत के माँ अपने खेती पाती का काम धंधा के सागे सागे आपा कर लिया तो इसमें आपा ने और जो है लाभ आपा ने मिले हैं। और किसान भाइयों आप बात करा माखियां को जो को परिवार है या बेंगे परिवार गया माँ आपा देखा कि छत्ता में बहुत सारी माखियां हुए पर बंगो भी एक परिवार हुआ है और वह परिवार के रूप में ही काम करे हैं। तो इनमें देखो तीन तरह का बंगा सदस्य हुए, एक तो हुआ रानी माखी और भी बाद में श्रमिक माखी हुआ जिकेन आपा कमेरी भी कह दें, और तीसरा हुआ नर तो अन्य बिया निखट्टू ही माना जावे क्योंकि अंगो कोई विशेष काम को नहीं हुए। और इन करके देखो प्रत्येक जी की माखी है बिंग है, अगर आप जीवन काल की बात करा तो देखो जी अंडो है सुंडी है फिर प्यूपा है बीस बाद में प्रौढ़ जी की अवस्था बा आवे। और अंग वंश गया माँ देखो एक रानी माखी हुए और भी बाद में हजारांगी तादाद गया माँ जी की श्रमिक माखियाँ हुए और बीत रही सैकड़ों की संख्या में जी के नर हुए। तो रानी जी की है वह पूर्ण रूप से मादा हुए, इन्हें आप वंश की माँ भी कहवे है। और रानी माखी देखो दो प्रकार का अंडा देवे, एक हुए निर्जीव और एक अंडा देवे बे हुए सजीव। जिका सजीव अंडा है बांसू रानी माखी और श्रमिक माखी जिके है बे निकले, और जिका निर्जीव अंडा है बंग माशू नर निकले। इन खातर रानी माखी जिकी है अनुकूल वातावरण होवे वातावरण अच्छो होवे तो जिका जानी जाना आदमी है आंगा बे बतावे कि 1500-2000 अंडा जिका है रोजा देश के है। और रानी की जिकी उम्र है बा 2-3 साल होवे। इन करके कमेरी जिकी मधुमक्खियाँ होवे बे बांझी होवे और अंगो जिको आकार है वो अंगमा सबसे छोटो होवे। और अंग में आप देखा कि अंग जिकी कलोनी होवे या यहाँ के लिए वो जिको छत्तो होवे अंगो परिवार होवे बिंग माँ लगभग जिको सारो काम है वे श्रमिक माखियाँ या कमेरी माखियाँ जिकन बोला वे ही करे है। और आंगी उम्र की बात करा किसान भाइयों तो लगभग आंगी उम्र जिकी हुआ वह 42 एक दिन या पाँ कह लें कि 1.5-1 महीना हो। और इंग माँ पहला जिका 3 हफ्ता है तो वह कलोनी के अंदर ही काम करे, और ब्यू बाद में छेकड़ वाला जिका 3 हफ्ता है वह कलोनी या छत्ता बारह काम करे है। और नर जिका हुआ किसान भाइयों वह रानी माखी से तो छोटा हुआ पण जिकी बाकी श्रमिक जिकी माखियाँ है कमेरी माखियाँ जिकी है बानू थोड़ो सो अंगो आकार जिको है मोटो हुआ। और जिका नर हुआ अंग माँ डंक भी कोनी हुआ और अंगो कोई विशेष काम कोनी हुआ प्रजनन अलावा ए जिका है आपके वंश के माँ या आपके परिवार के माँ कोई विशेष अंगो काम कोनी हुआ। और अंगी जिकी भांत भांत की जिकी प्रजातियाँ है बंगी अगर आप किसान भाइयों बात करें तो देखो सारंग है या पहाड़ी मधुमक्खी जिकी हुए बीच अलावा छोटी मधुमक्खी जिके ना आप मूंगा भी बोला हाँ, आपने देसी माखियाँ भी है और एक चौथी जिकी हुए बिना आप बोला पाश्चात्य या फिर इटालियन मधुमक्खी भी आप इन्हें बोला। तो एक तो देसी मधुमक्खी होगी और एक जिकी है विदेशी जिकी मक्खी हुए बिना आप बोला पाश्चात्य या अंग्रेजी में आप कह दें इटालियन जिकी माखी है। तो ए जिकी चार जातियाँ हैं अंगमू पहली वाली जिकी दो है वह जंगली है अन्य आपा डब्बांग माँ पालन आंगो कर कौन सका। तो इनके अलावा जिकी बाकी की दो जातियाँ हैं ए जिकी माखियाँ हैं अन्य आपा डब्बांग माँ पाल गए और आंसू आपा शहद की पैदावार आपा जिकी है लेस कहाँ। और आगे जिकी पैदावार है किसान भाइयों बा दूसरी जाति की जिकी माखियाँ हुए आंसू ज़्यादा हुए और अंग माँ बीमारी को जिको प्रकोप है वो भी बहुत कम या फिर ना बराबरी हुए। किसान भाई यो बात करा आपा मधुमक्खी पालने को जो को काम है वो आपा किया शुरू कर सका तो

0: जी हाँ, और किसान भाइयों इनमें सागे सागे आपने जिनमें रोग के प्रकोप को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार किया कि मक्खी जी किया मर जाए, तो इन आपने ध्यान रखना चाहिए जिसमें आपको कोई नुकसान ना आवे। तो अब चला, राम राम सा राम राम।
1: श्रोता भी खेत खलियान कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि सरकार के लिए देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने कहा कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाग ले रहे हैं। उनके अलावा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मॉनसून की सक्रियता से कई स्थानों पर भारी बरसात हुई। ब्यावर क्षेत्र में लगातार हुई तेज बारिश से खेत, सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए। वहीं बरसाती नदियां और नाले उफान पर रहे। ब्यावर के अलावा अजमेर और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में 3 से 5 इंच तक बारिश हुई। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, भरतपुर, नागौर, बूंदी, अलवर और पाली के कई क्षेत्रों में भी 2 इंच तक बरसात हुई। बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन कई शहरों में जल भराव की स्थिति हो गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मॉनसून फिलहाल सक्रिय बना हुआ है और आगामी 2 दिनों तक अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। हालांकि 25 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने के आसार हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में रेडियो प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है। वर्ष 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई, जिसमें फिल्मी गीतों को प्रमुख स्थान दिया गया। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अनुसार लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। पुलिस ने पूरे प्रदेश में 20 जुलाई से हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 20 अगस्त

0: तक चलेगा। इसके दौरान हार्डकोर अपराधियों, मादक पदार्थ तस्करों, साइबर अपराधियों, अवैध हथियार रखने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की जा रही है। बीते 3 दिनों में विशेष अभियान के दौरान 1,259 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को सविता कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, बरसात का मौसम अपने साथ बहुत सारे परिवर्तन लाता है। कुछ खुशी देने वाले तो कुछ परेशानी बढ़ाने वाले परिवर्तन इस मौसम की खासियत होते हैं। जहां इस मौसम में उमस, पसीना, घमौरिया और खुजली जैसी समस्याएं होती हैं, वहीं इस मौसम में ठंडी हवा, सावन के झूले और त्यौहार ये सभी भी आते हैं जो हमें प्रसन्नता दे जाते हैं। बहनों, बारिश के मौसम में अक्सर त्वचा, बाल और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हमें घेर लेती हैं। इस मौसम में उमस और पसीने से त्वचा पर रैशेज और संक्रमण हो जाता है, तो साथ ही बाल पसीने से चिपचिपे होकर टूटने लगते हैं और बेजान भी हो जाते हैं, जो कि आज लड़कियों और महिलाओं और यहाँ तक कि सभी की समस्या बन चुके हैं। इसके अलावा भी बारिश के मौसम में महिलाओं को कई संक्रमणों का खतरा रहता है, जिनमें यीस्ट इन्फेक्शन और मूत्र मार्ग के संक्रमण, जिसे UTI बोला जाता है, इनका अधिक खतरा बना रहता है। मानसून या बारिश के मौसम में महिलाओं की सेहत को सुरक्षित रखने के कुछ उपाय आज हम साझा करेंगे। बहनों, इस मौसम में पसीने से संक्रमण तो होता ही है, साथ ही मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स में भी नमी के कारण संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में गीले कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर बहनें रीयूजेबल पैड का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें धूप में या फिर पंखे की हवा में अच्छे से सुखा लेना चाहिए और फिर ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बहुत हद तक UTI इन्फेक्शन और यीस्ट इन्फेक्शन से बचाव संभव है और रैशेज़ का खतरा भी कम हो सकता है। बहनों, इस मौसम में हम पानी कम पीते हैं, जिससे यूरिन में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करने से इस संक्रमण से बचाव संभव है। बहनों, बारिश के पानी में भीगने से पैरों और उंगलियों के बीच फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए बाहर से आने के बाद पैरों को अच्छी तरह से साबुन से धोकर पोंछकर सुखा लेना चाहिए और इससे संक्रमण से बचाव हो जाता है। साथ ही इस मौसम में मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बारिश के जमा पानी में डेंगू, मलेरिया, इस तरह के मच्छर पनप जाते हैं, इसलिए घर में या घर के आसपास बारिश का पानी खुले में जमा नहीं होने देना चाहिए। घर के अंदर और बाहर नाली में दवा डालें या फिर तेल डालें, जिससे मच्छर पनप ना सकें। साथ ही इस मौसम में पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मच्छरों से बचाव हो सके। बहनों, बारिश के मौसम में खान पीन का भी ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में जंक फूड या स्ट्रीट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। बरसाती मौसम में फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। घर का बना ताज़ा और पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए। बहनों, इन बातों का ध्यान रखकर हमें बरसात के मौसम का आनंद उठाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए, इसी के साथ हम उठाते हैं इस गीत का आनंद।

साइबर नेटवर्क के जरिए भी महिला सुरक्षा की आवश्यकता हो चुकी है। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल उपकरणों, नेटवर्क और डेटा को डिजिटल हमलों से अनाधिकृत पहुंच और क्षति से बचाने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह निश्चित करना है कि हमारी व्यक्तिगत या व्यावसायिक जानकारी सुरक्षित रहे और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे कि हैकिंग, फिशिंग और मेलवेयर से बचाव हो सके। बहनों, डिजिटल दुनिया में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा बेहद जरूरी है। इसके लिए निजी जानकारी गुप्त रखना, किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करना और OTP साझा न करना अनिवार्य है। बहनों, अगर सोशल मीडिया या मैसेजेस के जरिए आपको आपत्तिजनक संदेश या तस्वीरें भेजी जाएं, तो उसे तुरंत ब्लॉक करें और उसकी रिपोर्ट करें। किसी भी स्थिति में अपनी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा ना करें। किसी भी धोखाधड़ी या ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं। तत्काल सहायता के लिए आप राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क भी कर सकती हैं। बहनों, ध्यान रखें, डर कर नहीं, उस परिस्थिति का सामना करके ही गलत का विरोध किया जा सकता है। आज आप द्वारा की गई शिकायत कई और महिलाओं के लिए सही साबित हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आइए सुनते हैं इसी के साथ ये प्यारा सा गीत।

बहनों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत से कानून बनाए जाते हैं और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जिसके प्रति हमें स्वयं जागृत रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी अपनी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आजकल साइबर

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बहनों, आज हम सुनेंगे समाज सेविका रजनी महंत जी से गुलशन मेघानी की भेंट वार्ता, जिसमें हम रजनी जी के जीवन वृतांत को जानेंगे। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।

0: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं रजनी महंत। अभी जो आपने आवाज सुनी वो रजनी महंत की थी। आप समाज के एक ऐसे वर्ग से संबंध रखती हैं जिनके बिना समाज के सभी वर्गों की खुशियां अधूरी रह जाती है। आप समझ ही गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। आप ट्रांसजेंडर हैं। श्रोताओं, आप में से प्रत्येक घर में किसी भी खुशी के मौके पर इनका पदार्पण गीत, संगीत और नृत्य आपकी खुशियों को दुगुना कर देता है। तो सबसे पहले रजनी जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: रजनी जी।

0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताइए आपके बारे में, अपना परिचय दीजिए, आपकी शिक्षा कहाँ हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपका बचपन कैसे और किन हालातों में गुजरा।
1: जी, पहले तो मैं सूरतगढ़ रेडियो स्टेशन का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का, और जितने भी मेरे सूरतगढ़ शहर में और जितने भी श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, मैं उनका भी दिल से आभार करती हूँ और मेरे दिल से दुआ देती हूँ कि परमात्मा आप लोगों का घर हरा भरा रखे, परमात्मा आपकी हर मनोकामना पूरी करे। और मेरे जीवन के बारे में मैं आप बताना चाहती हूँ। मेरा जन्म हनुमानगढ़ जिले में हुआ है और मैं प्राथमिक पाठशाला में पढ़ी हूँ, और बस पढ़ते पढ़ते अपना बहुत सा स्ट्रगल भी करा, फिर यहाँ आ गए सूरतगढ़ में।
0: तो रजनी जी, आप सूरतगढ़ कब आए?
1: 2000 में सर,
0: सन 2000 में आप
1: जी
0: सूरतगढ़ आए।
1: सन 2000 में सूरतगढ़ में आ गए।
0: आपने किस क्लास तक पढ़ाई की है?
1: जी, मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ सरकारी स्कूल में, और उसके बाद में घर के हालात थोड़े से ख़राब थे, मम्मी पापा के भी इतनी पोजीशन नहीं थी कि आगे मैं पढ़ाई कर सकती।
0: जी
1: फिर जो मेरे गुरुमान जो मुझे सूरतगढ़ में लेके आए,
0: जी
1: उनके पालन पोषण में और उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे और पढ़ाया,
0: जी जी
1: उसके बाद में जो मुझे शिक्षा मिली मेरे गुरु से, स्वर्गीय श्रीमती रेखा महंत जी, जो वार्ड नंबर 4 में हैं
0: जी
1: खेजड़ी मंदिर के पास रेडियो स्टेशन के बिल्कुल सामने,
0: जी
1: और मेरा अच्छे से उन्होंने पालन पोषण करा, अच्छी शिक्षा दी, पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी बहुत जितनी भी करवाई मेरे गुरु जी से मैंने जो भी सीखा,
0: जी
1: और आज जहाँ भी हूँ जैसे भी हूँ मैं, उनका आशीर्वाद मेरे सिर पे है। और आप लोग जितने भी श्रोता हैं सूरतगढ़ के, बस आप लोगों का प्रेम प्यार है।
0: तो रजनी जी, हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि लोगों की अक्सर गलत धारणाएं भी हैं ट्रांसजेंडर को लेकर।
1: जी बिल्कुल, आजकल क्या है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या सही है और क्या गलत है। आजकल का टाइम ऐसा आ गया कि ट्रांसजेंडर को देख के लोग घिन भावना रखते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन माँ बाप से आपने जन्म लिया, उन्हीं माँ बाप ने हमें जन्म दिया, बस एक परमात्मा की कुदरती की देन है जो मालक, ऐसे कह रही हूँ कि किसी को भी ऐसा बच्चा किसी को ना पैदा हो, अगर उसको ऐसा है भी एक्सेप्ट करना चाहिए माँ
0: जी
1: बाप को भी। हालांकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़ा अच्छा एक्सेप्ट किया और अच्छी शिक्षा भी दी, और आज तक मैंने कोई भी ऐसा कुछ नहीं करा जैसे कि किसी का दिल दुखता हो, लेकिन मुझे मेरे सूरतगढ़ वासियों से बहुत बहुत प्यार मिला,
0: जी
1: बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मेरे को, 26 साल हो गए रहते हुए।
0: जी तो समाज ने और परिवार ने आपको एक्सेप्ट किया, तो उस बारे में आप थोड़ा बताना चाहें तो।
1: जी बिल्कुल, समाज ने भी मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, परिवार ने भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, आते जाते हैं सारे मेरे परिवार वाले, मैं भी आती जाती हूँ परिवार में, ब्याह शादी मरना जीना सब में जाती हूँ, मुझे बुलाते हैं मेरे बहन भाई, और इसी तरह से मेरे सूरतगढ़ वासी भी मुझे

0: हर काम में मुझे आगे रखते हैं।
1: तो रजनी जी, हर आदमी के साथ जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटित रहती हैं, आपके साथ भी घटनाएं घटित हुई होंगी, तो उनके बारे में आप अगर बताना चाहें तो, और आपके जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिसने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी?
0: देखो, हर इंसान के ऊपर अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, मेरे ऊपर भी आए, लेकिन मुझे उस बुरे दिनों ने इस तरीके से एक अच्छा सबक सिखाया कि आज का टाइम ऐसा है कि किसी के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास ना करो। विश्वास भी उसी आदमी पे करो जो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, लेकिन आजकल ऐसा कुछ ही भी नहीं है। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ 2017 के अंदर
1: जी,
0: उस हादसे ने मेरे को बहुत अच्छी सीख दी
1: जी,
0: किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए।
1: जी,
0: इंसान को जैसे भी हालात हैं उसको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन मुझे उस हादसे ने बहुत अच्छे से सिखा दिया कि आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है।
1: जी,
0: और बस मुझे वो टाइम याद रहेगा, परमात्मा वो टाइम मेरी ज़िंदगी में कभी ना लेके आए।
1: जी, श्रोताओं हम आपको बता दें कि आप अलग अलग भाषाओं में गीत भी गाती हैं, तो रजनी जी आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत सुनाना चाहती हैं अभी?
0: जी, मैं 3-4 भाषाओं में गीत गा लेती हूँ,
1: जी
0: पर अभी मैं माड़ सुनाऊंगी
1: जी
0: राजस्थानी भाषा में।
1: जी सुनाइए
0: जी,

0: अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने अपनी इस गायन की कला को कैसे और कब पहचाना, और आपने इस टैलेंट को, इस कला को कैसे निखारा?
1: जब मैं मेरे गुरु के पास यहाँ आई सूरतगढ़ में,
0: जी
1: तो इतना मुझे ज्ञान नहीं था। मेरे गुरु जी का आशीर्वाद ही है जो आज मेरे गले में माता सरस्वती की अपार कृपा है। मेरे गुरु जी ने बहुत मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी।
0: जी
1: मेरे गुरु जी के पास एक उनका शिष्य था छिंदा सोनी,
0: जी
1: उन्होंने मुझे हारमोनियम पर ही सिखाया। जितना भी कुछ सिखाया मैं हारमोनियम पर ही गाती थी।
0: जी
1: और बस ये मेरे गुरु जी को और वो जो मेरे गुरु जी के शिष्य थे छिंदा जी सोनी, उनकी मेहरबानी से आज मैं जो कुछ हूँ, जो भी सीखा उनकी आशीर्वाद है जी।
0: तो आप ये गायन कब से कर रहे हैं?
1: सन 2000 से
0: सन 2000 से आप ये
1: जी,
0: गायन?
1: 26 साल हो गए।
0: जी
1: और मेरा गायन रियाज घर पे करती रहती हूँ, गाती रहती हूँ। जैसे कहीं ब्याह शादी बच्चा पैदा हो गया वहाँ, तो मुझे गाने का और बहुत ज़्यादा शौक है
0: जी तो समाज की खुशियों में भी आप शरीक
1: जी।
0: होती
1: बिल्कुल
0: हैं?
1: बिल्कुल, समाज की खुशियों में जाते हैं। जैसे शादी हो गई, किसी के बच्चा पैदा हो गया, तो बिल्कुल ज़रूर जाते हैं और लोग मुझे अच्छे से सुनते हैं बैठ के।
0: जी तो रजनी जी, आप

0: समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं,
1: जी
0: तो आपने अपने हुनर को लेकर समाज की सेवा में कैसे योगदान किया, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो।
1: जी समाज सेवा में मैं जुड़ी हूँ, बहुत अच्छे बुरे भी लोग देखे, लेकिन जो मेरे सामने जैसे किसी की बुजुर्ग इंसान है, किसी के कमाई का साधन नहीं है, तो मैं मेरे घर से भी उनको थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे देती हूँ। चलो कोई बात नहीं,
0: जी
1: आप मेरे से लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी।
0: जी
1: अगर किसी के कोई किसी के घर से अगर किसी का घर चल रहा है तो अच्छी बात है। देखो मेरे को भी लोगों ने अपना समझा, जिन जिन के घर में जाती हूँ, अच्छा अपनी बहन बेटी समझ के मुझे खाने को भी देते हैं, पहनने को भी देते हैं। उसमें अगर थोड़ा बहुत अगर किसी को दे दिया तो मुझे कोई वो नहीं जी,
0: जी
1: आपसे लेना और आपको देना जी।
0: जी जी जी
1: सन 90 के अंदर एक अभियान चला था, जल बचाओ अभियान,
0: जी
1: उसके अंदर जी मेरा यही काम था कि स्टेज पे लोगों के सामने अपना हुनर दिखाना, लोगों इकट्ठे गांव के अंदर इकट्ठे करके उनके सामने अपनी बात रखनी। लेकिन जो मेरे साथ सदस्य थे, डॉक्टर भी थे,
0: जी
1: और मैं अपना काम करके उनके साथ बहुत अच्छे खुश थे।
0: जी तो समाज के साथ जुड़ के आपने समाज की सेवा के लिए लोगों में जल बचाओ अभियान को लेकर जो आपने सेवा की उसमें भी आपका बहुत योगदान रहा
1: जी
0: है।
1: जी बिल्कुल।
0: जी तो रजनी जी, अब हमारे श्रोताओं को आप कौन सा गीत सुनवाएंगी?
1: श्रोताओं को सुनाने जा रही हूँ पंजाबी सॉन्ग जुत्ती कसूरी।
0: जी बिल्कुल, सुनाइए।

0: अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप ट्रांसजेंडर हैं, तो आपके साथी ट्रांसजेंडर हैं, उनको आप कैसे सहयोग करती हैं, उनका साथ आप कैसे देती हैं?
1: मेरे ट्रांसजेंडर को, सभी को मैं यही कहूँगी कि जो अपनी कला है उनको एक ऐसे काम में लेकर आओ जो कि लोग अपने को जाने, अपने से घिन ना करें।
0: जी
1: कहीं भी जाते हैं किसी के साथ बात करने का लहजा ऐसा रखें कि लोग अपने को मिलने के लिए तरसें कि नहीं वो आए थे, उनको अपने एक बार और मिलें।
0: जी
1: तो मेरा कहने का मतलब ये होगा, मेरे जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, कि हर किसी के साथ अच्छे से रहें, अच्छे से बोलें, हर से प्रेम रखें।
0: जी जी
1: और बस यही मैं कहना चाहूँगी कि अपनी जो भी कला है, जो जैसी भी है, लोगों के सामने इस तरीके से दिखाओ कि अपने पहचान खुद बनाएं।
0: जी जी ये लोगों को भी अपना व्यवहार बदलने की जरूरत है
1: जी, लोगों
0: ट्रांसजेंडर
1: को
0: के
1: भी अपना
0: प्रति।
1: व्यवहार बदलने की जरूरत। लेकिन बहनों से भी कहना चाहूँगी कि वो पहले जो बहनें थी, ट्रांसजेंडर माइयें थी, उनका स्वभाव कुछ और था। आजकल के जितने भी ट्रांसजेंडर हैं पढ़े लिखे हैं
0: जी जी
1: और अच्छे शिक्षित हैं, अच्छे बुरे का सबको पता है। लेकिन मैं सभी मेरी बहनों से यही कहूँगी कि अपना थोड़ा लहजा, बोलने का लहजा तरीका सही करें और सभी
0: जी
1: से प्रेम भाव से रहें।
0: जी तो रजनी जी, यदि किसी परिवार में ट्रांसजेंडर बच्चे का जन्म होता है,
1: जी
0: तो उस परिवार को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: देखो जी, ये परमात्मा की देन है।
0: जी
1: भगवान के घर में जो जिसको जैसा बना के भेजा है परमात्मा ने आपको, उसको ऐसे घिन भावना से नहीं देखना चाहिए। वो भी आपके घर का एक सदस्य है, आपने उसको अपने खून से सींचा है।
0: ट्रांसजेंडर भी इंसान है
1: जी,
0: आखिर।
1: इंसान है
0: जी उनकी भी भावनाएं हैं,
1: जी,
0: उनके भी
1: उनका भी,
0: एहसास हैं, उनको भी
1: उनका
0: समझना
1: उनकी भी
0: जरूरी है।
1: भावना है, उनका भी एक मन है और वो भी आम लोगों के जैसे जीना चाहते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: उनका भी पूरा हक है। जी
0: तो रजनी जी, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि
1: जी
0: आप समाज को, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: मेरा समाज से और सभी बहन भाइयों से यही संदेश है कि आप हंसते रहें, खेलते रहें, आप लोगों में एक दूसरे के लिए प्रेम भाव रखें। और जैसे कि किन्नर, ट्रांसजेंडर जो भी आपके घर में खुशी के टाइम पे आते हैं, तो उनको भी प्रेम भावना से ही, जो आपका बनता है, जैसे वो अपना नेक मांगते हैं, तो अच्छे प्रेम भाव से उनको अपना नेक दें, घर में खुशियाँ, खुशी से उनको नचाएं गुवाएं और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद लें।
0: जी
1: जी
0: तो रजनी जी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत सुनाना चाहती हैं?
1: लंबी जुदाई।
0: तो आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं को सुनाइए ये गीत।

बहनों, अभी हमने भेंट वार्ता में समाज सेविका रजनी महंत जी को गुलशन मेघानी के साथ सुना और उनके जीवन के उन पलों को जाना जो कितने संघर्ष भरे थे, जो उन्होंने हमारे साथ साझा किए। आइए सुनते हैं इसी के साथ ये प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, आज के तनाव भरे समय में हर कोई व्यस्त रहना चाहता है, अपने आप को बिजी रखना चाहता है। ऐसे में कई महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे भी काम करके घर खर्च में अपना योगदान देना चाहती हैं, पर बाहर जाकर काम नहीं कर पाती हैं, या उन पर ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं कि वे घर से दूर नहीं जा सकती। तो उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि वे वर्क फ्रॉम होम अपनाएं। वे किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकती हैं। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांसिंग और कुकिंग, कोई भी काम अपना सकती हैं। आज हम बात करेंगे फूड स्टार्टअप्स की, जिसके ज़रिए महिलाएं अपने हाथ का हुनर आजमा सकती हैं। बहनों, हमारे देश में महिलाएं अन्नपूर्णा देवी का स्थान रखती हैं। स्वाद तो उनके हाथों में बसा हुआ है, इसलिए फूड इंडस्ट्री में अपार संभावनाएँ हैं। वे कम निवेश के साथ घर से होम में टिफ़िन सर्विस, होम बेकरी, केक, कुकीज़, अचार, पापड़ या फिर हेल्दी मील प्रेप शुरू कर सकती हैं। इन व्यवसायों को सोशल मीडिया और लोकल डिलीवरी के जरिए आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आज हम कुछ फूड स्टार्टअप आइडियाज़ के बारे में जानेंगे। बहनों, हम घर से होम बेस्ड टिफ़िन सर्विस शुरू करके अपना काम कर सकते हैं। आज अधिकतर लोग नौकरी, पढ़ाई या इन सभी के चलते घर से दूर रहते हैं, तो घर जैसा खाना मिले तो हर कोई इस सर्विस को लेना चाहेगा। तो अगर आप खाना बनाने की शौकीन हैं तो ये आइडिया आपके लिए बेहद उपयोगी है। बहनों, अगर आपको बेकिंग का शौक है तो आप होम बेकरी से अच्छी कमाई कर सकती हैं। कस्टमाइज्ड केक, कपकेक, कुकीज़, होममेड चॉकलेट, ये सभी आजकल बहुत चलन में हैं। इनका प्रचार सोशल मीडिया के जरिए करके आप घर बैठे ऑर्डर प्राप्त कर सकती हैं। बहनों, आजकल पारंपरिक और केमिकल मुक्त खाद्य पदार्थों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप अचार, पापड़, मसाला पाउडर और शुद्ध घी जैसे स्टार्टअप आइडियाज़ अपनाती हैं तो आप बिजनेस वीमेन बनने के बेहद करीब हैं। बहनों, आजकल क्लाउड किचन का ज़माना है। यह बिना डाइनिंग स्पेस वाला एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट होता है। इसमें आपको अपनी रसोई में खाना पकाना है और कोई डिलीवरी एजेंट इसे ग्राहक तक पहुँचाएगा। इसमें दुकान का किराया और भारी सजावट का खर्च बचता है और फालतू खर्च भी नहीं होता। इसके अलावा आप हेल्दी लड्डू, प्रोटीन बार, ओट्स के लड्डू, रोस्टेड मखाना या डायबिटिक फ्रेंडली स्नैक्स की योजना बना सकती हैं। साथ ही ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस या फूड ब्लॉगिंग करके आप अपनी आय का साधन बना सकती हैं। बस ज़रूरत है अपने अंदर हिम्मत और जज्बे की, फिर कोई काम कम नहीं होता। बहनों, आप इन फूड स्टार्टअप आइडियाज़ को अपनाकर आत्मनिर्भर नारी बन सकती हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे सकती हैं। तो आइए सुनते हैं इसी के साथ ये प्यारा सा गीत।

बहनों, ज़रा सी थकान हो, आलस आ रहा हो, सिर दर्द हो, भूख लगी हो, चिंता में हो या खुशी मनानी हो, हमें सबसे पहले याद आती है चाय। जी हाँ, चाय हमारा सबसे अच्छा पेय पदार्थ है। इसे पीने के बाद ना जाने कहाँ से ताकत अपने आप ही आ जाती है और हम दुगने उत्साह से अपना काम करते हैं। चाय सिर्फ थकान ही दूर नहीं करती, बल्कि हमें अपने आप से 10 मिनट मिलने के लिए भी देती है, जब हम चाय की चुस्की के साथ अपने लिए सोच सकते हैं। इस 10 मिनट के मी टाइम के ना जाने कितने ही फायदे हैं। अगर हम तनाव या चिंता में हैं तो उन 10 मिनटों में हम समस्या पर आराम से सोच विचार कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना चाय के निर्णय नहीं लिए जा सकते, ये तो इसलिए कि यह हमारी आराम उपलब्धता का एक साधन है और जब हमारा मन आराम पाता है तो समस्या अपने आप छोटी लगने लगती है। वैसे तो चाय शरीर के लिए हानिकारक होती है, अगर हम उसे बहुत अधिक मात्रा में पीते हैं तो हमें इसकी लत लग जाती है, जो कि सही नहीं है। चाय को हम सिर्फ पानी, दूध, चाय पत्ती, चीनी और मसालों का मिश्रण मानते हैं, पर इसे हेल्दी तरीके से भी पिया जा सकता है। आजकल चाय के ना जाने कितने रूप हैं। बहनों, भारत में दूध और मसालों से बनी मसाला चाय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा ग्रीन टी, ब्लैक टी, लेमन टी, कैमोमाइल टी, इस तरह के बहुत से प्रकार भी दुनिया भर में बेहद पसंद किए जाते हैं। इनके फ़ायदे भी बहुत हैं, तो आप भी इनको आजमाएं और इनका स्वाद चखें। आइए सुनते हैं इसी के साथ ये प्यारा सा गीत।

0: flood-related deaths reported yesterday, taking the toll to 41. Over 6 lakh people have been affected across the state in 40 revenue circles. Relief and rescue operations are continuing in the affected districts as several rivers continue to flow above the danger level. The Intermeteorological Department has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over parts of Gujarat and Madhya Maharashtra for today. East Rajasthan, Madhya Pradesh, Konkan, Goa, Manipur, Mizoram, Tripura and Nagaland may experience heavy to very heavy rainfall for the day. The weather agency has forecast heavy rainfall over northeast Gangetic, West Bengal, Bihar and Jharkhand till Sunday. The 23rd Commonwealth Games will begin in Glasgow, Scotland this evening. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the Games. It will feature just 10 sports, 9 fewer than at Birmingham in 2022, with competitions spread across 4 venues with an 8-mile corridor. Athletics, swimming, 3x3 basketball, track cycling, weightlifting, bowls, artistic gymnastics, netball, boxing and judo make up the schedule for the game. The Indian contingent comprises 125 members, including para-athletics. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for persons involved in paper leaks. Prime Minister Narendra Modi assures that protecting students' future remains government's top priority. Government ready to discuss any issue, including NEET, in Parliament, says Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. India calls for zero tolerance against terrorism at ASEAN ministerial meeting in Manila. India rejects Pakistan's remarks on the Indus Waters Treaty at UNSC, says treaty to stay in abeyance until cross-border terror ends. And Glasgow Commonwealth Games set to begin this evening. 125 Indian athletes to participate. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी आश्वासन दिया देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का यह बयान परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है गृहमंत्री अमित शाह ने फास्टैग अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना

0: न की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा साते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे ये ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पर चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
5: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं।

0: ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, मगर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित हैं।
1: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
2: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
1: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ

हंसमुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयरकोर बोर्डचवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित

0: किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत सुनते हैं अनुरोध फिल्म से। आवाज़ किशोर कुमार की है। आनंद बख्शी की शब्द रचनाएं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लीजिए अब सुनते हैं दर्द फिल्म से अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत को लिखा है नक्श लायरपुरी ने और संगीत खयाम का है।

लीजिए अब सुनते हैं शोला और शबनम फिल्म से अगला गीत, शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की मिलीजुली आवाज़ों में। अनजान की शब्द रचनाएं और संगीत पप्पी लहरी का है।

श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनते हैं चलते चलते फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की मिलजुली आवाज़ों में। शब्द रचना अमित खन्ना की है और संगीत बप्पी लहरी का है।

लीजिए अब सुनते हैं जमाने को दिखाना है फिल्म से ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की मिली जुली आवाज़ों में। मजरू की शब्द रचना है और संगीत आर डी बर्मन का है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

इस मजलिस में 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और सवा 3 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत चंद फिल्मी नगमे आप सुन सकते हैं।

शाम 4 बजे आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नाफ़ों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। चार बजकर पचास मिनट पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस से सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं। आपसे चंद लम्हों के बाद आप खबरें सुनेंगे।

ये था आंखें फिल्म का नगमा, आशा भोसले मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। और लीजिए अब सुनिए आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये नगमा। मौसीकी ओपिनियर की

सबको अपनी कॉमेडी अदाकारी से हंसाने वाला ये इंसान, ये अदाकार 23 जुलाई सन 2004 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। बेशक वो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी हमेशा जिंदा जावेद रहेगी उनके चाहने वालों के दिलों में।

0: की जरूरत है बहुत। तो बशीरवादी ने तो आज कहा था कि आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, लेकिन हर दौर में मोहब्बत की जरूरत रही है।
1: बिल्कुल
0: और जिगर ने जैसा कहा था कि हमारा काम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे, तो ये तमाम बातें होती रहती हैं। तो सबसे पहले मैं मुमताज आलम रिजवी साहब से जानना चाहूंगा कि आप एक सहाफी हैं, मुल्क या पूरी दुनिया की सियासत पर, तारीख पर आपकी नजर रहती है, तो ये बताएं कि हमारे गांधी जी ने किस तरह स्ट्रगल कर करके दुनिया के सामने एक शांति का नमूना पेश किया।
1: आपने एक शेर पढ़ा बशीर बद्र का, मैं दो शेर पढ़ता हूँ, एक अपना और एक गालिब का, कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना,
0: जी
1: बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। और मैंने कहा कि जिंदगी जैसे ही इंसान में ढल जाएगी,
0: जी
1: जिंदगी
0: जैसे
1: जैसे ही
0: ही
1: इंसान में ढल जाएगी,
0: बदल
1: ये जो नफ़रत है मोहब्बत में बदल जाएगी।
0: जाएगी। बहुत खूब।
1: और मैं समझता हूँ कि ये शेर, ये फ़िक्र हिंदुस्तान की ज़मीन से पैदा हुई है, क्योंकि हम अदम तशद्दुद के मानने वाले हैं, और बाबाए कौम महात्मा गांधी ने तो पूरी तहरीक इसके ख़िलाफ़ चलाई, जो जंग है। और हिंदुस्तान में भी आप देखिए कितनी बड़ी जंग लड़ी गई तहरीक आज़ादी के हवाले से, लेकिन कहीं भी तशद्दुद को सामने नहीं रखा गया, हमेशा जो है अमन की बात की गई है। और इसकी वजह क्या है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम दो आलमी जंग जो हमारी हुई हैं, जब हम उस पर नज़र डालते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ, और हल फिर भी बातचीत से निकला।
0: जी
1: ऐसा नहीं है कि जंगें हुई तो बातचीत नहीं हुई, आखिर में नतीजा यही निकला, और दुनिया ने इस चीज़ को कबूल किया कि नहीं, तशद्दुद से मसले
0: कुछ
1: का हल
0: मसला
1: नहीं
0: हल नहीं
1: निकल
0: होता।
1: सकता, बल्कि अदम तशद्दुद, बल्कि मोहब्बत, प्यार और बातचीत से ही मसला निकल सकता है। और आप देखिए कि गांधी का जो नज़रिया है, कोई भी हिंदुस्तान में नज़रिया कुछ भी रखता हो, लेकिन जहां जंग की बात आती है, तशद्दुद की बात आती है, वहां अदम तशद्दुद के हवाले से गांधी जी याद करते हैं। मुल्क में भी आप देख लीजिए, किसी भी नज़रिए की कोई पार्टी हो,
0: जी
1: लेकिन जब आलमी सतह पर हम देखते हैं, तो वहां भी गांधी जी को सामने रखा जाता है, और उसी हवाले से हम पैगाम देते हैं। आप देखिए उसकी वजह क्या है, पहली जंग हम सब जानते हैं कि 25 जुलाई 1914 को इसका आगाज होता है, और ये जंग 4 साल के करीब चलती है, 11 नवंबर 1918 को
0: खत्म होती है।
1: ये जंग खत्म होती है। और आप देखिए कि इसमें मौतें जो हुई हैं, नुकसानात जो हुई हैं, कि फौजी हलाकतें आप देखिए कि करीब 5,52,000 लोग फौजे जो हैं वो इसमें लोग जो है हलाक हुए। आप सोचिए कि 5,52,000,
0: कितना?
1: हाँ, और इसी तरह ये एक तरफ की मैं बात कर रहा
0: जी
1: हूँ,
0: जी
1: चूंकि दो हिस्सों में दुनिया बटी
0: बटी
1: हुई
0: हुई
1: थी,
0: थी।
1: और दूसरी जगह 43,66,000 के करीब लोग जो है मारे जाते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद अगर हलाक होती है, तो जाहिर से बात है कि आप सोचिए कि ये हलाकतें सिर्फ एक शख्स की नहीं है, बल्कि पूरे पूरे घर तबाह हुए
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: और
0: जी
1: फिर उसके नुकसान। फिर आप देखिए कि दूसरी जंग जो शुरू होती है, उसको भी आप देखें कि उसका आगाज होता है कि 1 सितंबर 1939 को,
0: जी
1: और फिर 2 सितंबर 1945 तक ये जंग चलती है, और इसके भी बड़े खतरनाक नतायज इस जंग
0: निकलते
1: के रहे
0: हैं।
1: हैं, पूरी दुनिया एक तरीके से मफलूज हो गई है, हो गई थी। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि ये ठीक नहीं। फिर तीसरी जंग के बारे में जो पेशीन गोईयां हैं, क्योंकि अब न्यूक्लियर प्लांट हैं, आप देखिए जगह जगह न्यूक्लियर सिस्टम जो है वो नस्ब किए गए हैं, ऐसे में अगर तीसरी जंग होती है तो जाहिर है कि दुनिया तबाह हो जाएगी। हमें इस बात पे फख्र है कि अदम तशद्दुद की बात हिंदुस्तान से जा
0: हिंदुस्तान
1: रही
0: से
1: है, और
0: शुरू।
1: गांधी जी याद किए जा रहे हैं इसीलिए। और मैं गांधी जी के नज़रिए को, अपनी सरजमीन को, कि जिसने हमेशा जो है मोहब्बत की बात की, प्यार की बात की, अपनाइयत की बात की, मेरे ख्याल से विश्व गुरु अगर हमारा हिंदुस्तान बनेगा, तो इसी नज़रिए से, गांधी के नज़रिए से ही विश्व गुरु बनेगा। और जंग को दुनिया में रोकने के लिए अगर कोई खड़ा होगा मजबूती से,
0: तो
1: अभी यूक्रेन
0: हिंदुस्तान
1: में आप
0: होगा।
1: देखिए कि हिंदुस्तान ने जो है
0: क्या
1: कहा है
0: रहे?
1: कि नहीं, इसको आप जो है बातचीत से हल कीजिए, हम किसी के साथ नहीं होंगे, हम सिर्फ बातचीत के साथ होंगे, ये एक बड़ा कदम है, और यही जो है मुस्बत पहलू दुनिया के सामने जाएगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज आलम रिजवी साहब। कि डॉक्टर साहब, इन्होंने तो पूरा पस मंजर कायम कर दिया कि पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग के दौरान क्या क्या नुकसान हुए, कितने लोग मारे गए और कितने घर तबाह बर्बाद, कितने मुल्क तबाह बर्बाद हो गए। शायद बाज मुल्क तो उभरने में उनको 25-30 साल लग गए। इन तमाम मंजर को सामने

0: रखते हुए आप अगर गांधी जी को आंकना चाहें तो क्या कहेंगे?
1: देखिए, जो शांति का ख्याल था, उसका जो तसव्वुर था,
0: जी
1: वो पहले दुनिया के स्पिरिचुअल परंपरा में, रिलीजियस परंपरा में मौजूद था। गांधी जी ने उसको पॉलिटिकल सवाल को हल करने के लिए
0: यूज करना
1: टूल्स
0: शुरू
1: के
0: किया।
1: तौर पर अपनाया और स्थापित भी किया, पूरी दुनिया को एहसास कराया कि ये सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक चीज़ नहीं है शांति, इसके जरिए आप सिविल राइट्स का आंदोलन लड़ सकते हैं और अपना सिविल राइट्स पा सकते हैं, आप ह्यूमन राइट्स की तरफ जा सकते हैं, आप नागरिक अधिकारों की शिनाख्त कर सकते हैं और उसके उसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो गांधी जी का था, वो बार बार इस बात को कहते थे कि अगर आंख के बदले आंख लेने की शुरुआत हो और इसी पर दुनिया कायम रहे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, फिर उसको बचाया नहीं जा सकेगा। तो किसी भी एक आदमी को बर्दाश्त करके भी चलना होगा इस पर कि एक आंख भले ही फूट गई, पर अब सामने वाले को इसका एहसास कराया जाए कि न उसकी फूटे ना हमारी फूटे। तीसरी चीज, चूंकि ये कल्पना और या विचार के तौर पर ये बात लोग सुनने में अच्छा लगता था, पर
0: जी
1: लगता था कि दुनिया के स्तर पर इसको कोई मानेगा नहीं। गांधी जी ने पहले साउथ अफ्रीका में रेसियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ही इसको स्थापित किया। इस साल जो यूनाइटेड नेशंस ने विश्व शांति दिवस के अवसर पर विषय रखा है, इंड रेसिज्म बिल्ड पीस, आप सोचिए ये पूरा सूत्र जुड़ता है वहां से, गांधी से।
0: जी
1: पहली बार एक आदमी को जो पूरा पढ़ा लिखा है उसको एहसास होता है कि केवल हमारे रंग की वजह से, हमारे देश की वजह से हमारे साथ इस तरह का
0: व्यापार हो
1: अत्याचार हो
0: रहा
1: रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो गांधी की सबसे बड़ी खूबी इस मामले में है वो ये कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी निर्भय बना देना, उसको साहसी बना देना,
0: जी।
1: या आप जो दूसरा तरीका है, जो जंग का तरीका है, युद्ध वाला तरीका है, शांति से मुख्तलिफ तरीका है, उसमें हमेशा ताकतवर की चलेगी,
0: जी
1: पर जो शांति वाला तरीका है इसमें कमजोर से
0: सबको
1: कमजोर व्यक्ति भी उसमें आगे बढ़ सकता है,
0: उस
1: एक
0: प्रोसेस
1: चीज
0: का हिस्सा बन
1: हिस्सा बन
0: सकता है।
1: सकता है और वो उसके जरिए अपने हक और हकूक को पा सकता है। एक चीज हमें समझना चाहिए, जो दुनिया की सारी दार्शनिक या ज्ञान की परंपराएं हैं उसमें जो अभी सर चढ़कर बोल रहा है विचार, वो ये कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, या शक्तिशाली ही आगे बढ़ेगा,
0: बढ़ेगा।
1: ताकतवर आगे बढ़ेगा। गांधी कहते थे तो जंगल का कानून है, तो फिर पशुओं में और हम मनुष्यों में क्या
0: क्या फर्क
1: फर्क होगा?
0: रहेगा?
1: अगर हमने सभ्यता की इतनी लंबी यात्रा की है और जो पशु से लेकर मनुष्य तक की हमारी यात्रा है, या हम मनुष्यों का मस्तिष्क कुदरत ने सबसे ऊपर बना के रखा है, तो हमें सोचना होगा कि हम कैसे उनसे भिन्न रहें।
0: जी
1: जंगल में हो सकता है सबसे ताकतवर का
0: कि
1: राज
0: जंगल
1: चले,
0: राज रहे
1: उसका
0: वहां,
1: रहे जो ताकतवर है, पर यहाँ
0: दुनिया में ना रहे,
1: जो
0: इंसान
1: इंसानी
0: की दुनिया
1: दुनिया
0: में
1: है
0: उसमें ना
1: उसमें
0: रहे।
1: ना रहे, ये गांधी बार बार सिखाते समझाते और तमाम जोखिम लेकर भी इसको
0: आगे
1: इसके
0: बढ़ाते रहे।
1: आगे बढ़ाते रहे। एक खास बात मैं अभी, चूंकि इन साहब ने जिक्र किया दूसरे विश्व युद्ध का, गांधी का हिटलर से कोई संपर्क नहीं था, पर उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को पत्र लिखा, 3 पत्र, और कहा कि चूंकि तुम भी मनुष्य हो और मैं भी मनुष्य
0: मनुष्य
1: हूं और
0: हूँ,
1: इसी धरती के हम दोनों वारिस
0: इंसान
1: हैं,
0: है ना।
1: इंसान है, इसलिए इस रिश्ते में तुम मेरे भाई हो और मैं तुमको ये सिफारिश करता हूं, तुमको पत्र लिखता हूं। बार बार उन्होंने जो असंभव दिखने वाली चीज है उसमें भी एक सूक्ष्म संभावना, पॉसिबिलिटी की तलाश करने में वे हमेशा जुटे रहे। और इस लिहाज से नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए या संसाधनों पर कब्जे करने वाले लोगों को एहसास कराने में कि आपका लालच सब कुछ का जिम्मेवार है और इसकी वजह से पूरी दुनिया को आप नरक बना रहे हैं, आप इतने 5,000 या 10,000 साल की यात्रा को 1 मिनट में, 1 सेकंड में मटिया मेट करने को उतारू हैं, तो ये वो हमेशा बताते रहे, समझाते रहे।
0: डॉक्टर साहब, कहीं पर गांधी जी ने एक बार लिखा था
1: जी
0: कि दुनिया में अगर आप पीस कायम करना चाहते हैं तो इसके लिए विपिन की जरूरत नहीं है।
1: जी
0: तो फिर वो विपिन क्या है गांधी जी के पास?
1: हाँ, गांधी हमेशा वो कहते थे कि ये जो हमारी अभी मिलिट्री है अलग अलग तरीके की, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, कहते थे इसकी बजाय पूरी दुनिया में शांति सेना बनाई जानी चाहिए और युद्ध को किसी निदान के तौर पर न देखकर एक मसला के तौर पर

0: देखा जाना चाहिए कि वो अपने आप में वो समस्या है। युद्ध कभी किसी चीज का हल नहीं कर सकता। और वो पूछते थे कि आप इसके असली कारण तक पहुंचे कि किसी भी जगह युद्ध होने का कारण क्या
1: क्या
0: है।
1: है?
0: तो युद्ध होने के कारण के तौर पर दिखता है कि आपको अपनी साम्राज्यवादी भावना का, अपने अपनी बाउंड्री का प्रसार करना है, दूसरे की चीजों को हड़पना है, आपको अपना जितना है उसमें संतोष नहीं है, आप दूसरे के हक और हकूक पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए युद्ध होता है। तो वो उस कारण को समझने की बात हमेशा करते थे कि कारण को ही ठीक अगर कर दिया जाए, लोगों की चेतना को, उनके मस्तिष्क को ही ठीक से समझा दिया जाए, उसको बदल दिया जाए, तब युद्ध नहीं होगा। और जो फिर भी समस्या अगर पैदा होती है तो शांति सैनिक इसकी बात करें, आपस में
1: आपस में बात
0: हर
1: करें।
0: जगह के शांति सैनिक रहें और वो इसके लिए रहें।
1: आपसे और गुफ्तगू अभी जारी रहेगी हमारी। एक बार फिर मैं मुमताज
0: जी
1: रिजवी साहब से मुलतमिस होना चाहूँगा।
0: जी
1: मुमताज साहब, ये गांधी जी ने सिर्फ पॉलिटिकल पीस की बात तो नहीं की थी,
0: जी
1: उन्होंने तो कहा था कि जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के जितने शेड्स आपके पास है उसमें पीस आना चाहिए, और पीस अगर कायम करना चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में और तवील मुद्दत तक, यानी कि लॉन्ग टर्म तक अगर पीस करना चाहते पैदा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर के बच्चों के अंदर पीस पैदा कीजिए।
0: नहीं, बिल्कुल ये
1: ये
0: सही
1: क्या,
0: है।
1: ये बच्चों के साथ पीस पैदा करने की एक बात क्या
0: नहीं
1: थी?
0: देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ तो तारीख है कि बच्चा जब पेट में होता है, हमल से औरत होती है, तो वहीं से वो सीखने लगता है। आप खुद देखते होंगे कि किस तरीके से अभिमन्यु ने पूरी जंग सीख ली थी पेट के अंदर, और आखिर में वो जाग गई, क्या हुआ, बेदार हो गई, जिसकी वजह से वो चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाए, वरना पूरा सीख लेते। तो इसका मतलब ये है कि जंग की बात हो या अमन की बात हो, हुनर की बात हो या गुमराही की बात हो, ये बचपन से ही, जब घुट्टी में जिसको
1: जी
0: कहते
1: जी
0: हैं
1: जी तरबियत।
0: तरबियत, और
1: जी
0: घुट्टी में अगर वो चीज़ पहुंच जाए कि नहीं, हमें अमन की बात करनी। हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन ऐसी है, क्योंकि जब हम हिंदुस्तान की सरजमीन की बात करते हैं, जब हम मादरे वतन की बात करते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि ये जो ज़मीन है, ये जो खित्ता है, ये इतना जरखेज रहा है हमेशा से, कि यहाँ कभी नफरत की बात ही नहीं हुई। हम हमेशा अपनी तकरीरों में भी कहते हैं कि ये ऐसी सरजमीन है कि यहाँ अगर नफरत भी बोई जाएगी ना,
1: तो
0: तो
1: मोहब्बत
0: जब
1: बढ़ती
0: जब दरख्त निकलेगा तो उससे मोहब्बत
1: मोहब्बत ही
0: पैदा होगी,
1: फूटेगी।
0: मोहब्बत फूटेगी। और ये सही है। देखिए, अच्छा, उसकी वजह क्या है? देखिए, बचपन में आप खुद जानते हैं कि बचपन की यादें आपको अभी भी जो है वो हॉर्न करती हैं। आप माजी की तरफ जब जाते हैं, यादों की पगडंडी पे चलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको बहुत मुतासिर करती हैं कि ऐसा ऐसा, और वो कई बार आपको गलत रास्ते से रोक भी लेती हैं, वो बातें बचपन की, कि नहीं, ये बातें हमें माँ बाप ने बताई थी या कोई बुजुर्ग ने ये बात कही थी, नहीं, इससे ये ठीक नहीं। तो क्या है कि इसीलिए गांधी जी हों या कोई हो, वो बचपन से, आज हमारे जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो भी आप देखिए कि नए बच्चों को, कि आने वाली नस्लें 47 में जब देखेंगी तो क्या है, वो चीज़ें जो हैं कैसे, तो हर चीज़ जो है बचपन में उस चीज़ को जब दिया जाता है ज्ञान या इल्म, तो वो बहुत देरपा होता है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए गांधी जी के हवाले से हबीब जालिब का एक शेर है कि जुल्म के होते हुए, जुल्म के होते अमन कहाँ मुमकिन यारो, इसे मिटाकर जग में अमन बहाल करो। जुल्म है, ज्यादती है, जब ये चीज़ रहती है, और जब अदम अदालत हो यानी इंसाफ जहाँ पे ना हो, तो अमन कायम नहीं किया जा सकता। दुनिया में देखिए क्यों जंग हुई, आलमी जंग जो हम बात कर रहे हैं, हुई क्यों? कहीं ना कहीं ज्यादती हुई, कहीं ना कहीं छीना झपटी
1: वो
0: की गई।
1: ज्यादती ना हो तो फिर हर जगह अमन कायम रहेगा।
0: जाहिर है, इंसाफ, देखिए जब तक अदल कायम नहीं होगा, जहां अदल कायम नहीं होगा वहां झगड़ा होगा, और इसीलिए हमारे जो मजाहिब भी हैं अगर आप देखें तो वो क्यों अदल की बात करते हैं, जब अदल होगा तभी अमन होगा।
1: तो
0: देखिए
1: मजहब तो इंसान अमन की बात
0: तो
1: करता ही
0: इसी
1: है
0: नहीं
1: ना,
0: इसीलिए अमन की बात, अदल की बात करता है।
1: अदल
0: देखिए,
1: की बात।
0: पहले अदल की बात होती है, इंसाफ की बात होती है। जब आप इंसाफ की बात करेंगे, अदल की बात करेंगे, तो अमन उसमें पोशीदा है, अमन
1: तो
0: उसमें
1: नहीं,
0: पोशीदा है।
1: आपकी बात एकदम दुरुस्त है, और मुझे याद आता है कि सेवाग्राम आश्रम में जो प्रार्थना हुआ करते थे,
0: जी
1: उस प्रार्थना में ना सिर्फ ये कि किसी एक मजहब की किताब से कोई एक्सट्रैक्ट निकाल करके पढ़ाया जाता था, बल्कि वेद, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल।

0: और दूसरी मजहबी किताबों के भी एक्सट्रैक्ट निकाल कर
1: आज
0: तो पढ़े
1: भी,
0: जाते हैं
1: आज
0: और
1: भी,
0: आज
1: आज
0: भी
1: भी
0: पढ़े जाते
1: भारतीय
0: हैं।
1: विद्या भवन में
0: हाँ
1: मेरा बेटा पढ़ता है, वहां
0: हाँ
1: पे आप देखिए आज भी वहां भी अरबी में दुआएं हैं
0: हाँ
1: और संस्कृत में दुआएं अलग अलग, ऐसा नहीं है आज भी।
0: आज भी ये सिलसिला। तो हमारी ये जो अम की परंपरा है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इन जड़ों को हिलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन जड़ों को सबसे आगे ले जाने वाला कोई हिंदुस्तानी है तो वो है मोहनदास करमचंद गांधी। एक बार हरिजन में किसी अंग्रेज ने एक इंटरव्यू किया था डॉक्टर साहब, तो उस इंटरव्यू में उसने कुछ सवाल किए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अगर आप महात्मा गांधी को अमेरिका की सारी दौलत दे दें तो वो उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें इस बात का इत्मीनान हो जाए कि ये तमाम पैसे इंसानियत के
1: सही
0: लिए,
1: तरीके से आए हैं।
0: इंसानियत की भलाई के लिए खर्च ना हो। यानी कि वो उनकी नज़र है तो हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान के अंदर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चला रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अंग्रेज़ों से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र विश्व शांति पर है कि पूरी दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। ज़रा आप इस पर नज़र
1: जी असल में मैं फिर आपको जो जहां आप जिक्र कर रहे थे गांधी के सेवाग्राम आश्रम का,
0: जी
1: जहाँ उन्होंने आरंभ कराया प्रार्थना सभा में
0: जी
1: कि सारे धर्मों की पवित्र ग्रंथों से कुछ कुछ पंक्तियों को साथ पढ़ा जाए और सब
0: जी
1: लोग एक साथ पढ़ें, ये शुरुआत थी। और हमें ये मान लेना चाहिए कि कुछ तनाव रहे होंगे, कुछ परेशानियां रही होंगी, और अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने श्रेष्ठता बोध में खुद को बाकियों से अच्छा मानते होंगे, इसलिए गांधी जी को जरूरत पड़ी कि हम सबको एक साथ
0: एक
1: बैठा
0: साथ
1: कर
0: बैठा
1: पढ़ाएं।
0: कर।
1: और सर्वधर्म संभाव, सबके धर्म के प्रति आप अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे के धर्म को भी आदर
0: आदर
1: दें,
0: दें।
1: जिससे एक सहिष्णुता का भाव पैदा हो और तनाव खत्म हो। तो ये तो हम लोगों को मानना होगा कि पूरी दुनिया में तनाव के कई कारण रहे हैं, जिसमें से एक धार्मिक तनाव भी रहा है, जिसको सुलझाने के लिए गांधी जी ने लगातार कोशिश की। अब एक दूसरी चीज, वो इन प्रार्थना के जरिए आप याद कीजिएगा कि वो हमेशा पहले मान कर चलते थे कि ईश्वर ही सच्चाई है, पर बाद में लंबे डिस्कशन के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, सच्चाई ही ईश्वर है। पर सच्चाई को परिभाषित कैसे किया जाए, ट्रूथ को कैसे परिभाषित किया जाए?
0: बहुत तफसील से
1: तो हाँ
0: उन्होंने
1: जी,
0: बयान
1: तो
0: किया।
1: उन्होंने इसको कहा कि ट्रूथ का मतलब हुआ अनजस्ट सोसाइटी, न्यायपूर्ण समाज,
0: न्यायपूर्ण समाज,
1: कि ऐसा समाज बन जाए, या उसको अगर बढ़ाकर कहें तो एक ऐसा राष्ट्र बन जाए, ऐसी दुनिया बन जाए जिसमें किसी के साथ नाइंसाफी ना हो।
0: बहुत
1: और ये सत्य है, यानी नाइंसाफी का नहीं होना ही ईश्वर है। अगर किसी मुल्क में, किसी दुनिया में, किसी समाज में, या किसी परिवार में, किसी संगठन में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और सबके साथ न्याय हो रहा है, तो जस्टिस हो रहा है, तो इसका मतलब वहां ईश्वर की मौजूदगी है। क्योंकि गांधी हर चीज को एक स्पिरिचुअल या धार्मिक प्रतीक या उसके जरिए ही देखने समझने की कोशिश करते थे, बहुत पवित्र ख्याल के जरिए इन सारे विचारों पर वो सोचते थे। इसलिए वो धर्म को अलग नहीं करते थे, अध्यात्म को अलग नहीं करते थे, राजनीति को अलग नहीं करते थे, जीवन की सारी चीजों के बीच एक ऑर्गेनिक रिश्ता देखते थे वो। पर वो मानते थे कि ये हिंसा जब तक रहेगी अन्याय रहेगा। अब हिंसा जब तक रहेगी अन्याय रहेगा, तो इस हिंसा को के खात्मे के तौर पर जो गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हिंसा के खात्मे के लिए हिंसा ही की जाए, या
0: जी
1: हिंसा के खात्मे के लिए अहिंसा के जरिए आया जाए। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, ये कुछ
0: विचार
1: लोग
0: है।
1: मानते हैं कि नहीं, हिंसा को हिंसा से भी
0: हाँ
1: खात्मा
0: रिपेंडेंस।
1: करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर गांधी कहते थे फिर आप एक अहिंसक दुनिया नहीं बना पाएंगे, आप जो सिविलाइजेशन बना पाएंगे
0: जी
1: उसमें फिर हिंसा रहेगी ही, उसमें फिर वायलेंस रहेगा ही, उसमें फिर अन्याय रहेगा ही, गैर बराबरी रहेगी ही। तो गांधी इन सारी चीजों को देखते के साथ एक स्ट्रक्चरल वायलेंस के प्रति भी सचेत थे कि हम कोई ऐसा ढांचा भी बना लें, दुनिया ऑर्गेनाइज कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा ऐसा हो जाए, नेशन स्टेट का ढांचा ऐसा हो जाए, या दुनिया के स्तर पर देखें तो ताकतवर मुल्क बाकी देशों के साथ अपनी बातों को ढांचे के बल पर, अपनी ताकत के बल पर मनवा लें। तो गांधी उससे इनकार करते थे, वो कहते थे मैं अकेला व्यक्ति भी रहूंगा तब भी इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा, इसके खिलाफ बोलता रहूंगा। और इसीलिए वो उनको रविन्द्रनाथ टैगोर का वो गीत भी बहुत अच्छा लगता था कि अगर तुम्हारी कोई आवाज ना सुने, जो दी तेरा
0: तभी
1: डाक सुने ना कोई,
0: हाँ
1: एकला
0: अकेला
1: चलो
0: चलो
1: रे,
0: रे,
1: एकला
0: अकेला
1: चलो
0: चलो
1: रे,
0: रे।
1: अकेले चलो
0: जी
1: अगर तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुने।

0: मानता है तो गांधी जी हमेशा इस बात की ताईद करते रहे, इस पर जोर देते रहे, अर्ज करते रहे सबसे कि पहले संसाधनों का बंटवारा बराबर करो और किसी की जरूरतें इतनी अधिक न हो जाए या किसी के पास इतनी अधिक चीजें न हो कि दूसरे के पास कुछ भी न हो, और उसके जरिए हिंसा होगी और उसके जरिए शांति नहीं कायम की जा सकती, और वो बेहतर जीवन के लिए शांति की बात करते थे। एक बात पर और वो जोर देते थे
1: जी
0: अपने शिष्यों के बीच कि हम कुदरती तौर पर पीस के समर्थक हैं, हम उत्तेजना में, गुस्सा में, नफरत में, एक मोमेंट में तो रह सकते हैं पर लगातार नहीं रह
1: लगातार
0: सकते,
1: नहीं,
0: लंबे
1: हमेशा
0: समय
1: नहीं,
0: तक नहीं रह सकते।
1: हमेशा नहीं रह सकते।
0: अगर कोई कौम या कोई व्यक्ति भी लंबे समय तक नफरत और गुस्सा की आग में जलते हुए रहेगा तो उसके भीतर एक हार्मोनल डिसबैलेंस होगा
1: होगा,
0: और वो धीरे धीरे भले ही वो मनुष्य के तौर पर उसका
1: रहेगा
0: शरीर
1: नहीं,
0: रहे लेकिन
1: रहेगा
0: वो रह जहनी तौर पर नहीं रहेगा,
1: नहीं।
0: वो पशु हो जाएगा और राक्षस हो जाएगा।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत तफसील से आपने सारी बातें बताएं। बस एक नुक्ते पर और बात करनी है,
0: जी
1: और चाहूँगा कि हमारे रिजवी साहब, मुमताज़ रिजवी साहब, इसका जवाब दें कि देखा आपने कि पॉलिटिकल सतह पर उनकी कोशिश थी कि हिंदुस्तान में कोई तशद्दुद ना हो और आज़ादी की जंग हम जीत जाएं। बड़ी हद तक कामयाबी उसमें मिली इनको। फिर उन्होंने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया। तो पॉलिटिकल सतह पर फिर डॉक्टर साहब ने बात बताई कि किस तरह सोसाइटी की सतह पर, समाज की सतह पर तमाम मजहब को लेकर के चलने की कोशिश की। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उन्होंने हर सतह के इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश की। मजहब के इख्तलाफात को दूर करने के लिए आश्रम में एक साथ तमाम मजाहब के एक इज्तिमा किया। इसी तरह जब हिंदुस्तान में हिंदी उर्दू का झगड़ा हुआ तो ये हिंदुस्तानी का अलम लेकर के खड़े हो गए और कहे कि हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जबान इस्तेमाल करें जिसमें ना उर्दू बहुत ज्यादा होगी ना हिंदी बहुत ज्यादा होगी, बल्कि दोनों की आमेजस होगी। क्या राय है आपकी?
0: नहीं देखिए, इलाहाबाद में हिंदुस्तानी एकेडमी कायम है,
1: जी
0: वो इसी की बुनियाद है,
1: जी
0: और हमने वो रसाला भी देखा है कि जिसमें सिर्फ स्क्रिप्ट जो है अलग, यानी एक लिखावट,
1: एक रस्मुल खत में, एक
0: दो
1: देवनागरी में
0: भाषाएं एक लिखावट, तो आप देखिए कि वहाँ रसाला अब भी शायद निकलता होगा, मैं
1: निकलता
0: नहीं
1: है,
0: जानता।
1: अभी भी
0: तो
1: निकलता है।
0: अच्छा, उसमें जबान का फिर हम लोग जो बोलते हैं, आप देखिए कि हिंदी उर्दू अभी जो बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। तो ये इसीलिए था, देखिए ये इसलिए था क्योंकि आज आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो मुल्क तकसीम हुआ तो उसका इल्ज़ाम एक ज़बान पे दे देते हैं, लेकिन अगर गांधी जी को आप देखेंगे तो वो इल्ज़ाम दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ तो ज़बान का वही ख़त्म हो गया था। तो ये जो गांधी जी का, देखिए जिस तरीके से ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको सम्मति दे
1: दे रखा
0: भगवान, इस तरीके बहुत सारी चीज़ें, और फिर वो जहाँ हिंदुस्तान में भी आप देखिए कि आखिरी वक्त में भी जब ज़्यादा फसादात हुए तो धरना दे करके वो बैठ गए कि हम उठेंगे नहीं। तो इस तरीके की शख्सियत जो है, और इसीलिए आप देखिए पूरी दुनिया में गांधी जी का मुजस्समा है और उनके लोगों के दिलों में मुजस्समा
1: और
0: बने हुए हैं।
1: वो शख्स कितना अमली था, प्रैक्टिकल था कि अगर कलकत्ते में फसाद हुआ तो वहां पहुंच रहा
0: मैं
1: है,
0: वही कह रहा हूँ, हर
1: नवा
0: जगह
1: दिल्ली
0: जाकर
1: में वहां
0: इकट्ठा
1: पहुंच
0: हुए
1: रहा है,
0: लोग।
1: बिहार
0: आप
1: में पहुंच
0: बचते
1: रहा
0: हैं,
1: है।
0: एक ट्वीट करते हैं, लेकिन वो उस वक्त जब संसाधन नहीं थे, अब तो लोग जा सकते हैं,
1: हाँ, आराम
0: अब
1: से जा
0: फसाद
1: सकते
0: होता
1: हैं।
0: रहता है, लोग सियासत करते हैं, मैं खैर उस पर नहीं जाऊंगा,
1: जी
0: वो अहले सियासत हैं, वो उनका काम
1: जी
0: जाने, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन ये कि मैं फिर वही बात कहूंगा कि गांधी जी इतना बड़ा सिंबल हमारे साथ है, इतनी बड़ी ताकत, जो नजरिया है, देखिए नजरिया ही ताकत होती है,
1: जी
0: बाकी
1: जी
0: कुछ नहीं होता है,
1: जी
0: कि आपका नजरिया क्या है वही ताकत आपकी बनती है। और आज फिर हम कह रहे हैं कि अगर विश्व गुरु हिंदुस्तान बन सकता है, भारत बन सकता है, तो वो गांधी जी के नजरिए से बन सकता है। इसलिए गांधी जी को याद करना बहुत जरूरी है, गांधी जी ऐसे टाइम आ रहे और उनके नजरिए पे चल के हम हिंदुस्तान को तरक्की दे सकते हैं, हिंदुस्तान को मजबूत कर सकते हैं, हिंदुस्तान में भी हमने कायम कर सकते हैं और पूरी दुनिया
1: दुनिया
0: में
1: में
0: हमने
1: भी।
0: कायम कर सकते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सामईन, ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे
0: शुक्रिया।
1: गांधी जी और आलमी अमन के सिलसिले में, और हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी तरह इसको बयान किया कि किस तरह सियासी सतह पर गांधी जी ने कोशिश की, समाजी सतह पर कोशिश की, मजहबी सतह पर, यहाँ तक कि लसानी सतह पर भी हमाहंगी, दोस्ती, मेल मिलाप, शांति पैदा करने की ये कोशिश जो कर रहा है उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ये एक ऐसी शख्सियत हिंदुस्तान के है जिसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, या दुनिया की तारीख इन्हें फरामोश नहीं कर सकती। हम अपने दोनों पैनलिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी साहब, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, राजधानी कॉलेज, न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी।

0: और डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, एडिटर रोजनामा कौमी भारत, का शुक्रिया अदा
1: शुक्रिया,
0: करता
1: बहुत
0: हूँ कि
1: शुक्रिया
0: आप
1: मोहम्मद।
0: दोनों ने बड़ी तफसील से और बहुत रिलेवेंट अंदाज में ये गुफ्तगू की। और हफीज़ के इस शेर पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हफीज़ अपनी बोली मोहब्बत की बोली, हफीज़ अपनी बोली मोहब्बत की बोली, ना उर्दू ना हिंदी ना हिंदुस्तानी।
1: वाह,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
1: शुक्रिया।

0: श्रोता अभी आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
2: 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक स्थगित। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारतीय रेलवे ने 440 करोड़ रुपए की लागत से निमपुरा पश्चिम आउटर कैबिन और दक्षिण पूर्वी रेलवे के मिदनापुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। भारत का आसियान में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि रुकी रहेगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

आज हम एक और नए दिन की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। आज भारत के लिए एक और नया दिन, आज इस विश्व के लिए एक और नया दिन। नई उम्मीदें, नए ख्वाब या फिर नई चिंताएं, नए लक्ष्य, नई आवाज, नई पहचान, नया दिन, नई रात, नए लोग, नए विचार, और इन सब के पीछे भारत की वो नींव जो सदियों से कई करोड़ लोगों ने रखी। संदेश टू सोल्जर्स में हम बात करते हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उन जवानों की

अफसरों की जिन्होंने अपने शौर्य की गाथा गाने पर मजबूर कर दिया, देश के प्रति अपना योगदान, अपना समर्पण देने के लिए वो पीछे नहीं हटे। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम पर, महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 के वॉर हीरो, इंडियन एयरफोर्स के लेट विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम। कैनबरा की फ्लाइंग स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, अफ्रीका के देश कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा रहे। 1965 और 1971 की जंग में हमारे लड़ाकू विमान को उन्होंने दुश्मन की उस चालाकी, उस चुनौती के सामने लाखड़ा कर दिया और भारत के लिए विजयी परचम लहराया। आज हम फिर से गाथा गाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स की, जिसके साथ न जाने कितने टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ और जाबाज पायलट इसका हिस्सा है।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हम बात कर रहे हैं लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की महावीर चक्र से जो सम्मानित किए गए। इसके साथ साथ उन्हें वायुसेना मेडल भी दिया गया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, वक्त है अपने वॉर हीरो से अपने देशवासियों को मिलाने का, इसीलिए संदेश टू सोल्जर्स में हम लेकर आए हैं कहानी नहीं बल्कि हकीकत विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। इनका जन्म 23 जुलाई 1933 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी थी इनकी फैमिली, इनका परिवार। आपके पिता श्री नीलकंठ पद्मनाभ एक जाने माने फिजिसिस्ट थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे और अहिल्याबाई होलकर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके थे। माँ भी एक अकम्प्लिश एजुकेटर थी और एजुकेशन की फील्ड में काफी देर तक जुड़ी रहीं और रिटायर हुई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसी एक समृद्ध पढ़े लिखे परिवार से पद्मनाभ गौतम आगे निकल कर आए और फिर इंडियन एयरफोर्स की 16 स्क्वाड्रन के साथ जा जुड़े। इनकी कहानी अगर वॉर की बात की जाए तो शुरू होती है 1965 की लड़ाई के साथ, लेकिन हम इनके साथ सबसे पहले 1961 की कहानी बताना चाहेंगे जहां उन्हें एक अहम इंटरनेशनल मिशन के लिए चुना गया, कांगो में यूनाइटेड नेशंस का पहला भारतीय संचालित शांति रक्षा अभियान। 6 दिसंबर 1961 को उन्हें काटंगा में कोलवेजी एयरफील्ड पर हमला करने के लिए कहा गया, जो एक बहुत ही जरूरी और जोखिम भरा मिशन था। ये एक अहम रणनीतिक बेस था जिस पर काटंगा की सेनाओं का कब्जा था। इस एयरफील्ड का इस्तेमाल यूएन की जमीनी टुकड़ियों पर हवाई हमले करने के लिए किया जा रहा था। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स शांति बनाए रखने के लिए चल रहे अभियानों की सफलता पर गंभीर रूप से इसे देख रही थी और जो पीस मिशन चल रहा था वहां पे यह खतरा मंडरा रहा था। ये टास्क इंडियन एयरफोर्स की उस टुकड़ी को दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के साथ कांगो में डेप्यूटेशन पर थे। उस दिन जिस दिन हमला होना था, बेहद खराब मौसम और दुश्मन की जबरदस्त गोलीबारी का सामना करने के बावजूद, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहे गौतम पद्मनाभ गौतम ने असाधारण साहस और उड़ान कौशल का प्रदर्शन देते हुए भारी सुरक्षा वाले एयरफील्ड पर बहुत सारी बमबारी की और ये था लो फ्लाई

0: mission.
1: हमले के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक एक फोगा विमान को भी नष्ट कर दिया एयर टू एयर कॉम्बैट में।

एयर टू एयर कॉम्बैट के बाद लो फ्लाइंग मिशन था, जहां पर बहुत सारे कैनन जो हैं वो दागे जा रहे थे। जो जहाज पद्मनाभ गौतम उड़ा रहे थे वो था कैनबरा, और भारी गोलाबारी के बीच में लो फ्लाई करते हुए उन्होंने टारगेट अचीव करना था।

एक फौगा विमान जो यूनाइटेड नेशंस की जमीनी सेनाओं को लगातार परेशान कर रहा था, उसको शांत करना बहुत जरूरी था। फौगा विमान को बेकार करने के अलावा तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने जमीन पर खड़े कटंगा के तीन अन्य विमानों को भी बेकार कर दिया और एयरफील्ड पर अब निशाना साधने लगे।

दुश्मन के एयरफील्ड पर इस तरह का हमला करना जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत भारी। इससे दुश्मन के ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त झटका लगा और फिर जो होना था वो हुआ, यानी दुश्मनों के हौसले जो थे वो परास्त कर दिए गए। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम को एलिजाबेथ विले के ऊपर कई और सफल उड़ानें भरने के लिए कहा गया और कटंगा की सेनाओं के साथ भीषण लड़ाई में उलझी यूनाइटेड नेशंस की जमीनी टुकड़ियों को करीबी हवाई सहायता प्रदान करने के लिए और मिशंस दिए गए। उनके सटीक और समय पर किए गए हवाई हमलों ने जमीनी अभियानों को सफल बनाने और दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इन अभियानों के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने असाधारण बहादुरी, पेशेवर उत्कृष्टता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया और अक्सर विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया। उनके कार्यों ने यूएन सेनाओं की ऑपरेशनल सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय वायुसेना का मान बढ़ाया। दुश्मन की कार्रवाई का सामना करते हुए उनकी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के सम्मान में तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर और उसके बाद विंग कमांडर बनने की कहानी और उसके बाद आने वाली बड़ी चुनौतियां, क्योंकि 1961 के बाद जब भारत के लिए लड़ने के लिए उन्हें अपने मिग फाइटर्स और कैनबरा फाइटर्स उड़ाने पड़े तो वो भीषण युद्ध था। पाकिस्तान और भारत का भीषण युद्ध 1965 वॉर, जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में, महावीर चक्र से सम्मानित। 1965-1971 जंग के जांबाज इंडियन एयरफोर्स के पायलट। इससे पहले कि हम उनकी शौर्य गाथा आगे आपको सुनाएं, एक नजर डालते हैं अपने वॉर हीरो के बचपन की। पद्मनाभ गौतम वो तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे और अपने दो छोटे भाइयों अशोक और अजीत के साथ उनका गहरा लगाव था। कम उम्र से ही विंग कमांडर गौतम में एक मकसद और सेवा भाव की भावना दिखाई देती थी। इसी कर्तव्य भावना के कारण वो जॉइंट सर्विसेज विंग, जो आज की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसका एक शुरुआती रूप था।

जांबाज इंडियन एयरफोर्स के पायलट। इससे पहले कि हम उनकी शौर्य गाथा आगे आपको सुनाएं, एक नजर डालते हैं अपने वॉर हीरो के बचपन की। पद्मनाभ गौतम वो तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे और अपने दो छोटे भाइयों अशोक और अजीत के साथ उनका गहरा लगाव था। कम उम्र से ही विंग कमांडर गौतम में एक मकसद और सेवा भाव की भावना दिखाई देती थी। इसी कर्तव्य भावना के कारण वो जॉइंट सर्विसेज विंग, जो आज की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसका एक शुरुआती रूप था और तब देहरादून में स्थित थी। इस एकेडमी के तीसरे कोर्स में वो शामिल हुए। उन्होंने बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर 60वें पायलट कोर्स के हिस्से के तौर पर अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की और 1 अप्रैल 1953 को भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। अपनी शुरुआती ऑपरेशनल पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से उस दौर के कुछ सबसे मशहूर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे स्पिटफायर और वैम्पायर, ऐसे जहाज उड़ाए। बाद में वो डिसॉल्ट तूफानी एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले स्क्वाड्रन में चले गए, जिससे कई तरह के एयरक्राफ्ट पर उनके लंबे और शानदार फ्लाइंग करियर की शुरुआत हुई। उनके नेतृत्व और सिखाने की क्षमता को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 1956 में उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में ट्रेनिंग के लिए चुना। 1957 और 1958 के बीच उन्होंने जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने युवा कैडेट्स को हार्वर्ड एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग दी और अपनी सिखाने की कला और तकनीकी दक्षता को और बेहतर बनाया। 1958 में आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट यानी JBCU में खास ट्रेनिंग लेने के बाद वो कैनबरा जेट बॉम्बर पर चले गए। यहीं से बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में उनकी विशेषज्ञता की शुरुआत हुई। उनके बढ़ते अनुभव के कारण उन्हें एक इंटरनेशनल असाइनमेंट भी मिला और उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इराक भेजा गया, जहां उन्होंने MiG-15 और MiG-17 एयरक्राफ्ट उड़ाए और इराकी वायुसेना की ट्रेनिंग और क्षमता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में।

कहते हैं अगर एयरफोर्स में आना हो तो एक जज्बा होना चाहिए। कुछ देर पहले हमने बताया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम, और कांगो में स्थित यूएन पीस कीपिंग फोर्स को उन्होंने किस तरह से वायुसेना के वो मदद प्रदान की जिससे मिशंस सक्सेसफुल हुए। ट्रेनिंग, फाइटर क्राफ्ट्स, और उसके बाद 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान ने विदेशी एयरक्राफ्ट्स लेकर, टैंक्स लेकर एक चुनौती पेश करनी चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ। इंडियन एयरफोर्स के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे पायलट्स रात दिन रैनक मिशन्स में जाने

भारत दोस्ती का हाथ, विश्व भर में हर देश के साथ दोस्ती का वो प्रस्ताव लेकर जाता था। कई जगह ये सोचा गया कि भारत कमजोर देश है, इसलिए शायद दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन जिसने भी भारत से दोस्ती की, भारत का हाथ पकड़ के, उस देश को मालूम पड़ा कि इस हाथ में बहुत ताकत है और केवल ताकतवर इंसान ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर वो दोस्ती वाला हाथ मुट्ठी में बदल गया तो देश की ताकत, देश की असली ताकत वो सबके सामने आ जाएगी। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की बात हम कर रहे हैं और उनके शौर्य की गाथा गाते हुए हम 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई की तरफ चलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर वो आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट में वापस आ गए थे। जब लड़ाई शुरू होने के आसार थे तब वो कमांडिंग ऑफिसर थे और उनकी शानदार लीडरशिप में JBCU यानी जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट ने, जो असल में ट्रेनिंग यूनिट थी, लड़ाई में एक फ्रंट लाइन ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की तरह जोश और प्रोफेशनलिज्म के साथ हिस्सा लिया। यूनिट ने डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग मिशन और सटीक टारगेट मार्किंग जैसे कामों में खुद को साबित किया। पाकिस्तान के पास उस समय सेबर जेट्स थे जिसके गुणगान वो गाया करता था, लेकिन विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम ने और उनकी टीम ने ऐसे काम किए जो बहुत ज्यादा हुनर और हिम्मत की जरूरत मांगते थे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में कई साहसें उड़ाने भरी, रिकॉनोसेंस मिशन या फिर अटैकिंग मिशंस। ऐसे काम करने के लिए एक खास आत्मविश्वास और सटीकता की जरूरत थी, लेकिन पद्मनाभ गौतम ने ऐसे मिशंस किए जो बहुत असरदार थे। कहते हैं कि उनके मिशन इतने असरदार थे कि पाकिस्तान के मिलिट्री इतिहासकार भी उनकी बहादुरी और असरदार काम को अनमने ढंग से ही सही लेकिन सम्मान के साथ मानते थे। 1965 वॉर के ऑपरेशन के दौरान उनकी निडर लीडरशिप और जबरदस्त बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

एक ऐसा मिशन जो सिर्फ कैनबरा के जहाज ही कर सकते थे। कहते हैं भारत के पास उस समय कैनबरा के जहाज थे जो एक बहुत ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकानों की रिकॉनोसमिशन में फोटोग्राफी करके यहां अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मददगार साबित होते थे। कुछ मिशंस तो लो फ्लाइंग बॉम्बिंग के लिए भी पद्मनाभ गौतम ने किए हैं।

और रात में अटैक करना प्रिसिजन यानी सटीकता मांगते थे। सेबर जेट सुपरसोनिक जहाज थे जिनका सामना इंडियन एयरफोर्स को करना था, और हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनाकर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को चौंका रही थी। और उसी के बीच में पेशावर पे अटैक करके पद्मनाभन गौतम और उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की।

1965 और वो एक ऐसा दौर जहां हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पैटन टैंक और सेबर जेट का डर दिखाकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश नाकाम रही। इंडियन एयरफोर्स के नैट फाइटर्स सुपरसोनिक साबर को चुनौती देने के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड में रात के अंधेरे में घूमते रहते थे, और जब भी सेबर जेट सरहद पार करके हमारे देश की तरफ आते थे तो उस हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे उतरते हुए एक एक्स्ट्रा स्पीड गेन करते हुए वो फायर करते थे। और वैसे ही कैनबरा और मिंक्स इस सुपरसोनिक जहाज का सामना करके उसे नष्ट कर रहे थे। ग्राउंड पर वॉर चल रही थी जहां इंडियन आर्मी एक बहुत घातक युद्ध लड़ रही थी। असल उत्तर का वो बैटलफील्ड जहां की रिकॉनसॉम मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी पोजीशंस का सही ब्यौरा दिया। एक ऐसा बैटल जहां खून की होली खेली गई। ये खून की होली जमीन पर खेली गई थी जहां हमारे बहुत सारे जाबाज सिपाही डटे रहे। गोलियां चलती रहीं और वो गोलियों को सीने पर लेते रहे, लेकिन मजाल है कि एक इंच भी उनका पैर पीछे पड़ा हो। वो दौर भीषण युद्ध का दौर था। भारत ने उस चुनौती को सामना किया और इंडियन एयरफोर्स ने जहां जहां हो सका वहां मदद पहुंचाई।

आज हम संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 की लड़ाई के इंडियन एयरफोर्स के हीरो, साथ ही साथ 1965 में शहीद हुए उन सैनिकों को भी याद करते हैं आज यहीं पर। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की जन्मतिथि है, इसलिए विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में उनको समर्पित है।

शेर की नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर उस नजर

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम याद कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को, महावीर चक्र से सम्मानित। और हमने बताया कि किस तरीके से 1965 के युद्ध में भी जेट बॉम्बर कन्वर्शन यूनिट को कमांड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर। लेकिन आगे चल के उनका इंतजार कर रही थी 1971 की भारत पाकिस्तान की एक और जंग। उस समय वो विंग कमांडर गोरखपुर से ऑपरेट करने वाले 16 स्क्वाड्रन की कमान संभाल रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम बन गए। स्क्वाड्रन ने पूर्वी मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई, जहां भारतीय सेना ने बहुत तेजी से और निर्णायक जीत हासिल की। उनकी लीडरशिप में 16 स्क्वाड्रन ने दुश्मन के इलाके में बहुत जोखिम वाले बॉम्बिंग मिशन पूरे किए, जिससे पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। रणनीतिक सटीकता और हिम्मत के साथ किए गए इन साहसी ऑपरेशन ने युद्ध में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 1971 की लड़ाई के दौरान उनकी बेहतरीन सेवा और बेमिसाल बहादुरी के लिए विंग कमांडर गौतम को उनके महावीर चक्र के साथ बार से सम्मानित किया गया। वे भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह दुर्लभ सम्मान पाने वाले केवल 2 अधिकारियों में से एक बने। युद्ध के बाद

1972 की शुरुआत में विंग कमांडर गौतम को एयरफोर्स स्टेशन पूना, जो अब लोहेगांव के नाम से जाना जाता है, ऑफिसर इंचार्ज फ्लाइंग के तौर पर तैनात किया गया। 25 नवंबर 1972 को MiG-21 में एक रूटीन उड़ान के दौरान एक दुखद घटना घटी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान में फ्लेम आउट हुआ, यानी उड़ान के दौरान इंजन का फेल होना, जिससे उनके पास इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग की कोशिश करने के अलावा और कोई चारा न बचा। विमान और खुद को बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद जबरदस्ती लैंडिंग के दौरान उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और कुछ ही देर बाद वो शहीद हो गए।

विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक रहे हैं। उनका करियर असाधारण साहस, अटूट समर्पण और देश सेवा के प्रति पक्के संकल्प से भरा रहा। 1965 और 1971 दोनों युद्ध के दौरान उन्होंने बमबारी के अहम मिशनों को नेतृत्व किया, जिन्होंने दुश्मन के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया और भारत के पक्ष में निर्णायक बढ़त दिलाई। उनके निडर कारनामे खासकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर किए गए ऑपरेशन आज भी हमारे जांबाज पायलट्स को बहुत इंस्पायर करते हैं। वो लड़ाई हो 1965 की, 71 की, कारगिल युद्ध हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन एयरफोर्स खड़ी है डटकर उस तिरंगे के लिए, आपके लिए, हमारे लिए।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हमने आप सबको रूबरू कराया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, महावीर चक्र से सम्मानित भारत के जांबाज पायलट से 16 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की, और आज उनकी जन्मतिथि है, इसीलिए आज का संदेश टू सोल्जर्स समर्पित किया हमने विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को। आशा करते हैं आकाशवाणी की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। ये कहानी हमने इसलिए सुनाई क्योंकि याद है ना वो अल्फाज, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी।

0: से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं, आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम युववाणी।

श्रोताओं, कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़ के युवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा वर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज के संग में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ फिल्मी गीत और साथ ही हम करेंगे कुछ विषयों पर चर्चा। तो लीजिए दोस्तों, कार्यक्रम की हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले करते हैं आज की बात से। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि निवास करती है। दोस्तों, हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सामाजिक ही नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं से भी जुड़ा हुआ है। बुजुर्गों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है? दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, फिर ये जीवन के तीन महत्वपूर्ण पड़ाव चलते चले जाते हैं। जिस प्रकार आज हमारे घरों में मौजूद बुजुर्ग कभी युवा थे, उसी प्रकार एक दिन हम भी वृद्ध होंगे। इसलिए बुजुर्गों के प्रति हमारा व्यवहार केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि हमारे संस्कारों का दर्पण है। दोस्तों, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी कभी अपना जल नहीं पीती। परमार्थ के लिए सज्जन जीते हैं और माता पिता अपने बच्चों के लिए जीते हैं। दोस्तों, हमारे माता पिता, दादा दादी ने अपना पूरा जीवन हमारे पालन पोषण, शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग किया, कठिन परिश्रम किया और हमें जीवन की राह दिखाई। आज जब वो वृद्धावस्था में पहुँचते हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी देखभाल करें, उनका सम्मान करें और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार से रहें। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में सदैव बुजुर्गों को विशेष स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, यानी माता पिता को देवता के समान मानो। संयुक्त परिवार की परंपरा में तो दादा दादी और नाना नानी बच्चों को संस्कार देते थे, वे परिवार की नींव माने जाते थे। दोस्तों, उनके अनुभवों से परिवार की दिशा मिलती थी, लेकिन आधुनिकता और व्यस्त जीवन शैली की ओर बढ़ते परिवारों के कारण एकल परिवारों में परिवर्तन आ गया है। आज कई बुजुर्ग स्वयं को भी आधुनिकता में नहीं ढाल पाते और लीजिए इस विषय को हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में रामलाल नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाया उसने। समय बीतता गया और बेटा शहर में बस गया। धीरे धीरे उसने अपने वृद्ध पिता को बोझ समझना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपने पिता के लिए घर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी ताकि वे वहीं रह सके और वो बुजुर्ग चुपचाप सब सहते रहे, सुनते रहे। बेटे का 10 वर्ष का पुत्र यह सब देख रहा था। एक दिन वह लकड़ी का एक छोटा कटोरा बनाने लगा। पिता ने पूछा, यह क्या बना रहे हो? तो बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, पिताजी जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको इसी कटोरे में खाना दूंगा। यह सुनकर बेटे की आंखें खुल गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। उसने अपने पिता से तुरंत सम्मानजनक घर के अंदर लेकर आए और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उनकी सेवा करने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बच्चे वही

सीखते हैं जो हम करते हुए, जो हमें वो करते हुए देखते हैं, जो हम करते हैं। यदि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो अगली पीढ़ी भी हमारा सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है दोस्तों। खुशियाँ देंगे, बांटेंगे तो खुशियाँ ज़्यादा मिलेगी। बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं होते, बल्कि अनुभव का खजाना होते हैं। आप उनके पास दो पल बैठकर तो देखिए, आपको पूरी इतिहास की लंबी चौड़ी घटनाएं, जो भी उनके जीवन में घटे तो ये सब बता देंगे बिना गूगल से सर्च किए हुए। ना उनके पास फ़ोन होता है, ना फिर ज़्यादा कंप्यूटर लैपटॉप ऐसे संसाधन होते हैं, लेकिन उनके पास उनके अनुभव होते हैं जो ना हमारे मोबाइल फ़ोन में मिलते हैं, ना सोशल मीडिया में, ना कोई ऐप्स में। दोस्तों, उन्होंने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे होते हैं। उनके अनुभव हमें गलतियों से बचा सकते हैं। एक युवा के पास ऊर्जा होती है, लेकिन बुजुर्गों के पास होता है अनुभव। जब ऊर्जा और अनुभव एक साथ मिल जाते हैं तो सफलता मिलनी निश्चित हो जाती है दोस्तों। महान लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, जब मैं 14 वर्ष का था, मुझे लगता था कि मेरे पिता मुझसे बहुत कम जानते हैं। लेकिन जब मैं 21 वर्ष का हुआ तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 7 वर्षों में उन्होंने कितना कुछ सीख लिया। दोस्तों, यह कथन हमें बताता है कि उम्र के साथ अनुभव का मूल्य वर्तमान में समझ आता है। आज के दौर में अनेक बुजुर्ग जिनकी कई समस्याओं का हम सामना करते हुए देख रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक असुरक्षा, अकेलापन, दोस्तों, अगर हम मोबाइल फ़ोन से दूरी बना लें, अपनों के साथ बातचीत के लिए समय निकालें, तो टाइम ही टाइम है। अगर हम यह सोचे टाइम नहीं है और फ़ोन में व्यस्त रहें, डेली रूटीन के कामों में व्यस्त रहें, तो परिवार के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। कई बार बच्चे रोजगार या शिक्षा के लिए दूर चले जाते हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन इसका अर्थ यह है नहीं कि हम अपने बुजुर्गों को भूल जाएं। टेक्नोलॉजी के इस युग में प्रतिदिन कुछ मिनट फ़ोन पर बात करना भी उनके लिए बहुत बड़ी खुशी बन सकता है। हमारी जिम्मेदारी है उनको सम्मान देना, समय देना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, भावनात्मक सहयोग देना, उनकी राय लेना, उनकी राय का सम्मान करना। भले ही दोस्तों टाइम कितना ही बदल चुका हो, टेक्नोलॉजी का कितना ही विकास क्यों ना हो चुका हो, लेकिन अनुभव कभी पुराने नहीं होते। महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी राय अवश्य लेनी चाहिए। युवाओं को चाहिए कि बुजुर्गों के अनुभव से कुछ ना कुछ सीखें, उनके साथ समय बिताएं, डिजिटल तकनीक का उनको भी उपयोग सिखाएं, उन्हें समाज से जोड़ कर रखें और उनका आत्मसम्मान बनाए रखें। झुर्रियों में जीवन का ज्ञान छिपा है, उनकी बातों में सम्मान छिपा है। जो बुजुर्गों का आदर करना सीख गया, उसके जीवन में भगवान छिपा है। तो इस विषय के अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगी कि बुजुर्ग हमारे अतीत की पहचान, भविष्य के मार्गदर्शक है। जिस प्रकार एक वृक्ष अपनी जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, उसी प्रकार समाज अपने बुजुर्ग से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो आइए आज से हम संकल्प लें कि अपने समय का थोड़ा सा समय उनके साथ हम स्पेंड करेंगे। माता पिता, दादा दादी, सभी बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, चाहे वो आपके समाज में रहने वाला ही बुजुर्ग क्यों ना हो, आपका रिलेटिव भी ना हो, उनकी सेवा करेंगे। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, वह वास्तव में अपनी भविष्य का सम्मान करता है। लीजिए करते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं फिल्मी गीतों के साथ। आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

दोस्तों, हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे केवल घर, मोहल्ले या शहर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के स्वास्थ्य, विकास और सम्मान से जुड़ा है। स्वच्छता और जनभागीदारी। श्रोता, महात्मा गांधी ने कहा था, स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वच्छता। यह कथन दोस्तों केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। स्वच्छता केवल सफाई का नाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, सुंदर वातावरण और जिम्मेदार नागरिक का प्रतीक है। आज भारत हमारा तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। हम विकसित भारत 2047 का सपना देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन यह सपना तभी साकार होगा जब हमारा देश स्वच्छ होगा, प्रत्येक नागरिक स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेगा। अक्सर हम स्वच्छता को केवल झाड़ू लगाने या फिर कचरा उठाने तक सीमित समझ लेते हैं, जबकि स्वच्छता का अर्थ बहुत व्यापक है दोस्तों। स्वच्छता इट मीन्स शरीर की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, विद्यालय या फिर आपके कार्यस्थल की स्वच्छता, सड़क और सार्वजनिक स्थानों की, विचारों की और पर्यावरण की स्वच्छता। दोस्तों, जब हमारा वातावरण स्वच्छ होगा तो बीमारी अपने आप ही कम होती चली जाएंगी, जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है और समाज में पॉजिटिव वाइब्रेशंस का वातावरण बनता है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य होता है, वहाँ जहाँ स्वास्थ्य सही होता है वहाँ समृद्धि अपने आप आ जाती है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अनेक बीमारियाँ गंदगी और अस्वच्छ वातावरण के कारण ही तो फैलती हैं। खुले में कचरा फेंकना, गंदा पानी जमा होना, प्लास्टिक का अनियंत्रित यूज़, खुले में शौच जैसी समस्याएं अनेक रोगों को जन्म देती हैं। इनसे ही तो काफ़ी बीमारियां पैदा होती हैं, जिनमें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या फिर हैजा और भी कई अन्य स्किन डिजीज़ फैलती हैं। यदि हम केवल अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखें तो इन बीमारियों का हिस्सा बनने से हम बच सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, बीमारी का इलाज करने से पहले है बीमारी होने से रोकना। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। आप सभी जानते ही हैं, इसका उद्देश्य केवल सफाई करना नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना। और इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता रही जनभागीदारी। दोस्तों, सरकार योजनाएं बना सकती है, संसाधन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन स्वच्छता तभी सफल हो सकती है जब आम नागरिक इसमें भाग ले। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर कचरा फेंकता है तो दूसरा व्यक्ति उसे उठाता है तो सफाई अस्थाई होगी, लेकिन यदि वही व्यक्ति कचरा फेंकना बंद कर दे तो स्वच्छता स्थायी बन जाएगी। और यही जनभागीदारी की शक्ति है। किसी कार्य में समाज के सभी लोगों का सक्रिय योगदान ही तो जनभागीदारी है। जब बच्चे, युवाएं, महिलाएं, बुजुर्ग, शिक्षक, व्यापारी, किसान या फिर प्रशासन सभी मिलकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करें तो जनभागीदारी हम कह सकते हैं उसे। हमारे छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं दोस्तों। एक गांव था जो कचरे और गंदगी से भरा हुआ था। गांव में बीमारियां बढ़ती चली गई और एक दिन स्कूल के कुछ बच्चों ने निर्णय लिया कि वे गांव को अच्छा बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। उन्होंने हर संडे को सफाई अभियान शुरू किया। पहले लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उनके साथ जुड़ने लगे और एक महीने के बाद पूरा गाँव अभियान का हिस्सा बन गया। दोस्तों, 6 महीने बाद गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। सड़कें साफ थी, नाल के स्वच्छ लगने लगी, बीमारियां भी कम होती चली गई। और जब जिले के अधिकारी ने गांव का निरीक्षण किया तो उसे आदर्श स्वच्छ ग्राम घोषित किया गया। दोस्तों, यह कहानी हमें संदेश देती है कि एक व्यक्ति शुरुआत कर सकता है, लेकिन जनभागीदारी ही परिवर्तन को सफल बनाती है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है, क्यों ना हम अपने भारत को विश्व में एक स्वच्छ भारत के रूप में देखें। इसलिए स्वच्छता आंदोलन

स्वच्छ स्वच्छ बनाए रखने में सफलता में युवाओं की भूमिका बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले युवा स्वयं को स्वच्छता में अपनी जन भागीदारी में अपनाएं, दूसरों को प्रेरित करें। सोशल मीडिया का यूज़ तो आजकल सभी करते हैं, सभी के हाथों में मोबाइल फ़ोन होता ही है, तो क्यों ना सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता फैलाई जा सके, सफाई अभियानों में भाग लिया जा सके और प्लास्टिक के यूज़ को कम किया जा सके। दोस्तों, स्वच्छता केवल मानव स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है। पृथ्वी हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। दोस्तों, स्वच्छता अपनाइए, बीमारी भगाइए, स्वच्छ वातावरण स्वस्थ नागरिक है। हम क्या कर सकते हैं? कचरा निर्धारित स्थान पर डाल सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने से खुद को और दूसरों को रोक सकते हैं, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कर सकते हैं और सफाई अभियानों में भाग लेकर भी हम स्वच्छता में जन भागीदारी के रूप में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, स्वच्छता केवल सरकार का कार्य नहीं, हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। लीजिए, बातों का सिलसिला तो आगे भी चलता रहेगा। आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की पहचान केवल उसकी आर्थिक प्रगति, तकनीकी उपलब्धियों या फिर भौतिक संसाधनों से नहीं होती, बल्कि उसके सामाजिक मूल्यों से भी होती है। सामाजिक मूल्य वह आधारशिला है जिन पर एक स्वस्थ, सशक्त और संस्कारित समाज का निर्माण होता है। आज साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। विज्ञान और तकनीक ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दूरियों को समाप्त कर दिया है, लेकिन इस तेज गति से बदलती दुनिया में एक प्रश्न हम सभी के सामने आ खड़ा हो जाता है, क्या हम अपने सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रख पा रहे हैं? दोस्तों, यह प्रश्न केवल युवाओं का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। यदि हम अपनी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को खो देंगे तो हमारी पहचान धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। दोस्तों, वे आदर्श और सिद्धांत जो हमें सही और गलत का अंतर समझाते हैं, वही होते हैं सामाजिक मूल्य। ये सिखाते हैं कि समाज में कैसे रहना है, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है और अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना है। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, सम्मान करना, करुणा, सहयोग, दया, प्रेम, सेवा भावना, ये सभी सामाजिक मूल्य के उदाहरण हैं। दोस्तों, इन मूल्यों के कारण ही तो समाज में शांति और सद्भावना के साथ एकता बनी रहती है। तभी तो हमारा भारत एकता की मिसाल कायम करता है पूरे विश्व भर में, और इस मिसाल को हमें हमेशा कायम रखना ज़रूरी है। धन से घर बनता है, लेकिन मूल्यों से परिवार बनता है। दोस्तों, भारत विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हमारी संस्कृति ने सदैव मानवता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया है। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। यह विचार केवल एक वाक्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की

आत्मा है। हमारे समाज में माता पिता का सम्मान, गुरुओं का आदर, अतिथियों का सत्कार, प्रकृति के प्रति श्रद्धा को विशेष महत्व दिया गया है। यदि समाज से मूल्य समाप्त हो जाए तो जीवन केवल स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा तक सीमित रह जाएगा। सामाजिक मूल्य व्यक्ति के पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, समाज में अनुशासन स्थापित करते हैं, परिवारों को एकजुट रखते हैं, मानवता की रक्षा करना सिखाते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। वर्तमान के समय में सामाजिक मूल्यों के सामने हमारे सामने अनेक चुनौतियां भी हैं। बढ़ता हुआ स्वार्थ, यानी आज के लोग केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं, सामूहिक हित की भावना कम होती जा रही है। संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया है, परिणाम स्वरूप बच्चों को बुजुर्गों का अनुभव और संस्कार कम मिल पा रहा है।

सामने अनेक चुनौतियां भी है। बढ़ता हुआ स्वार्थ, यानी आज के लोग केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं, सामूहिक हित की भावना कम होती जा रही है। संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया है, परिणाम स्वरूप बच्चों को बुजुर्गों का अनुभव और संस्कार कम मिल पा रहा है। सोशल मीडिया ज्ञान का स्रोत भी है और भ्रम का स्रोत भी। यदि इसका यूज सही दिशा में न हो तो यह सामाजिक संबंधों को कमजोर भी करता है। आज सफलता को केवल धन और सुविधाओं से मापा जाने लगा है, लेकिन याद रखिए, धन जीवन को सुविधाजनक बना सकता है, लेकिन मूल्य जीवन को सार्थक बनाते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे। पूरे गांव में उनका सम्मान होता था। एक दिन एक युवक ने पूछा, गुरुजी, समाज में सम्मान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो गुरुजी मुस्कुराए और उसे एक दीपक दिया। उन्होंने कहा, इसे लेकर पूरे गांव में घूमो। युवक दीपक लेकर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह वापस आया और बोला, गुरुजी, लोग इस दीपक को देखकर मेरी ओर ध्यान दे रहे थे। गुरुजी बोले, जिस प्रकार अंधकार में दीपक प्रकाश देता है, उसी प्रकार सामाजिक मूल्य व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित करते हैं। सम्मान पद या धन से नहीं, बल्कि चरित्र और मूल्यों से मिलता है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि सामाजिक मूल्य जीवन का वास्तविक प्रकाश है। लीजिए, इसी विषय को हम आगे भी जारी रखेंगे। आइए, उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत।

you feel it? Yes! Then let's go for it.

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे सामाजिक मूल्यों का संरक्षण, इस विषय पर। लीजिए, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात करते हैं और जानते हैं इस विषय के बारे में कुछ और जानकारियों को। श्रोताओं, आज का युवा कल का नागरिक, नेता, वैज्ञानिक, शिक्षक और नीति निर्माता है। यदि युवाओं में अच्छे मूल्य होंगे तो राष्ट्र का भविष्य भी उज्ज्वल होगा। युवा सत्य बोले, ईमानदारी अपनाएं, बुजुर्गों का सम्मान करें, समाज सेवा में भागीदारी अवश्य बनाएं। साथ ही साथ नशा मुक्त जीवन अपनाएं, डिजिटल माध्यमों का सकारात्मक यूज करें। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, युवाओं के सपने ही राष्ट्र के सपनों का आकार देते हैं, लेकिन उन सपनों की नींव सामाजिक मूल्यों पर ही टिकती है। परिवार भी दोस्तों सामाजिक मूल्यों की पहली पाठशाला है। बच्चा बोलना, चलना, व्यवहार करना परिवार से ही तो सीखता है। यदि आप समाज बदलना चाहते हैं तो परिवार से शुरुआत कीजिए। और दोस्तों, शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक बनाना भी है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समरस बनाती है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। दोस्तों, जब हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, रक्तदान करते हैं, नेत्रदान करते हैं या फिर पर्यावरण संरक्षण

शिक्षण में भाग लेते हैं, या हम में से किसी बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो हम सामाजिक मूल्यों को व्यवहार में उतारते हैं। एक छोटी सी सहायता आपके द्वारा की गई किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। किसी के दुआओं में आपको शामिल किया जा सकता है। यही मानवता का वास्तविक स्वरूप है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियाँ और परंपराएं हैं। फिर भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी एकता है। हमारे द्वारा की गई एक छोटी सी सहायता पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स दे जाती है हमें। दोस्तों, आज आवश्यकता है कि हम आधुनिकता को अपनाएं, लेकिन अपनी जड़ों को न भूलें। टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखें। प्रगति करें, लेकिन मूल्यों का साथ ना छोड़ें। मूल्य वह दीपक है जो जीवन के अंधकार में भी सही मार्ग दिखाते हैं। समाज केवल इमारतों, सड़कों और संस्थाओं से नहीं बनता दोस्तों। समाज का निर्माण मनुष्यों के आपसी संबंधों, विश्वास, सहयोग और नैतिक मूल्यों से होता है। जब ये मूल्य मजबूत होते हैं, तो समाज अपने आप ही प्रगति करता है। भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को अनुभव और ज्ञान का खजाना माना गया है। उनके जीवन के अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। जिस पेड़ की छाया में हम बड़े हुए, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं, बल्कि वे परिवार की जड़ होते हैं। उनका सम्मान करना, उनकी बातों को सुनना, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना ही सामाजिक मूल्यों का महत्व का हिस्सा है। और दोस्तों, किसी भी समाज की प्रगति का स्तर इस बात से मापा जा सकता है कि वहां महिलाओं को कितना सम्मान प्राप्त है। भारतीय परंपरा कहती है, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति या फिर रक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रही है। लेकिन केवल अधिकार देना पर्याप्त नहीं है दोस्तों। समाज में सम्मान, उनको सुरक्षा देना और समान अवसर भी सुनिश्चित होने चाहिए। युवाओं का कर्तव्य है कि वे महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाएं, लैंगिक समानता को बढ़ावा दें। युवा ही तो देश का भविष्य है। गलत रास्ता आपको जल्दी पहुंचा सकता है, लेकिन सही रास्ता आपको सम्मान दिलाता है। ईमानदारी से प्राप्त सफलता भले ही देर से मिले, लेकिन दोस्तों वह स्थायी होती है, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तकनीक का विकास तभी सार्थक है जब मानव मूल्यों को मजबूत बनाए। यदि किसी देश को हम प्रगतिशीलता की ओर ले जा सकते हैं, तो इसमें जरूरी है राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी। यदि आप जीवन में सामाजिक मूल्यों को अपनाते हैं, तो समाज और राष्ट्र दोनों को मजबूती मिलती है। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, जाति धर्म के भेद मिटाकर सबको अपनापन कहें। प्रकृति का संरक्षण करके भविष्य सुरक्षित बनाएं। हम मूल्यों की इस अमूल्य धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाएं। हम लीजिए, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं युवाणी कार्यक्रम कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित मेगावोट 918 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं युवाणी कार्यक्रम में अलग अलग विषयों की। उसमें से एक विषय है सड़क सुरक्षा, समाज की साझा जिम्मेदारी। लीजिए, इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं इस विषय के बारे में कुछ बातों को। दोस्तों, सड़कें केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि वे विकास, प्रगति और सामाजिक जीवन की धड़कन हैं। प्रतिदिन लाखों लोग सड़कों पर यात्रा करते हैं। कोई स्कूल जाता है, कोई कार्यालय जाता है, कोई बाजार, तो कोई अपने परिवार से मिलने। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी हमारे द्वारा की गई लापरवाही कई बार जीवन भर का दुख बन जाती है। इसलिए कहा गया है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दोस्तों, यह है केवल एक नारा नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाला संदेश है। आज वाहन हमारी जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती चली जा रही है। दुर्घटना केवल एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। एक सड़क दुर्घटना किसी बच्चे से उसके पिता छीन सकती है, किसी माता पिता से उनके बेटे छीन सकती है, किसी बहन से उसका भाई और किसी परिवार से उसकी खुशियाँ। इसीलिए सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि मानव जीवन के प्रति सम्मान है। सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है सड़क सुरक्षा। और सड़क सुरक्षा तभी संभव है जब सभी अपनी जिम्मेदारी समझें। दोस्तों, एक परिवार खुशी खुशी समारोह यानी शादी समारोह से लौट रहा था। रास्ते में चालक ने सोचा, थोड़ा तेज गति से चलूंगा तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। कुछ मिनट बाद वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक क्षण की जल्दबाजी ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। दोस्तों, सड़क दुर्घटनाएं अचानक नहीं होती, अधिकतर दुर्घटनाएं मानवीय

लापरवाही का परिणाम भी हो सकती है। तेज रफ्तार कुछ पल का रोमांच देती है, लेकिन एक दुर्घटना पूरी जिंदगी का दुख दे देती है। सड़क सुरक्षा केवल सरकार की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम प्रशासन के डर से हेलमेट लगाते हैं, अपने पास लाइसेंस रखते हैं, वाहनों को पुलिस को देखकर कभी-कभी धीरे स्पीड में चलाया जाता है। लेकिन वास्तव में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम अपना कर्तव्य क्यों ना भूलें। चालक की जिम्मेदारी है यातायात नियमों का पालन करे, गति सीमा का सम्मान करे, सीट बेल्ट का यूज़ करे, हेलमेट अवश्य पहने, और मोबाइल फ़ोन का यूज़ तो बिल्कुल ना करे। मोबाइल तो आप फ्री टाइम में भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं फ़ोन को ड्राइव करते समय ही चलाया जाए। कोई अर्जेंट वर्क हो, कॉल हो, तो गाड़ी को साइड में रोककर फोन का यूज किया जा सकता है। पैदल यात्रियों की जिम्मेदारी है जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करें, सड़क पार करते समय दोनों ओर देखें और ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करें। युवाओं यदि सड़क जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो हजारों दुर्घटनाएं रोकी जा सकी है। युवाओं को चाहिए स्टंटबाजी से बचें, हेलमेट पहनने की आदत बनाएं, सोशल मीडिया के लिए जोखिम भरे वीडियो न बनाएं और अपने मित्रों को भी जागरूक करें। लीजिए दोस्तों, कार्यक्रम में अगला गीत सुनाते हैं और बातें हम इसके बाद और भी करेंगे।

लीजिए दोस्तों, चलते हैं अब आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की ओर और आपको सुनाते हैं आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को। आज ही के दिन यानी 23 जुलाई के दिन ही 1829 में अमेरिकी आविष्कारक विलियम ऑस्टिन बर्ट ने टाइपोग्राफ का पेटेंट कराया, जिसे आधुनिक टाइपराइटर का प्रारंभिक रूप माना जाता है। 23 जुलाई के दिन ही 1995 में प्रसिद्ध हेली बॉब कॉमेट यानी हेली बॉब धूमकेतु की खोज की गई। 1962 में टेलस्टार उपग्रह के माध्यम से विश्व का पहला लाइव ट्रांस एटलांटिक टेलीविजन प्रसारण आज ही के दिन शुरू हुआ। दोस्तों आज ही यानी 23 जुलाई के दिन को भारत में

अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है और यह दिन भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की स्मृति में मनाया जाता है। 23 जुलाई 1856 में महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। आज ही के दिन को 1906 में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश की भाभरा, जिसे अब आज़ाद नगर कहा जाता है, हुआ था। दोस्तों, महान व्यक्तियों का जीवन हमें सिखाता है कि साहस, त्याग और संकल्प से इतिहास रचा जा सकता है। स्वराज और स्वतंत्रता का सपना देखने वालों ने ही भारत का भविष्य बनाया। लीजिए, ये तो थी आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का एक आखिरी फिल्मी गीत।

लीजिए दोस्तों, आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की पूजा वर्मा को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

अभी आप कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

आइए सुनते हैं हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सिराय की। हिंदी में प्रादेशिक समाचार रहेंगे 6:30 पर, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। जिले की चिट्ठी का समय

शाम 7 बजे कार्यक्रम आप सुन पाएंगे चौपाल। कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी रहेगी खान पान का रखें विशेष ध्यान, सड़क पर चलते समय ध्यान रखने योग्य बातें, सिंचाई की आधुनिक विधियां, बाजार भाव व मौसम की जानकारी। इसके अलावा हम आपको आज सुनवाएंगे एक नाटक टोडियो। लेखक हैं बी आर चावरिया और प्रस्तुत करता रहेंगे राजेश चड्ढा।

शाम 7:45 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत, रात्रि 8 बजे कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन हमारे दिल्ली केंद्र से, समाचार संध्या का समय रहेगा रात्रि 8:45 पर, 9:15 पर आप सुन पाएंगे सुगम संगीत, रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम रहेगा कंट्री वाइड इनसाइट हमारे दिल्ली केंद्र से।

अभी आप हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम बैंड 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर।

हे गीत जो तुसा सुनिया है ना, मेको आप बहु पसंद है। मेरा ख्याल है तुहा को भी पसंद आया हो सी। सुना लियो, प्यार ता निभावन दी गल ले, सारा नाल ता निभदी नहीं। प्रोग्राम दा आखरी गीत कुछ एहो जिया ही है। लाहे गवा साड़ी नहीं निभदी, तेरे सिवा साड़ी नहीं निभदी।

0: ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਯਾ ਗੀਤ ਸੁਣਵੇਂਦੇ। ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ।
1: अभी आप कार्यक्रम सिराय की सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की। जयपुर में आयोजित राजस्थान एनर्जी समिट में देश विदेश के विशेषज्ञ जुटे, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश पर मंथन हुआ। देश में बन रहे नेशनल एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में करीब 1200 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के साथ राजस्थान सबसे अधिक लाभान्वित। और मुड़िया पूर्णिमा मेला आज से शुरू हुआ, गोवर्धन परिक्रमा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी।

0: समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने अधिकारियों को इस बारे में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लगातार बाधित हुई। लोकसभा नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर दोनों सदनों में चर्चा के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
1: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के, और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दोहराया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और इस बारे में विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है।
2: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बीच पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों में छात्र प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए 4 बार प्रस्ताव दिया गया। श्री सिंह ने कहा कि बिना संवाद के कोई समाधान नहीं निकलेगा। जयपुर में आज देश विदेश के विशेषज्ञों ने प्रदेश में ऊर्जा ट्रांसमिशन की आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने पर मंथन किया। भारतीय उद्योग परिसंघ CII की ओर से आयोजित राजस्थान एनर्जी समिट में नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और हरित विकास सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हरित ऊर्जा उत्पादन को लेकर प्रदेश में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की काफी संभावनाएं हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 5 लाख घरों को UAL मॉडल पर सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है।
3: राजस्थान का जो फ्यूचर एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म है, इसके तहत लगभग 3,300 पावर परचेस एग्रीमेंट्स आगामी वर्ष में लागू किए जाएंगे। दूसरा है जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 5 लाख हाउस होल्ड को यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के तहत लिया जाएगा, और साथ ही साथ जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कॉरिडोर के तहत कई नए ट्रांसफार्मर 765 KV के एस्टेब्लिश होंगे। तो राजस्थान का जो परफॉर्मेंस है पीएम कुसुम के तहत भारत में सर्वोपरि है, और इस मोमेंटम को हम इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: CII राजस्थान के चेयरमैन रजनीश भंडारी ने कहा कि आने वाला समय ऊर्जा क्षेत्र का है। ऊर्जा से अधिक उत्पादन से ही देश ताकतवर बनेगा, साथ ही दक्षता के साथ ऊर्जा के उपयोग पर जोर देना होगा। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाई गई समिति की बैठक आज VC के जरिए हुई। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने ये बैठक ली। इसमें राजस्थान सहित दिल्ली, हरियाणा और अन्य स्थानों के मुख्य सचिव जुड़े। डॉ सोमनाथन ने राज्यों को वायु प्रदूषण से संबंधित काम तय समय सीमा में पूरे करने के निर्देश

0: निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, औद्योगिक प्रदूषण और वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने, पराली और बायोमास जलाने पर रोक लगाने सहित अन्य उपाय प्राथमिकता से लागू करने पर जोर दिया। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि राजस्थान सरकार NCR क्षेत्र में 5,000 पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित करने के लिए काम कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। देश में बन रहे नेशनल एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में करीब 1200 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के साथ राजस्थान सबसे आगे है। यहां समूचे रोड नेटवर्क का करीब 25% हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राजस्थान एक्सप्रेसवे के निर्माण से सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है। समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की एक रिपोर्ट।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश में कुल 10,389 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। इनमें से 5,580 किलोमीटर पर काम चल रहा है, वहीं 4,800 किलोमीटर से अधिक का काम पूरा हो चुका है। देश भर में वर्तमान में बने 1/4 नेशनल एक्सप्रेसवे राजस्थान से होकर गुजरते हैं। प्रमुख परियोजनाओं में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और 9 नव घोषित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रा का समय घटेगा, माल परिवहन तेज होगा और उद्योगों, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही राजस्थान का संपर्क देश के प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर से और मजबूत होगा, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
0: पाली के रोहट में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। रोहट थानाधिकारी ने बताया कि बांडाई मोड़ पर हुई इस दुर्घटना में पाली से जोधपुर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस से पीछे आ रही तेज रफ्तार कार टकरा गई। इसमें सवार युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के मौके पर आज प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह के मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स का जिक्र करते हुए श्री द्विवेदी ने बताया इस प्लेटफॉर्म के 1,10,00,000 से अधिक यूजर हैं और लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं।
2: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, तत्कालीन बम्बई, आज जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के लिए।
0: संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर आज जयपुर में भाजपा की ओर से प्रदेश स्तरीय कार्यशाला हुई। इसमें संत रविदास के समानता और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस उपलक्ष्य में पार्टी की ओर से प्रदेश भर में सामाजिक समरसता संकल्प अभियान के तहत हरि कीर्तन, सत्संग और विचार गोष्ठियां रखी जाएंगी। कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा उपस्थित रहे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। डीग के पूछरी का लौठा धाम में आज से मुड़िया पूर्णिमा मेले की शुरुआत हुई। 30 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्य मेला गुरु पूर्णिमा पर 29 जुलाई को भरेगा। हमारी संवाददाता ने बताया कि मेले में भीड़ नियंत्रण के लिए इस बार परिक्रमा मार्ग पर ई रिक्शा सहित छोटे बड़े वाहनों पर रोक लगाई गई है।
3: आज से डी के पोचरी का लोठा धाम में प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला की शुरुआत हो गई है। सप्त दिवसीय इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा के लिए आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण के लिए परिक्रमा मार्ग पर ई रिक्शा और सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों पर रोक लगाई

0: गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों और भारी पुलिस बल द्वारा सुरक्षा की कड़ी निगरानी की जा रही है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, टी।
1: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज जयंती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि श्री तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना प्रज्वलित की, साथ ही भावी पीढ़ियों को जनसेवा के लिए प्रेरित किया। आज ही अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भी जयंती है। प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आजाद का अदम्य साहस और अटूट देशभक्ति भारत का गौरव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बाल गंगाधर तिलक को नमन करते हुए कहा कि स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत श्री तिलक के विचार सदैव देशहित की प्रेरणा देते रहेंगे। वहीं मां भारती के सपूत चंद्रशेखर आजाद के ओजस्वी विचार और बलिदानी जीवन हमेशा राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की। जयपुर में आयोजित राजस्थान एनर्जी समिट में देश विदेश के विशेषज्ञ जुटे, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश पर मंथन हुआ। देश में बन रहे नेशनल एक्सप्रेसवे और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे में करीब 1200 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के साथ राजस्थान सबसे अधिक लाभान्वित। और मुड़िया पूर्णिमा मेला आज से शुरू हुआ, गोवर्धन परिक्रमा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके पिछले दिनों उदयपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने जनजातीय कल्याण योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमंच सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक पात्र परिवार तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने बनफूल स्टूडियो का अवलोकन कर जनजातीय कलाकारों से संवाद किया और राष्ट्रीय लैक्रोस टीम में चयनित प्रदेश के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी उदयपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने चित्रकूट नगर स्थित राजकीय किशोर गृह में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। श्री गहलोत ने पेंशन प्रकरण, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने विभागीय आवासीय छात्रावासों के जर्जर भवनों की मरम्मत कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बालोतरा से आयोजित ग्रीन फील्ड रिफाइनरी लोकार्पण और रोजगार उत्सव का सीधा प्रसारण उदयपुर जिले में भी बड़े उत्साह से देखा गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिले के 1500 से अधिक नव चयनित कार्मिकों का स्वागत किया गया और 5 कार्मिकों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उदयपुर में जिला स्तरीय मुख्य आयोजन गांधी ग्राउंड में हुआ। योग दिवस के पूर्वाभ्यास और मुख्य कार्यक्रम में बुजुर्ग प्रतिभागियों की अग्रणी भूमिका रही और मंच पर योगाभ्यास कराने के लिए लगभग 60% स्थान वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया। आयुर्वेद विभाग से नोडल अधिकारी डॉ भानु कुमार जैन ने बताया कि योग दिवस के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गांधी ग्राउंड के अलावा फतेह सागर की पाल और सहेलियों की बाड़ी में भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पिछले दिनों उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने निर्माणाधीन देवास चरण तृतीय और चतुर्थ पेयजल परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन सुरंग और बांध कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। लगभग 1690 करोड़ रूपये की लागत वाली इस परियोजना से हर साल 1000 MCFT पीने का पानी उपलब्ध होगा। राज्यपाल ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये परियोजना उदयपुर की दीर्घकालीन जल सुरक्षा, झीलों के संरक्षण

0: और पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ सेई बांध की टनल की चौड़ाई बढ़ाने के निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शिविरों को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इन शिविरों में एक ही छत के नीचे 22 विभागों की सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। पिछले दिनों खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव और उदयपुर के प्रभारी सचिव टी रविकांत ने उदयपुर विकास करण और नगर निगम में आयोजित शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम जन को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों, पट्टा आवेदनों और अन्य जन समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण किया जाए, ताकि लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। RSCERT द्वारा जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का एक दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम डाइट में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में उदयपुर और सलूम्बर जिले के सभी 20 ब्लॉक के 40 शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक उंजुड़िया मामला री बेगी सुनवाई और दोषियां ना कड़ी सजा देवन सारू फास्ट ट्रैक कोर्ट बनावन रो ऐलान कीनो। जयपुर में राखी जी राजस्थान एनर्जी समिट में देश प्रदेश रा जानकार भेड़ा भया, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश रे बारा में चर्चा करी जी। देश में बन रहा नेशनल एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मायू करीब 1200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क सगे राजस्थान ने सब उम्बत्तो फायदो मिलियो। और मुड़िया पूर्णिमा मेलो आज शुरू भियो, गोवर्धन परिक्रमा सारू आखा देश में जात्रु पुगण लग्या। समाचार सगे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा वाला पेपर लीक करण रा काम में शामिल लोगों ने तुरंत कड़ी सजा दिरावण सारू फास्ट ट्रैक अदालता खोलन रो ऐलान कीनो है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी विद्यार्थियों रा भविष्य री हिफाजत माथे सरकार रो खास ध्यान वेवन रो जिक्र करता थका कहो के देश रा नौजवाना रो भलो और भविष्य सबू खास है। वह अहलकारा ने इं बारा माए सगला जरूरी जतन करण रा हुक्म दीना। प्रधानमंत्री कहो कि नौजवाना रा भविष्य ने नुकसान पुगावन रे कोशिश करन वाला ने नी छोड़िया जावेला। संसद रा दोन्यू सदना री कार्रवाई माए विपखरा हंगामा रे कारण आज ही अड़चन आई। लोकसभा नीट पेपर लीक मामला समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथा विरोध रे कारण आखा दिन सारू टाळती रीची, जदकर राज्यसभा री कार्रवाई विपखरा सदस्यों का नियम करी ज्या शोर शराबा रे कारण टाळती रीची। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विपक्षी पार्टियां नीट पेपर लीक मुद्दा माथा चर्चा करण माए मदद री अरज कीनी है। वह कहो कि सरकार ई मुद्दा माथे दुनिया सदना माए चर्चा री मर्जी जता चुकी है।
2: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के, और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाई कहो कि सरकार चर्चा सारू तैयार है और इन बारा माए विपक्षा सदस्यों ने भरोसा दिलाईचियो है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा।

0: तैयार है।
1: इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेपर लीक मामला में प्रदर्शन कर रहा विद्यार्थियों बातचीत सागे आगे आवण बाबत कहो है। वे कहो कि लारला 24 घंटा में विद्यार्थियों ने नुमाइंदा ने बातचीत सारू चार दफा प्रस्ताव दिया चिया। श्री सिंह कहो कि बिना बातचीत कोई हल नहीं निकल सके है। जयपुर में आज देश प्रदेश रा जानकार बिजली जुड़िए एक दूजी ठोड़ भेजन री नवी तकनीक ने बढ़ावो देवन रे बारा माए विचार किन्नो। भारतीय उद्योग परिसंघ CII रिओरू राखी जी राजस्थान एनर्जी समिट माए नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा निवेश और हरित विकास समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जी। ये मौके मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश माए हरित ऊर्जा पैदा करण जुड़ी कोशिशां री जानकारी दीनी। वह कहो कि राज्य में ऊर्जा हल्का में सुधार री घनी संभावना है। पीएम सूर्य घर योजना रा तहत 5 लाख घरों ने UAL मॉडल माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावन रा काम जोड़िया चावेला। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का मुख्य सचिव कहो कि प्रदेश में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कॉरिडोर बनायो जा रियो है।
2: राजस्थान का जो फ्यूचर एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म है इसके तहत लगभग 3,300 पावर परचेस एग्रीमेंट्स आगामी वर्ष में लागू किए जाएंगे। दूसरा है जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 5 लाख हाउस होल्ड्स को यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के तहत लिया जाएगा और साथ ही साथ जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कॉरिडोर के तहत कई नए ट्रांसफॉर्मर 765 KV के एस्टेब्लिश होंगे। तो राजस्थान का जो परफॉर्मेंस है पीएम कुसुम के तहत भारत में सर्वोपरि है और इस मोमेंटम को हम इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: इमोका CII राजस्थान रा चेयरमैन रजनीश भंडारी कहो के आवता भगत माए बत्ती बिजली बनावन हुई देश मजबूत बनेला। वह दक्षता सागे बिजली काम लेवन मा थई जोर दीनो। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में वायु प्रदूषण री रोकथाम सारू बनाई जी समिति री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए मीटिंग लीनी। इन माए राजस्थान समेत दिल्ली हरियाणा और दूजा राज्यों रा मुख्य सचिव जुड़िया। डॉक्टर सोमनाथन राज्यों ने वायु प्रदूषण माथे काबू करण जुड़िया काम ते म्याद माए पूरा करण रा हुकम दीना। ईसा गई वह बिजली चलन वाली गाड़ियां ने बढ़ावो देवन कारखाना कानियों करी जिया प्रदूषण और हवा री गुणवत्ता री लगातार निगरानी करण और पराली और बायोमास बाड़बा माथे रोक लगावन समेत दूजा जतन करण माथे खास ध्यान देवन बाबत जोर दीनो। मीटिंग में प्रदेश का मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बतायो कि राज्य सरकार NCR हल्का माए जूना और हवा ने गंदी करण वाला 5,000 गाड़ियां ने न्यारा न्यारा दौर माए हटावन सारू काम कर रही है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे रो 1,192 किलोमीटर हिस्सों राजस्थान माए बनाई चियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए राजस्थान ने एक्सप्रेस वे बनावन रो सब बत्तो फायदो मिलियो है। पेश है समाचार कक्षों डॉक्टर सालेहा गाजी री रपट।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रे मुजब देश में कुल 10,389 किलोमीटर रा हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे ने मंजूरी दी जी है। आमाए 5,580 किलोमीटर माथे काम चाल रियो है जबकि 4,800 किलोमीटर बत्तो काम पूरो वे गयो है। देश रा मौजूदा दौर माए बनिया 1/4 नेशनल एक्सप्रेस वे राजस्थान वेर निकल रहा है। खास परियोजनावा माए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे और नौ नुवा ऐलान करीजा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे शामिल है। आखास सड़क परियोजनावा रे पूरे वे जावणु सफर रो बगत घटेला माल परिवहन तेज वेला और उद्योगा सैर सपाटा और खेती बाड़ी हल्का ने ई नुवी रफ्तार मिलेला। इस आगे ही राजस्थान रो जुड़ाव देश रा खास माली गलियारा मजबूत वेला जिणु निवेश और रोजगार रा नुवा मौका ही मिलेला।
1: पाली जिला रा रोहट माए आज तेज रफ्तार जा रही कार रे रोडवेज री बस पिछाड़ी टकरा जावन रे कारण 3 जना री मौत वेगी और 1 जनो जख्मी फेंक्यो। रोहट रा थाना अधिकारी बतायो के हादसो बांडाई मोड़ के नफियो। रोडवेज री बस पाली जोधपुर जा रही ही। प्रसार भारती रा

0: मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी कहो है कि लारला 99 साल में प्रसारण रो विकास रेडियो टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग ताई वेक्यो है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस रे मौके आज आकाशवाणी समाचार सागे खास बातचीत रे दौरान श्री द्विवेदी कहो के प्रसार भारती देश परदेश माए लोगा सारू हर भांत रो मनोरंजन करण वाली जानकारियां देवन वाली और भणाई लिखाई जुड़ी सामग्री पेश करतो रह वेला। प्रसार भारती रा ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स रो जिक्र करता थका श्री द्विवेदी कहो के ई प्लेटफॉर्म ने काम लेवन वाला री तादाद 1,10,00,000 ने पार कर गई है जो लगातार तेजी बढ़ रही है।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, तत्कालीन बम्बई, आज जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के लिए।
0: डीग जिला रा पूंछरी का लौठा माए आज मुड़िया पूर्णिमा मेलो शुरू भयो। 30 जुलाई तक चलन वाला ई मेला माए आखा देश जात्रु गोवर्धन जीरी परिक्रमा सारू पूग रिया है। खास मेलो गुरु पूर्णिमा रे मौके 29 जुलाई न भरेला। मेला माए आवन वाला जात्रुआ री मोटी तादाद न ध्यान राखता थका रेलवे और रोडवेज री ओर खास रेलगाड़ियां और बसा चलाई जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज से डीग के पूंछरी का लोठा धाम में प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला की शुरुआत हो गई है। सप्त दिवसीय इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा के लिए आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण के लिए परिक्रमा मार्ग पर ई रिक्शा और सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों और भारी पुलिस बल द्वारा सुरक्षा की कड़ी निगरानी की जा रही है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डीग।
0: देश री आजादी री लड़ाई में खास काम करण वाला लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आज मारी जयंती रे मौके श्रद्धा भाव सागर याद करया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन श्रद्धा भाव सागर याद करता था का कहो कि तिलक राष्ट्रवाद री भावना जगाई और आवती पीढ़ियां ने जन सेवा री सीख दीनी। आज ही अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद नई वारी जयंती रे मौके याद करया जा रहा है। प्रधानमंत्री वाना श्रद्धा भाव सागर याद करता था का सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए मांडियो के आजाद री जबरदस्त हिम्मत और अटूट देशभक्ति भारत रो गौरव है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई बाल गंगाधर तिलक ने नमन करता था का कहो कि स्वराज स्वदेशी और राष्ट्रीय चेतना रा दूत बाल गंगाधर तिलक रा विचार हमेशा देश रा भलारी सीख देता रह वेला, जदके माँ भारती रा सपूत चंद्रशेखर आजाद रा ओजस्वी विचार और बलिदानी जिंदगी हमेशा देश री सेवा री सीख देता रह वेला। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक जुड़िया मामला री बेगी सुनवाई और दोषियां ने कड़ी सजा देवन सारू फास्ट ट्रैक कोर्ट बनावन रो ऐलान कीनो। जयपुर माए राखी जी राजस्थान एनर्जी समिट माए देश परदेश रा जानकार भेड़ा भया। देश माए बन रहा नेशनल एक्सप्रेस वे और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे माए करीब 1200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क सागर राजस्थान ने सब बत्तो फायदो मिलियो और मुड़िया पूर्णिमा मेलो आज शुरू थियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम चौपाल। प्रस्तोता है सुनील वर्मा।

अभी खूब उगड़ी है, आस पास अभी खूब है, और आपने सूरतगढ़ और आस पास के क्षेत्र में खूब बिरखा हुई है। और किसान भाई जी का है, अब बीजा भाई और काम जी को रेड़ो हो, वो अब बिरखा हो जी सी। पर आज मन नहीं लागे है, अभी खाण पीन वाली सुगन भी खूब आन लाग रही है। मन लागे पकौड़ा गुलगुला खूब आज चाल है। पर किसान भाइयों, खानो पीणो अच्छी बात है, पर खाने पीने में सावधानियां आपने जरूर रखनी चाहिए। देखो बिरखा के मौसम में क्यों है, बीमारियां फैलने को डर जिको है ज़्यादा रहे, खास करके जिकी एक हूँ दूसरा तीन फैलने वाली बीमारियां बनी, जिकन आप कह दें भी बैक्टीरिया फैल गई या वायरस हो गयो, तो बंगो आपने जरूर अपन ध्यान रखना चाहिए। और अपन देखा कि आ दिना में पेट खराब होनो और या फिर या पेट वाली कोई और दूसरी बीमारियां हैं वह भी होने को डर जिको है ज़्यादा रहे, तो खान पान को जिको है विशेष रूप से किसान भाइयों आपने ध्यान रखना है। इन करके आप खास करके आप बाहर आप जावा, जद बाहर को जिको खानो है ज़्यादा तलेड़ो जिको खानो है या तेल वालों खानो है, तो बीच में आप बचाव करना है। हाँ, घरे जरूर आप खानो जिको है अच्छी तरह बना के और वो जरूर आप खावा, पर वो भी एक अपने ने जीती के जरूरत हो बीतो के। बीहू अलावा आपने किया पानी जिको है साफ सुथरो पानी होना चाहिए, और पानी के किसान भाइयों उबाल के आप पिया नहीं तो बिंग वर्गी तो कोई होड़ी को नहीं पानी की। देखो उबाल के और अच्छी तरह मैंने छान के ठंडो करके और वो पानी पिया, तो बीच में देखो एक तो रोगों बचाव तो हो ही हुआ है और सागे अपना वो पेट खातर भी बढ़िया रहे, और बिंग में सारा जिका भी कोई वायरस है बैक्टीरिया है वे बिल्कुल एकदम खत्म हो जाए, एकदम साफ सुथरो पानी हो जाए। और सागे सागे आप देखा कि कई सब्जियां में आ दिना में कीड़ा लागण को भी डर आपने ज़्यादा रहे, तो सब्जी जी की है बिना सावधानी से सावचेती से आप काम में लेवा कि कीड़ा मकोड़ा को अच्छी तरह ध्यान रखा, व्यू बाद में ही बना अच्छी तरह धोगे और व्यू बाद में ही अपन बने काम में लेने चाहिए। और सागे सागे आप पानी जो को पिया, अभी आप बात करी तो पानी से भी देखो जिया कोई हेजो है टाइफाइड है तो इनको भी अपन ध्यान रखना चाहिए। कोई भी इतरंग आपने लागे इतरंग का कोई भी संकेत मिले तो डाक दर्जन जरूर दिखावा। और जब आप जी अभी आप बात करी कि उबाल के जब आप पानी पिया तो आपने वो रोग जो है बीच में आप बंजारो रेसी अपनों। और इन सागे सागे भोजन जो है बिल्कुल हल्को फुल्को भोजन अपन करना है जिको कि आसानी से अपने पचन में भी में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से पच जाए, और बस ही जिको खाना है बीच में भी किसान भाइयों आप बचाव रखें, क्योंकि देखो आन दिन में आप देखा कि हवा का मान नमी हो तो बस ही खानो जिको है वो खराब करे, और जल्दी भी खानो अपने जिको भी आप भोजन आप घरे बनावा तो वो खराब भी जल्दी हो जाए, तो इनको भी आप विशेष रूप से अपने ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाई देखो बिरखा भी है तो अपन देखा कि खेत में अपने फसलों खातर तो बहुत फायदा है, पर इन सागे सागे अपन अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है, और भी खातर आप अपनों खाने पीने को जिको ध्यान जरूर रखा जिसमें क्या क्या अपना कोई हरी बीमारी है रोग छू आप बंचा रहे। वहाँ किसान भी कर सा बात चीता और, पर पहले सुनो एक भजन लियो सुनो सा।

चौपाल कार्यक्रम सुनिए सगला किसान परिवारों ने सज्जन भाई की घनी घनी और मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, आपां सदा खेती पाती की बातें तो करे कर रहे हैं और आज तो बिर

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: किसान भाइयों सुनो भी आप भजन, किसान भाइयों अब आप सुन सा नाटक टोडियो, जो को लिखड़ो है बीरू राम जी चावरिया को, आओ सुना।

0: ले भगवान, आज तो मुंडेर पर कागलो बोले लागे कुड़ी बटाऊ आसी।
1: बटाऊ तो बगाला के घर आवे सेनो।
2: बटाऊ आवे चाहे चटाऊ, आपा तो भैया खेत की तैयारी करांगा।
0: बेटा तू खेत को काम संभाल, हूँ आज नहीं एक गमत्रो काटियो, भाई कई दिन हो गया सलाह बनाव तने।
1: कागलो ही बोलन लाग रही है, सगे मेरी तो डाई आंख ही फड़के।
2: इयाई बाई बादियों फड़कती होनी है माऊ।
0: अरे नहीं बेटा नहीं, जका दिन तेरी माऊ की आंख फड़के नहीं, बी दिन कोई ना कोई खड़कू होया ही सर है। अरे कोई ना कोई बटाऊ आया ही सर है बेटा।
1: साची के वो थे पण बा कहबत सुनी को नी के, फड़के आंख डाई भाई मिले का साई।
2: फेर तो मिलन खातर मामो यासी मऊ, बने कई महीना हो गया आया कोनी।
0: हाँ बेटा मामो यासी, साई तो जे घरे ही बैठे।
1: तो थे गांव जाने खातर तैयार हो रिया नी?
0: भाई गांव तो जाऊं ही हूं, जोड़े में जा मेरी दोती गाल गे।
2: जाओ दबा दब फिर मोड़ो ना करो बाबा, और मैं भी अब खेत जाऊं, काम घना ही है।
0: जा बेटा जा, और हूं भी जाऊं।

0: राम राम भाई, राम राम।
1: राम राम। उन तो थाने पिछाने ही कोनी, कौन होते?
0: लो कर लो बात, मैं भी तेरो की लागू लाडी, आ भी बताशू के लागू।
1: पहली तो थाने कदी देखा कोनी, अरे जे देखे है तो याद कोनी।
0: अरे तू कौन नहीं जाने नी भाई, अपना बे छल्लू जी है नी, अच्छुतरिया जाने। अरे भाई लागू तेरो भाई,
1: अच्छा, मेरे भाई लगो के?
0: तेरो भाई, ए भाई वो भी साता नामा गो। सुन भाई, तेरी नानी और मेरी नानी दोनों मामे बुआ की बहन आई है, समझी के तू?
1: केठा, मन्ने तो कोनी बतायो ही कोनी।
0: पर आ चलू जी, गरा कोनी दिखे भाई, के बात है कटी गेड़ा है के?
1: बे तो काल का गांव गेड़ा है, उम्मीद तो है आज आ जासी।
0: अच्छो भाई अच्छो, भी बार त्योहार गांव गांवंतरे जानो ही पड़े है फिर।
1: दरवाजो केठा कौन खड़कावे?
0: ले ए भाई छेलू जी, आ क्या लग गया गांव जो?
1: देखो, दिखाने केठा बे ही हुए।
0: सोला ना, मैं कहूँ है ही छेलू जी है।
1: लियो आ गया नी, माने पक्को अंदाजो के थे ही आया हो। कई ताल होगी, गुरदित्तो भी आए रहे हैं।
2: अरे फूट क्या करम, बेकिन्नू बरस गया।
1: मेरा भाई लागता बतावे। अरे थे या माथो किया पिटो जी?
2: अरे तने ठाको नहीं, वो तो टुकटेर है टुकटेर, मिन्ने शु पहली को लेनी अठाऊ।
1: थे चलो बा कन्ने बैठो तो सरी, मैं चाह बनाऊ, थे इते बाता करो।
2: कर ली बाता, अब कई दिनों वाले ही को नहीं, बात ही रवेगी पल्ले। तू कवे ना तो ले कई तल बैठू दिखाण।
0: आओ चलू जी आओ, थोड़ी देर पहले थारी बात करा चलू जी।
2: सुनाओ गुरदित्ता जी, अट तई आणो करो का अगू ने गांत रह जाओ।
0: थाने तो ठाई है चलू जी, मैं तो 12 महीना गांव तरह ही में रहूं।
2: तो पकड़ है ओ मिन्नो अठाई टिका दियो लाके। लो चागी चा पी लो सा।
0: लो सा चाय तो पी शाही। अरे छेलू जी थे पियो और हूं ना पियो, के बात पियो सा, थे भी पियो।

0: भक्ति थारा काल बटाऊ आया बे गया के।
1: मारा बटाऊ क्यों जावे, बटाऊ जाओ थारा।
0: भक्ति बुरो मानगी के मेरी तो यूं ही पूछन की आदत है।
1: बुरी मानन वाली सी बात ही करो।
0: चलो गलती होगी भक्ति, अबे कौन नहीं कमोनी।
1: भाई किंगे मुने पड़े है ना है बने जागे पूछो।
0: ए आयड़ा जी का तेरा सगा भाई है के?
1: नहीं है लाली, मेरी नानी और बांगी नानी दोनों मामा बुआ की बहन आई दे ही बतावे।
0: फिर तो साग्या भरगो ही भाई है।
1: ना ए क्या गो साग्या भरगो है। ले तू घड़ो चका, जाऊं काम घणो ही है।
0: ले भाई ले तू चक घड़ो, तने घणो मोड़ो है।
1: बस ते लगे गिल्ला लकड़ है ना जगह ना कोई और। हूं तो फूकनी सी हूं, फूक मारती मारती आखती होगी।
2: सेवा करतो करतो हूं आप परेशान हो गयो। कदी चाय जलाओ कदी होकू भर गे दियो। ई लाट साहब ने के फांसी आ गई मंडी है कल में।
1: हो कहने रेण दियो एकर, पहली रोटी जला दियो हुई फिर पानी भरनो है। सिपी पानी कोनी गड़िया में।
2: चलो तू कवे तो रोटी जला दियो, ओकलियो पछे ही भर के देसियो।
0: भक्ति भक्ति है भक्ति, थारा बटाऊ गया के अठई है।
1: लगे बटाऊ तो कोनी जावे नी, जा सिया में बेगी सी घर जाऊं पशु निरणा ले।
0: हाँ साचनी मने याद आई, थारी गा दूध कढ़ान लागी के?
1: ना ये थोड़ो सो देवे लाता लड़ियो कर।
3: अलग अलग निरंजय।
0: भक्ति ए भक्ति सुन, ए देख बाबूजी जावे, ए बताया करे हने पूछ दिखान।
1: बाबा जी पगा लागू।
3: बोलो बच्चा की तकलीफ है?
1: बाबा जी मारी गा दूध कोन कढ़ावे नी, केटा की बात है।
3: अलग अलग निरंजन जा इतना दिन चिंग कढ़ावे तो ही अबे सब भाई को कढ़ावे जा के दियो तने।
0: अले पन बाबा जी अब गा सफाई दूध कोने कढ़ावे इसी के बात है।
3: अले निरंजन अले जेकी पूछना ही है तने तो बाबे की धामे के पूछो। रामे बाबा की नहीं बताता।

0: पड़गी आदत लड़ने की आने तो
1: ठहर तू यहाँ को माने नहीं तू मन आवड़ दे तू मन मन
0: अरे मन बोल तू मारो क्यों अरे मावू
2: अरे जे होवे तो गुर्दिता पसवाड़ा भूले नहीं तो तेरी खैर नहीं भाईड़ा चार
1: मैं नहीं मैं तेरा कंठ मोस दूंगा समझे आपका आपने
3: बस करो अब तो वो उठ गयो
1: गयो अब की सांस में सांस आसी लड़ता न देख रहे उठ क्यों लाग के
0: गुर्दित तो हुए चाहे कोई और पड़ती दिखे नहीं जद सेस रख जे
1: तो सेक लियो सेक कितना दिन हो गया बैठे है बटाऊ बने
0: और के तो आपा तो सगला सिकनी में आ गया इसे आंगड़ी फांगड़ी वाला घना ही भाई फिरे
1: ले मरी गुर्जा आज तो सीरो सारो बड़ा फिर मजे से दोनों खावांगा
0: आबार लियो मारा साहिबा ताल कितिक लगे
2: वाह चलू जी वाह आज तो हलवा बड़े है फिर
1: थे गया कौन है अजय अठैयो
2: ए सुनो मेरो नाम है गुरदित्तो माचो ले पसवाड़ा सुत्यो गयो मैं भी कोनी गयो मैं भी कोनी
1: तो बड़ी तकड़ी अलवाद होगी अच्छो जी को जंजाल बने हुए
0: फूट गया कर्म नाटक करो फेरी पार नहीं पड़ी इसे मिनक ने किताक दिन और झेलनो पड़सी लीले तंबू वालों ही जाने

0: भक्ति ए भक्ति घरे ही है के
1: कौन है लाली है के आजा आंगन में आजा लाली
0: आगुने के आजा भक्ति आ देख सावली मेरा सागा आई है कोई काम लाग रही है के
1: लाग रही लाली रंधा पोवा में ही लाग रही एक वो आयो बैठे है नी छाती छोलन ने
0: वो अजय तई गयो को नी के है आप अभी दिन थाली गागो पूछो एर सागे आले टोडिया गो ई बजिया का पा जिक्र करियो नी
1: तो लाली अजय तई आंगो टोडियो लाद्यो कोनी
2: लाद्यो कोनी जदी तो आई हो है आप बाबा जी के धाम चार पूछ के आवा देख
1: घरे तो काम घणो ही है पण थे आगे तो चलो पूछिया से
2: मारो तो जद सुटोडियो कमियो है जद सो सगला के नींद ही आराम हो रही है
0: अब तो बस बाबा जी कने जाएंगे देर है वे अपने सो की बता दे सी
1: चलो फिर की बेगी बेगी चला बाबू जी कठे ही उठ ना जावे
0: हाँ चलो
3: आलक आलक बम बम बोले
0: पगा लगूं बाबा जी
3: आओ बच्चा आओ की तकलीफ है
0: बाबा जी मारे तो कोई तकलीफ को नहीं मैं तो सेहत तगड़ी हां
3: फिर अजय रंगो की करे ने बताओ
1: बाबा जी बी दिन गली में थारू पूछो नहीं बा मारी बागा
2: थम भक्ति कर तू थम जा ले मारे तोड़ियो को पूछन दे मन्ने
3: आलक पूछो पूछो बच्चा
1: ठीक है पहले तू पूछ ले पछे हूँ पूछ लेसी गा के बारे में तो
2: बाबा जी मारो टोडियो गम क्यों घना ही दिन हो क्या रज ताई कोला दियो नी
0: हाँ बाबा जी सगले ढूंढ लियो के ठा कठा उठ गयो
3: आलक आलक निरंजन टोडियो मने दिसे दिस जो मने टोडियो जा बच्चा दिनों के गांव सुबह ने आतुड़े पसे आंकड़े रे माय टोडियो चरतो चरतो ना देखो तने टोडियो
2: पण बाबा जी आ बात क्या हो सके
3: तो की बात हो सके बच्चा हमको तिरलों की दिखे अटे बैठे बैठे ने
1: पण बाबा जी टोडियो तो साबली के छोरे को नाम है चरतो किया लाज जगो
3: छोरे को नाम है नाम तो डंगा लाद्य को नी अरे बाबा जी ने बदनाम कर दी फिरे फिरी जाओ ढूंढ लियो लाद्य तो बाबा की नहीं बताएगा।

0: ए भक्ति, गा दूध को नहीं देवे वो तो पूछ लिया है।
1: पूछ लियो। अरे बाबा जी बता दियो, चलो चला अपने घरे गा दूध कढ़ा सी लाडी खुआया पियाया।
0: ए थार लो बताओ
1: बताओ गो तो राम ही जाने। चलो चला।

किसान भाइयों, अभी आपां सुनियो नाटक टोडियो, और बुधवार वाले दिन कागज़ मांड दियो या फिर संदेश भेज दियो कि नाटक थाने किसो को लाग्यो। और किसान भाइयों, आपां ने अभी आपां देखा कि बिरखा का दिन है, और आ दिन में आपां बारह इन्ने बिना कोई गांव तरह जावा या कोई मंडियों सामान लेवा, तो आपां ने सड़क पर भी आपां ने विशेष रूप से आपां ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर चलते माथे आपां ने भी भगत विशेष रूप से आपां ध्यान रखा कि आपां सड़क पर जानता हुआ तो एक पास है आपां ने चालना चाहिए, और बिल्कुल सड़क के बीच में आपां जावा ना। और सड़क पार करनी होवे जब आपां अच्छी तरह दोनों पासे देख गए और भी बाद में आपां सड़क पार करा। और विशेष रूप से आपां देखा कि यहाँ दिनांग में कई बार क्या है, कोई आंधी आ जाए और बीच में क्या है, कोई तार बिजली को टूटेड़ो हुए तो भी बिजली के तार से भी आपां ने दूर रहना चाहिए। तो आ सगली बातों को आपां ने ध्यान रखना चाहिए। और इन सागे सागे आपां देखा कि विशेष कर आजकल वाला जिका टाबरिया है नहीं, बे कोई मोटरसाइकिल चलावे या कोई और, तो फोन जिका सागे सागे हाथ में लेके देखता रहे, तो आ तो देखो भाई अच्छी बात को नहीं, बहुत ही माड़ी बात है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और बने भी अच्छी तरह ही बात समझा दें कि फोन जो है वो आपने कोई मोटरसाइकिल चलाते हैं भागते और कोई साधन चलावा आप, तो बिंगो आपा ने इस्तेमाल को नहीं करना। और सागे सागे कोई छोटा टाबर है तो बंगो भी आप सड़क छू या और कोई आपने राह हुआ है तो बैठे भी आप ध्यान रखा कि वे बिंग ऊपर खेल लेना या बिंग ऊपर दौड़ ना लगावे। खेलने की जगह और आस पास आपने खेलना चाहिए, और विशेष कर रात वाला टाइम आपने जरूर आपने सावधानी बरतनी चाहिए, और सावचेती से सड़क के ऊपर चालना या सड़क पार आपने करनी चाहिए। और इन सागे सागे आप देखा कि कई बार क्या मोड़ों के ऊपर जिको है एक्सीडेंट होने को डर ज़्यादा रहे, तो भी मोड़ के ऊपर भी आपने अच्छी तरह सावधानी रखनी चाहिए, अच्छी तरह देखभाल करगी, और भी बाद में ऊपर भी आपने सड़क पर चलना चाहिए जिसो कि एक कोई नुकसान ना हो। कर सा किसान भाई बात चीता और, पर पहली सुना है गीत लियो सुनो सा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: किसान भाइयों सुनो भी आप गीत। किसान भाइयों बात करें खेती पाती की, तो देखो नुई नुई

की तकनीक आवे आपने खेती करने के माँ बे आपने बहुत ही फायदो करा है। इस तरह आप बात करा सिंचाई की, तो सिंचाई में भी जी भांत भांत की नुई नुई जी विधियाँ आई है तो बांशों बहुत ज़्यादा फायदो है। आप चाहे बात करा टपकाली सिंचाई विधि है, चाहे फुहराली सिंचाई विधि है, तो इंशू आपने बहुत ही फायदो हुआ। और खास करके वह किसान भाई जिकांगी अपना बुआई जिका करे है, जिकांगे खेत में बिरखा आधारित फसल हैं, तो बना तो बहुत ही ज़्यादा फायदो है। और देखो आज की सिंचाई है अपने हिसाब से, मतलब कि जद भी फसल ने जरूरत हो बी टाइम आप कर सका हाँ। और इन खातर देखो अब आन दिनांग अगर आप बात करा तो बिरखा के दिनों में आप पानी है जिको वो खेत में कोई तालाब में या कोई डिग्गी में या कुंड में आप गठे बिना इकट्ठो कर लें, और बी पानी छूं बाद में आप जब भी अपनी फसल ने जरूरत हो तो बीच में आप क्या सिंचाई भी कर सका हाँ। तो देखो इनका दो फायदा है, एक तो फायदा वो है कि पानी जो है बरखा को जो पानी है आपने तो बिंगो अपनों सदुपयोग हो जाए, अच्छी तरह वो काम में आ जाए। और सागे सागे के आप जो है तकनीक अपनावा जी की अपने नई नई तकनीक है, जहाँ मान लो टपकाली अगर आप सिंचाई विधि अगर तकनीक बना तो जिका किसान भाइयों का बाग बगीचा है, खास कर आप बात करा टिब्बा वाला किसान भाइयों की, तो वहाँ खेतांग में टिब्बांग में जिया बेर है या और बाकी का जिका भी पेड़ पौधा लागेड़ा है बाग बगीचा है, तो वहाँ मैं आप टपका विधि अपनावा तो भी चूँकि बहुत फायदा हुआ। चूँकि है कि एक तो देखो पानी की बहुत ज़्यादा बचत हुआ है, और सागे के जितनी जरूरत हुआ है आपने बितो ही पानी अपने काम में आवे, पानी जो है ख़राब को नहीं हुआ, और इंग में पौधा की जड़ें तय जो है लंबे टाइम तक इंग में नमी भी बनी रहे। और सागे सागे इंग और भी फायदा है, जी हाँ आप देखा कि खरपतवार है, पानी ना मिलने से खरपतवार भी ज़्यादा खेत में को नहीं हुआ, और माने काटने की जिकी मेहनत है और खर्च है वो भी आपने बच जाए। इस तरह किसान भाई बात करा फुहरा सिंचाई विधि की, तो टिब्बा में आप देखा कि पानी लगाना जो है वो संभव को नहीं है, तो जी हाँ आपने बिरखा हुआ बी तरह आप फुहरा वाली तरह आप सिंचाई खेत के माँ करगे, और ऊंचा नीचा खेत है बैठे भी आप फुहरा से सिंचाई करगे। और बिंग माँ जिया कोई ग्वार है, आगे दूसरी फसलों की बात करा तो सरसों है, तारो मीरू है, तो ए सगली फसल अपने दोनों तीनों रुत वाली जी की फसल है, ए आप फुहरा वाली जी की सिंचाई है बाद आप अच्छी तरह पका गए और आप पैदावार जी की लेस कहाँ, और इसमें किसान भाइयों फायदों भी खूब हुआ है। तो इतने किसान भाइयों आप पानी बचा गए और भांत भांत की जी की आपने तकनीक है बने अपना आगे आप सिंचाई करा तो भी शू किसान भाइयों आपने फायदों जो है वो ज़्यादा हुआ और पानी की भी बिंग में बचत हो जाए। किसान भाइयों और भी बातचीत कर सें पर अब वो सुना है गीत लियो सुनो सा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: किसान भाइयों, सुनो आप गीत और मौसम की बात करा तो मौसम वाली पानड़ी कह भी आने एक दो दिन भी बादलवाई और बिरखा की पूरी पूरी संभावना है। तो आपने जिका बीजा बाई का काम है वे आपने बिरखा के हिसाब से आप कर सका हाँ। और अब तो कार्यक्रम को टेम हो गयो है, तो आज को कार्यक्रम इतो ही। अब सज्जन भाई ने दो थी आज्ञा। राम राम सा राम राम।

अभी आपने कार्यक्रम चौपाल सुना। मीडियम वेव 326.7 मोमीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनिए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है मेजर साहब।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह को, फिल्म का नाम है जैकपॉट।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

सभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की हैं कि आपका जो सुझाव है उस पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए।

प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैंबर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्रवाई चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्रवाई चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्रवाई अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देशभर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E19 E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी ये स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर एक सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय-समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है जल शक्ति अभियान अटल भूजल योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन कृत्रिम पुनर्भरण जल निकायों का पुनरुद्धार सूक्ष्म सिंचाई फसल विविधीकरण जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि जल राज्य का विषय है इसलिए यह प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीए से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपने परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत सेवा की विशेषताओं युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है हालांकि यह सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है जैसे कोविड महामारी के दौरान महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई

0: सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है रंग दे बसंती।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है रंग दे बसंती। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये अगला गीत।

अभी आप कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुन रहे थे। आज की फिल्म थी रंग दे बसंती। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बाय मिला, भारत के लिए पदक सुनिश्चित। भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर पहला T20 मुकाबला अपने नाम किया। वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली। आगामी टेस्ट क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अलीरेजा फिरोजा ने चेन्नई शतरंज ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जीता। और ISSF निशानेबाजी विश्व कप के पहले दिन चीन के ओलंपिक चैंपियन शेंग लिहाऊ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना को बाय मिला, जिसके माध्यम से उन्होंने सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही भारत ने अपना पहला पदक सुनिश्चित कर लिया है। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बाय मिला है। इस बाय के जरिए उन्होंने सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए अपना पदक सुनिश्चित कर लिया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन बाय मिलने के बाद महिलाओं के 75 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में सीधे पहुंची। ड्रॉ में सिर्फ 5 एथलीट थे, इसलिए लवलीना समेत 3 खिलाड़ी सीधे अंतिम 4 में पहुंच गए, जबकि बाकी 2 खिलाड़ियों को एकमात्र क्वार्टर फाइनल मैच खेलना था। कॉमनवेल्थ गेम

0: में सीधे पहुंची। ड्रॉ में सिर्फ 5 एथलीट थे, इसलिए लवलीना समेत 3 खिलाड़ी सीधे अंतिम 4 में पहुंच गए, जबकि बाकी 2 खिलाड़ियों को एकमात्र क्वार्टर फाइनल मैच खेलना था। कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग नियमों के तहत सेमीफाइनल में हारने वाले सभी खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है। लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल में ताफाकी के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी, जहां स्वर्ण पदक मैच में जगह बनाने का मौका होगा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और श्रोताओं, आपको बता दें कि लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 के विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा उन्होंने चीन के हंगझोउ में हुए 2023 एशियाई खेलों में भी रजत पदक जीता। वहीं ओपनिंग सेरेमनी के लिए जब आज भारतीय दल शानदार कपड़ों में मैदान पर उतरेगा, तो लवलीना और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू फ्लैग और बैटन बेरर लेकर चलेंगी। मीराबाई चानू ने बेहतर प्रशिक्षण के लिए सरकार का धन्यवाद भी किया।
2: एक तरफ से तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमको इतना सपोर्ट दिया है कि हम पहले ट्रेनिंग करना जो भी चाहते हैं, वैसे हम पहले से ही 25 डे हम बर्मिंगम में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो जो क्लाइमेट एडजस्ट करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है प्लेयर्स के लिए कि हमारे इंडिया में बहुत गर्म है, इधर आके हम ठंडा है, तो एक वीक या दो वीक लग जाते हैं इसको एडजस्ट करने में। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे गवर्नमेंट को कि उन्होंने ही पहले हमको ट्रेनिंग के लिए भेजा है।
1: मीराबाई ने कहा कि ये प्रतियोगिता एशियन गेम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: मेरे लिए तो काफी डिफिकल्ट हो रही है कि अभी मैं 48 में खेलूंगी, फिर 49 में खेलना है, पर फिलहाल अभी 48 के लिए मैं बॉडी वेट कंट्रोल करके रखना है और एशियन गेम्स के लिए भी मुझे प्रिपरेशन करना है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, पर मैं पूरा कोशिश करूंगी मेरे तरफ से जो भी है, पर बहुत पास में है, तो मैं अभी भी जो ट्रेनिंग चल रही है मैं एशियन गेम्स की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ।
1: उन्होंने कहा कि खिलाड़ी प्रेशर से पार पाकर पदक जीतना चाहते हैं।
2: प्रेशर है, पर हमको पूरा कोशिश करूंगी प्रेशर को साइड में रख के जो हमारी परफॉर्मेंस हमने करके आई है इसको, हमारी जो बेस है उसको स्टेज में लेके करने के लिए हम पूरा कोशिश करूंगी, तो ऐसा ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो जरूर वेटलिफ्टिंग में सबका मतलब मेडल आ सकते हैं।
1: उधर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज ग्लासगो में भारतीय सदस्यों के साथ साइकिलिंग रैली की अगुवाई की और भारतीयों से राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान चेयर फॉर इंडिया मुहिम में शामिल होने का अनुरोध किया। खेल मंत्री ने साइकिलिंग के महत्व के बारे में भी बताया।
3: भारतीय डायस्पोरा के द्वारा चेयर फॉर भारत करके हमारे एथलीट का हौसला बढ़ाया, साइकिलिंग से दुनिया को ग्लासगो से संदेश दिया कि फिटनेस दुनिया के हर नागरिक के लिए जरूरी है।
1: अब सीधे चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी भारतीय टीम, लेकिन आज जिस प्रकार से नए खिलाड़ी टीम में शामिल हुए और गेंदबाजों ने कैसा किया प्रदर्शन आज?
4: जी प्रशांत, आज गेंदबाजों का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। आज अशोक शर्मा ने भारत के लिए डेब्यू किया है, हालांकि उनका आईपीएल प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था और भारत के लिए उन्होंने आज डेब्यू किया, तो उसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले गए 10 मुकाबलों में उन्होंने 22 विकेट चटकाए थे और सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी पेस से प्रभावित किया था। इस आईपीएल में उन्होंने 154.2 की रफ्तार से गेंदबाजी करी थी। आज भी वो विकेटलेस रहे हैं, पर वी होप फॉर द बेस्ट कि हम देखेंगे अशोक शर्मा को कुछ अच्छा करते हुए। वहीं मयंक यादव ने 4 ओवर में आज 18 रन देकर 2 विकेट लिए और उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।
1: वहीं बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। वैभव सूर्यवंशी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, उनके दम पर उनको टीम में जगह मिली और आज धमाकेदार पारी भी खेला वैभव ने। कैसा रहा भारत का बल्लेबाजों का प्रदर्शन?
4: देखिए बल्लेबाजी क्रम की अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा आज जल्दी ही आउट हो गए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने शानदार पारी खेली, 19 गेंदों पर 50 रन बनाए जिस पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। वैभव को ये मैदान बहुत ही ज़्यादा रास आता है क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने यहाँ पर 175 रन की पारी खेली थी जो सबको याद होगी। और उसके बाद ईशान किशन ने 24 गेंदों पर 35 रन और वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने 24 गेंदों पर 28 रन। तो इंग्लैंड और आयरलैंड से हारने के बाद जिम्बाब्वे के

0: खिलाफ ये जीत भारतीय टीम को बहुत ही मनोबल प्रदान करेगी और आगे भी हम उनसे बेहतर प्रदर्शन की आशा रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारत ने पहला मुकाबला जीता है और उम्मीद करें कि 25 और 26 जुलाई को जो इस श्रृंखला का दूसरा और तीसरा मुकाबला खेला जाएगा, इसमें भी भारत जीत दर्ज करे और इस श्रृंखला को अपने नाम करे। उधर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप WTC 2027 का फाइनल इंग्लैंड के ओवल में 9 से 13 जून के बीच खेला जाएगा। ऐसा दूसरी बार होगा जब ये मैदान चैंपियनशिप का फाइनल होस्ट करेगा।
2: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले की मेजबानी ओवल दूसरी बार करेगा। इससे पहले इसी मैदान पर वर्ष 2023 में यहां खिताबी मुकाबला खेला जा चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी थी। पिछले वर्ष आईसीसी कॉन्फ्रेंस के दौरान ईसीबी को अगले तीन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027, 2029 और 2031 की मेजबानी के अधिकार मिले थे। WTC फाइनल के शुरुआती तीन संस्करण इंग्लैंड के अलग अलग वेन्यू पर आयोजित किए गए थे। लॉर्ड्स ने वर्ष 2025 का फाइनल होस्ट किया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी थी। न्यूजीलैंड ने साल 2021 में साउथहैम्पटन में भारत को 8 विकेट से हराकर पहला टाइटल जीता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में ओवल के मैदान पर 209 रन से जीत हासिल करते हुए ट्रॉफी जीती थी। टेस्ट क्रिकेट के 150 वर्ष पूरे होने के कारण 2027 का संस्करण ऐतिहासिक होगा। ऑस्ट्रेलिया अभी WTC रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और भारत तीसरे, चौथे और पांचवे स्थान पर हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात कर लेते हैं स्क्वॉश पर। अनहा सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में अनहात ने डॉयस ये सैन को शिकस्त दी। सुनते हैं सरफिरोजी की एक रिपोर्ट।
3: अनाहत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड स्क्वॉश जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट की शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मलेशिया की डाइस ये सैन ली को सीधे गेम में हराया। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली अनाहत ने अपनी प्रतिद्वंदी को 11-4, 11-8 और 11-3 से मात दी। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना मिस्र की 5-8 सीड खिलाड़ी हबीबा रिजक से होगा। महिला वर्ग के कई अन्य मुकाबले भी रोमांचक रहे। मिस्र की हबीबा रिजक ने अमेरिका की शार्लेट जे को 4 गेम के मुकाबले हरा कर अगले दौर में जगह बनाई। वहीं बेल्जियम की सवाना मोक्सहैम ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए हांगकांग की एना क्वांग को 3-1 से हराया। मिस्र की मलिका एलकाराक्सी ने अमेरिका की दिया यादव को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुष वर्ग में भी कई अहम मुकाबले खेले गए। टॉप सीड मोहम्मद जकारिया ने पाकिस्तान के नौमान खान को हराकर अगले दौर में जगह बनाई, तो फ्रांस के अमीर खालिद जोसेलिन ने इंग्लैंड के रॉनी हिकलिंग को सीधे गेम में हराया, जबकि हांगकांग की हेलेन टैंग ने मलेशिया की हार्लिन टैन को मात दी। हालांकि पुरुष वर्ग में कुछ बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। भारत के आर्यवीर दीवान, जो टूर्नामेंट में 5-8 सीड खिलाड़ी थे, उन्हें अमेरिका के यासीन शलाबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अमेरिकी खिलाड़ी ने आर्यवीर को 11-4, 11-1 और 11-5 से हराया। इसके अलावा ब्राजील की लॉरा सिल्वा को मलेशिया की विटनी विल्सन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। वहीं सऊदी अरब के मोहम्मद अलनासफान ने इंग्लैंड के डायलन रॉबर्ट्स को 5 गेम के रोमांचक मुकाबले में हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के व्यक्तिगत मुकाबले 20 से 25 जुलाई तक खेले जा रहे हैं। इसके बाद 26 से 31 जुलाई तक पुरुष और महिला टीम प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। भारतीय पुरुष टीम इस टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद के साथ उतरेगी। पिछले वर्ष इस टीम ने काहिरा में टीम 13 वर्ष के बाद कांस्य पदक अपने नाम किया था। और अब बात शतरंज पर। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स के चौथे संस्करण के सातवें और आखिरी राउंड में कल भारत के अर्जुन एरिगेसी के साथ मैच ड्रॉ कराने के बाद फ्रांस के ग्रैंड मास्टर अलरेजा फिरोजा चैंपियन बने। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: अलीरेजा फिरोजा को खिताब जीतने के लिए सिर्फ एक ड्रॉ की जरूरत थी। 41 सालों के बाद मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ और फिरोजा ने 7 राउंड में 4.5 पॉइंट्स हासिल किए। 22 वर्षीय खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं गवाया। इस दौरान उन्होंने 2 जीत हासिल की और 5 मैच ड्रॉ खेले। अंतिम दौर में अलीरेजा फिरोजा के पास भारत के

0: जिन एरिगेसी और उज्बेकिस्तान के नोदरबेक अब्दू सत्तरोव पर आधे अंक की बढ़त थी। खिताबी दौड़ निर्णायक रूप से फिरोजा के पक्ष में तब झुक गई जब अब्दू सत्तरोव रूस के दिमित्री आंद्रकिन के खिलाफ 47 चालों में हार गए। अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी के दौड़ से बाहर होने के बाद फिरोजा को एरिगेसी के खिलाफ सिर्फ ड्रॉ की जरूरत थी। उन्होंने सुरक्षित रूप से खेल को रुक एंड पॉन एंड गेम तक पहुंचाया और फिर पॉइंट बांटकर खिताब अपने नाम कर लिया। आंद्रकिन ने इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं गवाया। वहीं अर्जुन एरिगेसी के साथ 4 पॉइंट्स पर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। अब्दू सत्तरोव ने भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन और एम प्रणेश के साथ चौथा स्थान साझा किया। तीनों ने 3.5 पॉइंट्स हासिल किए। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश के लिए यह टूर्नामेंट निराशाजनक रहा। 7 में से 3 गेम हारने के बाद वे 2 पॉइंट के साथ स्टैंडिंग में सबसे नीचे रहे। और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी की हार के साथ भारतीय खिलाड़ियों का सफर आज समाप्त हो गया। पीवी सिंधु शुरुआती बढ़त का फायदा उठाने में नाकाम रही और चीन की खिलाड़ी चेन यूफेई से 3 गेम के कड़े मुकाबले में 21-16, 20-22 और 18-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी को भी हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य कैनेडा के विक्टर लाई के खिलाफ 21-19, 21-11 से, जबकि आयुष शेट्टी आयरलैंड के नेट ग्वेन से 15-21, 21-13 और 22-20 से हार गए। और अब बात निशानेबाजी पर। ISSF निशानेबाजी विश्व कप के पहले दिन कल पुरुष 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में चीन के ओलंपिक चैंपियन शेंग लियाओ ने स्वर्ण पदक जीता। चीन के ही झांग चांगहोंग ने रजत पदक

0: नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
2: At the level of the Prime Minister,
3: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
0: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र, बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल SIT ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड TDB के पूर्व अध्यक्ष PS प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व TDB अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
5: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद कर

0: का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
1: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
2: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government invites students protesting over NEET paper leak issue for talks. Prime Minister Narendra Modi announces fast-track courts for paper leak cases. Deadlock continues in Parliament over NEET paper leak issue. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicușor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games.

बचपन से ही संगीत की बारीकियां सीखने वाले मेहदी साहब ने ठुमरी और दादरा में अपना नाम बनाया, लेकिन गजल गायकी में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वह बेमिसाल है।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मेहदी हसन साहब ने अपने शुरुआती दिनों में साइकिल मिस्त्री का काम भी किया था, लेकिन संगीत का जुनून उन्हें वापस इस कला की ओर ले आया। 1957 में रेडियो पाकिस्तान के माध्यम से उनका सफर शुरू हुआ। उनके सुरों ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

दोस्तों, मेहदी साहब की आवाज में एक ऐसी कशिश थी जो गजल को आत्मा तक पहुंचा देती थी। उन्होंने मिर्जा गालिब, अहमद फराज जैसे बड़े शायरों की गजलों को अपनी आवाज दी और उनकी गाई हुई गजलों ने उन्हें गजल का बादशाह बना दिया। मेहदी हसन साहब को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उनकी गजलों ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। 2012 में संगीत की इस महान आत्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी गजलें आज भी जिंदा हैं और हर संगीत प्रेमी के दिल में खास जगह रखती हैं।

0: तो दोस्तों, यह था मेहदी हसन साहब का सफर। उनकी आवाज ने हमारे दिलों को छुआ और हमेशा छुएगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार थे मेहदी हसन। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे कंट्री वाइड इनसाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: रिहान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हरित चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और हरित हाइड्रोजन की काफी बात हो रही है, तो एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि

0: हरित हाइड्रोजन क्या है और इसमें हरित क्या है?
1: देखिए, हरित जो है ना, ये जितने भी आजकल डेवलपमेंट हैं और जो भी हमारी चिंता है वो पर्यावरण को लेके, और पर्यावरण को लेकर सबसे बड़ी चिंता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो अभी जो आप हरित सुन रहे हैं, हरित का कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के होने और ना होने से, जैसे कि किसी एनर्जी को हम या किसी ऊर्जा को हम हरित ऊर्जा कह रहे हैं, वो उसका मतलब ये है कि जिस ऊर्जा को बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा वो हरित ऊर्जा है। इसी तरह से हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन एक बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाली गैस है इंडस्ट्री में। जो इसको बनाने का तरीका अभी तक चल रहा था उसमें CO2 एमिशन था, जो कि पर्यावरण, जैसे कि मैंने बताया, ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण का जो चैलेंज है। तो हरित हाइड्रोजन का मतलब ये है, हाइड्रोजन ऐसे तरीके से बनाई जाए जिससे कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ना हो, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड का ना होना, ऐसी हाइड्रोजन जिसे बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकले हैं, वो हरित हाइड्रोजन कहलाएगी।
0: अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने की बात कही है, और देखा जाए तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एक बड़ा कदम भी सरकार की तरफ से लिया गया है। तो इन सारी चीजों को अगर एक साथ रख कर कर देखें तो देश में इसकी जो अब तक की प्रगति हुई है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, इसमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का चैलेंज है यानी ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बिजली सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, जब हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली जो बनती थी वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्रोत थी, तो हम बिजली सेक्टर को ग्रीन कर रहे हैं, हरित कर रहे हैं, यानी सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, विंड इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये है कि बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे कि आप अगर उनको इलेक्ट्रीफाई कर दो, जो पहले बिजली से नहीं चलते थे, अब अगर बिजली से चलने लगे तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड

0: पेट्रोल डीजल से ईवी की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए कि ईवी से अगर वो चलेंगी तो एमिशन नहीं होगा या कम होगा, और अगर वो बिजली जिससे ईवी चार्ज हो रही है वो हरित है, ग्रीन है, जो सोलर विंड या हाइड्रो से बनी है, तो आपको डबल एडवांटेज हो गया कि आपने डीजल और पेट्रोल के एमिशन भी हटा दिए और इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रीन हुई। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको आप इलेक्ट्रिफाई नहीं कर सकते हो सीधे सीधे, जिनको हम लिटरेचर में हार्ड टू अबेट सेक्टर कहते हैं, जिनको मुश्किल है जिनके एमिशन इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कम करना। उनमें ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, बहुत सीमेंट है, स्टील है, फर्टिलाइजर है, तो हाइड्रोजन वहाँ जो इस्तेमाल होती है वो ग्रे हाइड्रोजन कहलाती है, क्योंकि उसको बनाने में फॉसिल फ्यूल जिन्हें हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन, उनका इस्तेमाल होता है। तो अगर हम उस हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो उन सेक्टर के कार्बन एमिशन भी कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। अब हरित हाइड्रोजन कैसे बनती है? हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें बिजली का इस्तेमाल करना होगा। आप पानी लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसमें, तो उससे हाइड्रोजन बनती है और निकलती सिर्फ ऑक्सीजन है, तो कोई पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं। तो हमारा जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन जो
1: जी
0: आपने कहा, ये असल में हमारे राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन का एक्सटेंशन है एक तरह से। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी को भी हरित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रांसपोर्ट को भी हरित कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इंडस्ट्री जहां हाइड्रोजन इस्तेमाल होती थी उसको भी हरित हाइड्रोजन से हम रिप्लेस करना चाह रहे
1: रेहान
0: हैं।
1: जी, जिस तरह से आपने तमाम चीजों को जोड़ा है, तो थोड़ा सा अगर पीछे अगर की बात करते हैं तो सरकार का सोलर एनर्जी पर भी काफी फोकस रहा है कि सौर ऊर्जा को अधिकतम देश में बढ़ावा दिया जाए, और कई सारी योजनाएं भी सरकार ने लागू की हैं। तो आपको लगता है कि ये दोनों ही पैरेलल चलने वाली चीजें हैं कि सौर ऊर्जा में भी देश काफी प्रगति कर रहा है और आगे भी करेगा, और हरित ऊर्जा का एक मिशन तो हम अब लेकर के चल ही रहे हैं?
0: नहीं, ये दोनों एक दूसरे को एक तरह से पूरक हैं, एक दूसरे को समर्थन करने वाली, एक दूसरे की सहायता करने वाली
1: जी
0: स्कीम। कैसे होंगी मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए, हमने पिछले 10-12 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी से हम कहते हैं, जिसमें कि हम सोलर विंड इनको मानते हैं, उसके अंदर बहुत काम किया है और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है हमारे ऊर्जा सिस्टम में। जो सोलर हमारे पास 10-12 साल पहले 1,000 मेगावाट भी नहीं था, आज हम 180 गीगावाट, 180,000 मेगावाट से ऊपर चले गए हैं, और हमारे सामने एक बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड लक्ष्य है, 2030 तक हम कितना करेंगे, 35 तक, 2047 तक और 2070 तक। तो हमारी इसमें बड़ी स्ट्रांग और कंसिस्टेंट पॉलिसी थी, और हमारे देश के जो इसमें लक्ष्य भी थे ना, वो बड़े एम्बिशियस रखे गए कि 175 2022 तक करना था, फिर 500 गीगावाट 2030 तक करना है, फिर 2047 का भी है। 2070 में आप जानते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत प्रॉमिस कहे हैं उसमें से एक ये है कि 2070 तक हमें नेट जीरो।
1: जी
0: नेट जीरो का मतलब है कि हम एमिशन कम करेंगे अपने, और अगर कुछ होंगे भी तो उनको एनवायरमेंट में जाने से पहले ही कैप्चर कर लिया जाएगा, तो ये भी टारगेट है। तो इसमें क्या है कि जो बिजली हम बना रहे हैं सोलर और विंड से, उसको इस्तेमाल करके अगर हम हाइड्रोजन भी बनाएंगे, एक तो हमने बिजली के एमिशंस को ख़त्म कर लिया, और दूसरे हमने जो हाइड्रोजन की वजह से एमिशंस हो सकते थे उन्हें ख़त्म किया। इसके अलावा सोलर के साथ क्या है कि वो दिन में है, जितनी देर सूरज की रोशनी होगी उतनी देर आप बिजली पैदा कर सकते हो उससे। तो हम इस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे पास दिन में बहुत सारी ऊर्जा होगी जो हम सोलर यानी सौर ऊर्जा से बिजली में बनाएंगे। तो अगर हम उसको, जो ऊर्जा हम उससे पैदा कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, तो हम जो हमारा सिस्टम बढ़ा रहे हैं, हम और सौर ऊर्जा भी बनाते जाएंगे, उसके साथ लगाते जाएंगे, उसी को इस्तेमाल करके अगर और हम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे तो ये हमें डबल बेनिफिट हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ पर्यावरण की बात हुई, लेकिन हमें एक अपनी ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के मामले में हम मोस्टली डिपेंडेंट थे यानी आयात के ऊपर, अब सौर ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना है आपको,
1: वो हम खुद कर
0: पवन
1: सकते
0: ऊर्जा
1: हैं।
0: को कहीं से आयात नहीं करना, लेकिन उसके जो कंपोनेंट हैं, पैनल जो इस्तेमाल होते हैं वो आपको बनाने, तो वो उसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और पैनल में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं उस सेल में और दूसरे कंपोनेंट में। इसी तरह से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी पार्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज होता है जो मैंने बताया,
1: जी
0: जो पानी को कन्वर्ट करेगा, उसको लेके के यहीं देश में बने, उसके ऊपर ये मिशन का कंपोनेंट है, उस पर भी मिशन काम कर रहा है, और दोनों ही सेक्टर जो हैं ये रोजगार देने वाले भी हैं,
1: जी
0: लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इनसे हो रहा है।
1: रेहन जी, अभी भारत में रेन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन एक ऐसे समय पर हो रहा है जब देश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले ही हरित हाइड्रोजन ट्रेन को भी झंडी दिखाई थी। तो इस सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये केवल एक उपलब्धियों का

0: साझा करने का मंच है या फिर भविष्य की योजनाएं हैं जो रोड मैप है उनको साझा करने की दिशा ये प्रदान करेगा?
1: ये अवसर दोनों चीजों के लिए होगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह से हमने अपने ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन हम लाए हैं, ये ऊर्जा क्षेत्र में एक मिसाली परिवर्तन है। ऐसा एक डेवलपिंग कंट्री जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री भी है, जिसको अपनी ऊर्जा ज़रूरतें भी पूरी करनी थी और साथ में ये पर्यावरण कह लीजिए, ऊर्जा सुरक्षा कह लीजिए, उन दोनों को देखते हुए जितनी तेज़ी से हमने ये बदलाव किया है, ये बहुत सारे देशों के लिए इससे क्या प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, सीखने का स्रोत हो सकता है, या वो इसको अपने यहाँ पर भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि इसमें बहुत काम हो चुका है, लेकिन आगे सालों, जैसे मैंने बताया, इसमें हमारे आगे के सारे टारगेट सेट हैं, जिसे कहना चाहिए हमारा जो विजन और पाथ है वो क्लियर है, तो ये उसके लिए भी मौका है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, किन चीज़ों को हम और मजबूती देंगे। और तीसरी बात ये कि ये कोई भी जो क्षेत्र है, वैसे भी ऊर्जा क्षेत्र, ग्लोबल वार्मिंग, नेट ज़ीरो, ये सब बहुत बड़े काम हैं। इसमें अंतर्देशीय इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक दूसरे से सीखना समझना, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है।
0: आप जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो श्रोताओं को हम ये जरूर बता देंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक सदस्य देशों के रूप में काम करता है और दुनिया के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में भी हमारा नाम शामिल है। तो ऐसे में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका क्या निभाई जा सकती भारत के द्वारा, खासतौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारत लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार ऐसे नीतिगत फैसले भी ले रही है कि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ें।
1: भारत ऑलरेडी इसमें कई सेक्टर में नेतृत्व की तरफ है, और जो आपने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें नेतृत्व भारत का ही है और ये भारत की ही पहल पर बना और बहुत अच्छी पहल है। उसमें अब तो 120 से ज्यादा देश उसमें जुड़े हुए हैं और जो हमारी लर्निंग्स हैं, जो हमने किया वो हम साझा करते हैं उनसे। उसके अलावा एक और भारत का इनिशिएटिव है, इसी से रिलेटेड, उसे कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वो भी भारतीय पहल है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसमें क्या है कि आइडिया ये है कि सूरज तो कभी नहीं ढलता है, आज यहाँ नहीं है तो दूसरे देश में चमक रहा है, नहीं तो तीसरे देश में चमक रहा है, तो कैसे हम एक दूसरे की मदद से उसका और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अब मैंने बताया, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग में भी, तो वो सोलर की मैन्युफैक्चरिंग हो या इलेक्ट्रोलाइजर्स की हो, ग्रीन हाइड्रोजन की, उसमें भी तेजी से बड़ा काम हो रहा है, तो इसमें भी हमारे सामने मौका है कि हम इसमें भी नेतृत्व प्रोवाइड कर सकते हैं।
0: रेहन जी, वापस अगर हरित हाइड्रोजन की हम बात करें तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्टील की बात है, फर्टिलाइजर की बात है, रिफाइनरी है, शिपिंग है, भारी परिवहन, जैसा कि ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते, इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य देखा जा रहा है इस ईंधन का, कि ये ईंधन हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, लागत कम आएगी, रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा और आगे चल करके जैसा आपने बताया था कि डिपेंडेंसी वाली बात जो है वो उसमें काफी कमी आएगी। आज जो आप देख रहे हैं तमाम चीजें, तो आपको क्या लगता है कि हमारा आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है और साथ ही हम कितना आगे तक जा सकते हैं?
1: देखिए, आवश्यकता की तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरह के हालात बने या बनते रहते हैं जियोपॉलिटिकल, उसमें ऊर्जा सुरक्षा तो सर्वोपरि है और ऊर्जा सुरक्षा पे जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, और हमें जरूर इस पे आगे बढ़ना होगा, करना होगा। और मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 सालों में शुरुआती दौर में हम एक एक्सपेरिमेंट टाइप फेज में थे, जब हम ये देख रहे थे कि सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी और जो है वो कितना हम यूज कर सकते हैं, कैसे प्ले आउट करेगा। लेकिन उसके बाद फिर 2014 और 15 के बाद जो हमारा ना, वो एक तरह का एक्सपेंशन फेज था। आज आप देखें कि सोलर एनर्जी एक आम तौर पर एक्सेप्टेड सिस्टम है, लोग अपने आप ही लगा रहे हैं, सरकार की मदद है, किसानों और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को जो घरों में लगा रहे हैं, और आप देखो 50 लाख के करीब तो रूफ टॉप सोलराइजेशन हो गए, किसान भी लगा रहा है। तो ये अब हम इस दौर में आ गए हैं कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा हमारे मेन सिस्टम रहेंगे और हमारे सिस्टम इसके इर्द गिर्द ही डेवलप होंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे मैंने बताया कि ना सिर्फ ये कि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की तरफ एक कदम है, लेकिन पर्यावरण की तरफ भी कदम है, मगर साथ साथ ये हमारी नई ग्रिड जो हम बना रहे हैं, ये जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा होगी मेनली, उसमें भी ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे।
0: सरकार जिस तरह से इन योजनाओं को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में सोलर मॉड्यूल, पैनल, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर, ये जो उपकरण है, इन्हें घरेलू स्तर पे अगर बढ़ावा मिलेगा तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव देखने को हमें मिल सकते हैं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो स्वयं का कुछ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जो टेक्नोलॉजी है उसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, यानी आम लोगों में उसकी पूरी तरह पहुंच हो जाए, उसमें उसके पर्यावरण के एंगल के साथ साथ उसके पैसे का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। लोग ये भी देखते हैं, जैसे हमने सौर ऊर्जा को किया, आज वो सबसे इकोनॉमिक, सबसे कम कॉस्ट वाली ऊर्जा स्रोतों में से है, तो वो पिछले जो 10-12 सालों की जो डेवलपमेंट थे उसी से हुआ। इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन में क्या है कि अभी कोशिश ये है कि इसकी कॉस्ट ग्रे

0: हाइड्रोजन के बराबर या उससे भी कम लाई जा सके। उसी की तरफ ये घरेलू उत्पादन जो आपने भी बताया PLI और सब स्कीम्स से हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर को भी बनाया जाए जिससे कि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो फिर वो उसकी वाइड एप्लीकेबिलिटी और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी तरह से एक स्टार्टअप स्कीम है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पार्ट है, MNRE की स्कीम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसमें छोटे स्टार्टअप्स नए नए आइडियाज को भी समर्थन, ना कि तकनीकी सपोर्ट दिया जाएगा बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर एक बहुत हैपनिंग और एक्टिव सेक्टर है और इसमें बहुत काम हुआ है और आगे भी बहुत काम होता रहेगा और हम ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण बचाना और साथ साथ जॉब क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
1: रिहान जी, बिल्कुल अंत में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। हमेशा मन में होता है कि यदि कोई नई चीज आ रही है तो आम लोगों तक पहुंचे वो, जैसे हरित हाइड्रोजन, आपको लगता है कि बहुत ही जल्द ये सामान्य लोगों तक इसकी पहुंच हो जाएगी?
0: आम आदमी के लिए डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कम है क्योंकि आप देखिए वो इंडस्ट्री में यूज होगा या बड़े ट्रांसपोर्ट में भी बड़े लेवल पर होगा आम आदमी के लिए, लेकिन कुछ जो कार है जैसे गाड़ी उसके अंदर हाइड्रोजन के इस्तेमाल में भी काफी अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर सेक्टर में देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन वाइडर एक्सेप्टेंस की तरफ है और अच्छा इसका भविष्य है।
1: रिहान जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: कंट्री वाइड

0: वातावरण का बदलता क्षितिज। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर के जी सुरेश, फिल्म निर्माता और मीडिया विशेषज्ञ अर्चना कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और संपादक अंजुम शर्मा और प्रिंट और मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। इस वार्तालाप का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी गौरा धवन लाल।
1: वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स, ऑल आवर व्यूअर्स हियर इन द लाइव ऑडियंस हियर एंड ऑफ कोर्स हमारे सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक री इमेजिनिंग ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण का बदलता क्षितिज। इस टॉपिक में दो शब्दों ने बहुत एक्साइट किया और सबसे पहला है री इमेजिनिंग और दूसरा है बदलता, क्योंकि यही दो शब्द हैं जिनमें गति है, प्रगति है। दिस क्रिएटिविटी, दिस एक्साइटमेंट, दिस मूवमेंट। एंड आज का फोकस भी इन द कॉन्वर्सेशन, वी हैव अ वेरी एस्टीम्ड पैनल, डाइवर्स पैनल अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स। आई थिंक हर 5 साल में जनरेशन बदलती है, तो डेफिनेटली अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स हमारी पैनल भी है विद वेरिड एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस। और इसमें से बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली पिछले 15-20 सालों में इस क्षितिज को बदलता हुआ देखा है। सो इट्स लाइक अ बिफोर एंड आफ्टर सी चेंज आया है। सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अर्चना कपूर इज अ वेल नोन कम्युनिटी मीडिया स्पेशलिस्ट, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर विद ओवर 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हर फ्लैगशिप इनिशिएटिव रेडियो मेवात इज अ 2-time नेशनल अवार्ड विनर। शी इज द रिसिपिएंट ऑफ क्वाइट अ फ्यू लॉरल्स एंड अवार्ड्स। अर्चना, वेलकम टू द प्रोग्राम। हमारे अगले पैनलिस्ट डॉक्टर अंजुम शर्मा। डॉक्टर अंजुम शर्मा कवि, संपादक और पत्रकार हैं जिन्हें साहित्यिक और सांस्कृतिक एरियाज में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। वे कम्युनिटी रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन, बीबीसी हिंदी से भी जुड़े हैं। डॉक्टर अंजुम को अनेक अवार्ड से भी नवाजा गया है। अगले पैनलिस्ट उमेश चतुर्वेदी। With over 30 years of experience in the news industry, including the print and electronic media, Umesh joins us here today. More than 15 of these years were spent in television news, covering the entire functional gamut of the news business, that is reporting, scripting, research and post-production. Well, currently he's working with Prasar Bharati. He's also a media teacher and

0: also engages with actually designing the syllabus, which is done for a number of universities for their mass communication course. Our final panelist, Dr. K.G. Suresh. Dr. K.G. Suresh is a senior journalist turned academician. He is currently the director of the India Habitat Center and is also a senior adjunct fellow with a leading think tank of the Global South Research and Information System for Developing Countries. He has served as the vice chancellor of many universities, including the Indian Institute of Mass Communication, Delhi, which is India's premier media training institute. And of course, he also is a recipient of many prestigious awards. And of course, a very, very warm welcome once again to the audience. I think when we're talking in front of a live audience, the tone, tenor, and energy changes rather than just a discussion in the studio. So thank you very much, All India Radio, for ensuring all this for us today. So I'd like to actually start with you, Anjum. जब हम क्षितिज की बात करते हैं जब हम एक न्यू होराइजन की बात करते हैं एंड जेनरेशनली जब हम चेंज देखते हैं तो अगर हम री इमेजिन कर रहे हैं रीविजिट कर रहे हैं इंटर जेनरेशनल शिफ्ट जो इस री इमेजिनिंग में और रिक्रिएटिंग में आएगा वो किन एरियाज में आना चाहिए
1: मुझे लगता है कि जब हम री इमेजिन कोई भी चीज कर रहे होते हैं इसमें एक शब्द है री हमें फिर से विचार करना है फिर से इमेजिन करना है तो जाहिर है आपके पास अगर स्मृतियां नहीं है तो आप नई स्मृतियां बना भी नहीं पाएंगे यानी आप री इमेजिन कैसे करेंगे आपके पास पहले का कुछ ना कुछ होगा उसके आधार पर आप री इमेजिन कर पाएंगे तो मैंने वो दौर देखा है जब अमीन सयानी के बाकायदा कार्यक्रम आया करते थे और हम उन्हें सुना करते थे तो हमने भाषा के स्तर पर हमने री इमेजिन करना शुरू किया जब हम कहते हैं कि रेडियो की भाषा बहुत चित्रात्मक होनी चाहिए ताकि मैं उसको इमेजिन कर सकूं क्योंकि रेडियो का जो मीडियम है वो सबके लिए है उनके लिए भी है जिनके पास दृष्टि नहीं है और उनके लिए भी है जिनके पास है कि हम किस तरीके से भाषा के स्तर पर हम बदलाव लाते चले गए जब मैं अब उसको रीइमेजिन करने की कोशिश करता हूं तो पूरा 2000 का दशक निकल जाता है और 2010 का पूरा एक दौर आता है जिसमें हमने चैनल्स की बाढ़ देखी और उसके बाद 2020 के अगर हम दशक में आए खासतौर पर 2012-13-14 के बाद में जब हमने इंटरनेट की क्रांति देखी जो क्षितिज में बदलाव आया है वो फीडबैक के लेवल पे आया है विल्बर श्रम जिसे केवल सेंडर मैसेज और रिसीवर की बात करते थे वहां पर डेनिस मैकवेल की एक थ्योरी काम करती है जिसमें वो बोलते हैं कि श्रोता या रिसीवर अब पैसिव फॉर्म में नहीं रह गया है वो एक्टिव है तो बदलते हुए क्षितिज में मुझे तुरंत आवाज अपनी सुनाई दे रही है पहले मुझे साप्ताहिक रूप से एक पत्र लिखना पड़ रहा था लेकिन अब मैं तुरंत उसको देख पा रहा हूं इस बदलते हुए क्षितिज में हमने रेडियो को टीवी पर आते हुए देखा है जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि रेडियो जो सुनने की चीज है वो मैं देखते हुए सुन सकता हूं यानी आपकी एक चित्र लगा दिया गया है और अब मुझे पता है कि गौरा जी कैसी दिखती हैं पहले मुझे नहीं पता था वो कैसी दिखती हैं तो मैं उनको इमेजिन करते हुए उनका चित्र देखते हुए हम चारों का मुझे पता है शाम को यूट्यूब पे एक थंबनेल लग जाएगा और बकायदा उस पर लिखा जाएगा कि क्या क्या आ रहा है रात में हम किस बारे में विचार कर रहे हैं या बात कर रहे हैं पहले आपके पास सुविधाएं नहीं थी तो बदलते हुए क्षितिज में हमने ये सब चीजें देखी
0: थैंक यू अंजुम कभी कभी ना देखने में ही सुंदरता होती है और कभी कभी ये चिंता भी होती है कि जो विजुअल मीडियम होता है केजी विल बी कमिंग टू यू फॉर दिस दैट समटाइम्स द विजुअल मीडियम कैन टेक अवे फ्रॉम द ऑडियो इंपैक्ट यू हैव सीन ट्रांजिशन टुडे वी आर टॉकिंग ऑफ अ विजुअल रेडियो हाउ डू यू सी दिस ट्रांजिशन हाउ डू यू सी दिस
2: आई थिंक दैट रेडियो इज समथिंग दैट हैज सर्वाइव्ड द विसिसिट्यूड्स ऑफ टेक्नोलॉजी टेलीग्राम हैज वाउंड अप Landline telephone has wound up, but not radio. The romance with radio continues. The charm of the radio continues even today in different formats. And I think one of the reasons is that radio carries a certain amount of trust and credibility. I have worked in other media also. But when you make a comparative study, it becomes clear that radio has earned, and it's an earning, earned much more trust and credibility than many other media. So that is one reason that people continue to trust it. Secondly, radio remains relevant to a large segment of our population. Whether it is the agriculturist or the fisherman, it remains relevant to the common man. It hasn't become irrelevant, disconnected with the people at large. Now, in this context, I'll come to your question.
0: Right.
2: And that is, the future is certainly visual storytelling. Storytelling has always been the forte of mass communication. But now we are getting into the age of visual storytelling, where because it has been said that a photograph can speak 1,000 times.

0: times better than a word. So it is more powerful. So the visual is now part of audio. That's why now we are talking about audio-visual mediums. And the digital revolution which has happened has enabled this. And I'm glad, I must say, that one of the most important programs in recent times on radio worldwide has been Mann Ki Baat. It has become a force multiplier. What visual does is force multiplication. Because what is in the realm of imagination, as he said, you can see it there. So I believe that people are increasingly, yet at the same time, you also see when you talk about the future or reimagining broadcast, you also talk about podcasts. Now, podcasts are no more just the audio part of it. It is also the video part of it. So I think that broadcast is entering a very, very exciting era. There is a combination of both audio and video. And this is going to be the defining, so far as the paradigm shift in broadcasting that is happening.
1: Umesh, KG just spoke about, I think, the understanding that broadcasting and telecasting are now, broadcasting is going to subsume in itself for telecast. That's the need of the hour. Then he earlier spoke of romance and charm. So do you think that when we're looking at broadcasting as visual and audio, in the future, as we're looking at, would radio by itself, as separate, I know broadcasting is definitely an umbrella term, would radio still retain a USP and what would it be?
2: Akashvani ke 90 saal hal hi mein pure hue hain. 8 June ko 90 साल पूरे होने पर इसी कैंपस में कार्यक्रम हुआ था और उसमें हमारे आकाशवाणी के महानिदेशक ने बाकायदा इसकी घोषणा की थी कि अगले साल से हम कुछ शहरों में विजुअल रेडियो स्थापित करेंगे कि विजुअल रेडियो की किस तरह से उपयोगिता भविष्य में दिखेगी और किस तरह से उसको विकसित होना है, किस तरह से उसको प्रसारित होना है, किस तरह से उसका प्रसार होना है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको याद करना चाहिए यहाँ कि रेडियो के विकास में, वैसे तो 1923 से ही भारत में प्रसारण शुरू हो गया था, रेडियो क्लबों से शुरू हुई ये प्रसारण की यात्रा यहाँ तक पहुंची है और इसमें तकनीक के तमाम तरह के सोपान तय हुए हैं। उसमें आप देखेंगे कि 1995 का साल है जो रेडियो के लिए एक अलग तरह से टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इंटरनेट उसी दौर में आता है और उसी दौर में कमोबेश एक आध साल आगे पीछे एफएम, जिसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूला कहते हैं, वो आता है। उस दौर में हमारा बचपन रहा है जब हमारे यहाँ रेडियो आता था तो उसको एक सोशल स्टेटस के रूप में देखा जाता था। हमने वो यात्रा भी देखी है, जो पारंपरिक तकनीक थी उसको भी देखा है और एफएम और इंटरनेट के बाद की भी तकनीक को देख रहे हैं। और 1995 की जो इंटरनेट क्रांति है उस रेडियो को एक जीवंत राह देता है। विजुअल रेडियो थोड़ा सा कल्पना करना कठिन होता है कि एक रेडियो भी ऐसा हो सकता है जो विजुअल हो सकता है। 1995 के बाद इंटरनेट आता है और जो माध्यमों का, मीडियम्स का कन्वर्जेंस होता है, तो आप उसमें देखेंगे कि हर माध्यम में समाया हुआ है। अखबार जो है वो भी इंटरनेट पर है और ट्रेडिशनल अखबार भी है जो हम पढ़ते हैं कागज पर, रेडियो भी उसी फॉर्म में आ चुका है, ट्रेडिशनल रेडियो सेट में भी सुन रहे हैं और हम उसको इंटरनेट के माध्यम से भी सुन रहे हैं। रेडियो के भी जो छोटे छोटे बाइट्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, वो भी आ रहे हैं। स्मृतियों से शुरू हुई यात्रा तकनीक के इस लेवल पर पहुंच गई है। लेकिन इस सब पूरी यात्रा में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हर आशंका को झुठलाते हुए रेडियो जिंदा है और रेडियो के पास 70-80 साल का प्रतिबद्ध श्रोता भी है, डिवोटेड लिसनर, और जेन जी भी है, और सबकी चुनौती को सामना करना है रेडियो को।
1: जी, आपने एक बात कही कि रेडियो अभी भी जिंदा है और आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं सारे मीडियम एक मीडियम दूसरे मीडियम में समाया हुआ है। बट जस्ट टू शेयर कि आकाशवाणी का एजेंडा हमेशा अलग रहा है, आउटरीच का है, किसान का है, डिफरेंट, तो आई थिंक उसको रखते हुए इन टर्म्स ऑफ लिसनरशिप जब हम देखते हैं और आंकड़े भी सामने आए हैं तो आउटरीच अभी है। मैं आपसे ये सुन रही हूँ कि हमारे जो श्रोताओं की जो डिवीजन होती है, जो लिसनर्स की डिवीजन होती है, कैटेगरीज अलग होती हैं और अलग अलग कैटेगरीज को केटर करने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मीडियम एंड वी ऑल एवरी मीडियम परफॉर्म्स अ रोल, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे आउटरीच हो, चाहे सोशल ब्रॉडकास्टिंग। आपके पास आते हैं अर्चना, जब सबका अलग अलग रोल है, कम्युनिटी रेडियो में आपकी माहिरता है, यू हैव बीन फ्रंट रनर इन प्रोपगेटिंग दिस एंड एस्टैब्लिशिंग दिस एज अ वायबल मीडियम, इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू सी द होराइजन एंड व्हेन यू सी आगे, before you talk about community radio and understanding from you and your experience, what are say three new ideas

0: तिज पे वो नज़र ही डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचता तो कोई नहीं है, जितने पास जाओ उतना दूर चला जाता है। तो जब हम कोई क्षितिज को देखते हैं आगे, और ये अच्छी बात है, इसी बहाने हम क्षितिज की डिमांड में या नीड में आगे बढ़ते हैं। सो जब हम आगे देखते हैं और हम ऑडियो विजुअल इससे अलग जाते हुए, ये समझने के लिए कि आजकल अगर हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, देखिए कितना कुछ है। वो कहते हैं जब चूज़ करने के लिए इतना कुछ होता है तो मैं कुछ भी नहीं चूज़ कर पाती। तो इसमें हम डिफ्रेंसिएशन कैसे ला सकते हैं, क्वालिटी पे एम्फेसिस इन ब्रॉडकास्टिंग कैसे आ सकता है?
1: जी, एक शब्द उठा, पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, जाहिर सी बात है। विजुअल पॉडकास्ट तो बहुत बाद में आया, साल 2002 में द गार्जियन के रिपोर्टर थे बेन हैमर्सले, उन्होंने कहा कि आने वाला दशक पॉडकास्टिंग का होगा, क्योंकि उस टाइम पे आईपॉड बहुत फेमस हुआ करते थे, तो आईपॉड पर जो कास्टिंग हुई उसके थ्रू वो पॉडकास्ट फैलता चला गया। साल 2007 में रिकी जार्विस बहुत बड़े पॉडकास्टर रहे, किसी को अंदाजा नहीं था कि चार साल के भीतर भीतर जो मीडियम अभी अभी आया है वो मीडियम इतना लोकप्रिय हो जाएगा कि 1 मिलियन डाउनलोड हो जाएंगे और आप उसको बाद में सुन सकते हैं। बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा से लेकर तमाम लोगों ने पॉडकास्टिंग शुरू की और लोगों ने उसको दूर तक पहुंचाया। कोविड के समय पर ऑडियो पॉडकास्टिंग बूम पर थी, कोविड के बाद जब रील्स का दौर आया उसमें 50% की गिरावट हुई है, यानी ऑडियो पॉडकास्टिंग धीरे धीरे कम होती चली गई। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान धीरे धीरे वीडियो पॉडकास्टिंग पर चला गया, तो आप ऑटोमेटिकली विजुअल मीडियम की तरफ बढ़ चुके हैं। हाँ, जो बात इन्होंने क्वालिटी की कही मैं मानता हूँ। दरअसल होता क्या है, जब आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं अचानक से, तो आपका ध्यान समाज की तरफ कम, ऑडियंस की गिरफ्त पकड़ने की तरफ ज़्यादा रहता है। आप अपने एल्गोरिथम को एक ही तरीके से ले जाना चाहते हैं, क्योंकि रेंज आपकी बहुत बड़ी हो जाती है, वहाँ पर क्वालिटी गिरती है, क्योंकि मुझे व्यूज़ की अब दरकार है, मुझे कंटेंट नहीं, मुझे इस टाइम क्वालिटी नहीं, मुझे क्वांटिटी चाहिए। जैसे ही आप व्यूज की तरफ जाएंगे आप क्वालिटी से गिर जाएंगे। आकाशवाणी रेडियो ने हमको उच्चारण सिखाया, हमें सिखाया कि क ख ग घ ङ के बाद ख और क और ग भी एक ध्वनि होती है, यहां पर आप बदलते हुए क्षितिज को देखते हो।
0: आई थिंक आप जो बात कर रहे हैं कंटेंट की, और कंटेंट को कौन ड्राइव करता है, क्या ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट को इन्फ्लुएंस करता है या लोग जो कंटेंट मांगते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं या कंटेंट में? एंड आई ऑलवेज नो दैट दिस इज अ वॉर व्हिच इज इनवेरिएबली देयर, हु इज रिस्पांसिबल फॉर द क्वालिटी, डू वी गिव व्हाट इज आस्क्ड फॉर और डू वी टेल देम व्हाट यू शुड आस्क फॉर? एंड आई थिंक ये दुविधा रही है। केजी, कमिंग टू यू, टू थिंग्स, वन इज ऑफ कोर्स हाउ वी द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी लाइक यू स्पोक अबाउट इन द फोर्स मल्टीप्लायर, बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट इन टर्म्स ऑफ द चेक्स एंड बैलेंसेज स्पेशली फॉर द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कि कंटेंट के गार्डरेल्स कुछ ज्यादा ही हैं। कभी कभी हम मानते हैं कि गार्डरेल्स हमें बढ़ने नहीं दे रही, हमें एक्सपैंड नहीं करने दे रही, हमारी विजन सीमित रख रही है, बट कभी कभी हमें ये भी लगता है कि ये मेरी टारगेट और गार्डरेल्स मुझे आगे लेके जा रही है। तो ये बैलेंस कैसे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर मेंटेन करेगा कि हम फिर भी रेलिवेंट रहें?
2: जब मैं रेडियो में प्रोग्राम दे के बाहर निकलता हूँ और वो ब्रॉडकास्ट होता है, तो मुझे 10 फोन आज भी आते हैं लोगों का कि आपको आज इस विषय पर सुना, ये मुझे किसी और माध्यम में नहीं मिलता है। आई गो टू सेवरल प्लेटफॉर्म्स बट दिस इज द वन प्लेटफॉर्म वेयर आई स्टिल रिसीव फीडबैक एंड पीपल टेल मी दैट सर, कई लोग ऐसे कहते हैं हम तो शाम को ड्राइव कर रहे हैं, मैंने किसी को बताया नहीं होता है और हमने चलते चलते सुना। तो ये रेडियो का चार्म है, रेडियो का चार्म है कि मैं बगैर टीवी में देखे, बगैर मोबाइल को पकड़े, मैं अपना डे टू डे काम करते हुए भी मैं रेडियो के म्यूजिक को, डिस्कशंस को सुन सकता हूँ। दैट इज द चार्म ऑफ द रेडियो दैट स्टिल एंड्योर्स। ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की बात कही, क्रेडिबिलिटी ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है, इंडिविजुअल्स के साथ नहीं जुड़ी है। ऑल इंडिया रेडियो की मैं बात कर रहा हूँ, यस, ऑल इंडिया रेडियो की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज भी मेजॉरिटी ब्रॉडकास्टिंग मतलब ऑल इंडिया रेडियो है। ऑल इंडिया रेडियो इज सिनोनिमस विद ब्रॉडकास्टिंग। आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द रोल ऑफ द प्राइवेट FM चैनल्स, बट Radio today immediately comes to your mind is the All India Radio, the Akashwani Network. And how credibility? Credibility because hum sensationalize nahi karte hain, hum sansani nahi phailate hain, hum TRP ke race mein nahi hain, hume jo hai mahol banane ki zarurat nahi hai. Aaj jab main radio ka bulletin sunta hoon to mujhe pata hai ki aaj desh mein kya hua hai, खेलकूद के क्षेत्र में क्या हुआ है, राजनीति में क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या हुआ है। आई गेट ए बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल न्यूज, आई डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद वन न्यूज़।

0: आई बिलीव दैट ऑल इंडिया रेडियो में आज भी आप शाम को सुनेंगे तो उसमें पूरे देश भर के समाचार होंगे। लास्ट क्रेडिबिलिटी की बात, हम मन की बात कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। मन की बात की स्वीकार्यता पर पीएचडी हुए हैं कि क्या सोशल इंपैक्ट उसका हो रहा। एक प्रोग्राम है जहां लोगों को सुना जाता है, उनके व्यूज को लिया जाता है, उनसे बात किया जाता है और ऐसे ऐसे चीजों के बारे में हमको बताया जाता है जिसके बारे में देश के मुख्यधारा की मीडिया को भी कोई खबर नहीं है कि ऐसा अच्छे काम हो रहे हैं देश में। उसके बारे में स्पेसिफिकली द प्राइम मिनिस्टर रेजेस दोस पॉइंट्स। अब मैं विजुअल स्टोरी टेलिंग की जो आपने बात कही, मैं ये कहूं कि भाई हमारा तो टेलीफोन का तो मतलब तो लैंडलाइन था, तो उसको तो रिटेन करना ही है, हमको इनोवेट करना है। उसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने फंडामेंटल्स को छोड़ दें, लेकिन हम डाइवर्सिफाई करेंगे। हम जो है विजुअल मोड में भी जाएंगे, हम जो है सोशल मीडिया में भी जाएंगे, लेकिन हमारा कोर स्ट्रेंथ हमारा ब्रॉडकास्टिंग रहेगा। बट वी विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्ट विल रिमेन, दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर। बिकॉज टेलीविजन चैनल्स का काम नहीं था वेबसाइट चलाना, क्यों चला रहे हैं? शॉर्ट न्यूज क्यों चला रहे हैं? रील्स के फॉर्मेट में क्यों आ रहे हैं?
1: अखबार भी निकाल रहे हैं,
0: अखबार भी निकाल रहे हैं, क्यों? तो ये हमें समझने की जरूरत है कि आपको टेक्नोलॉजी और वक्त के हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई करना है। दैट डज नॉट इन एनी वे डाइल्यूट योर कोर स्ट्रेंथ। और हमारा कोर स्ट्रेंथ ब्रॉडकास्टिंग है। एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक लास्ट बात मैं कह दूं, आई बिलीव दैट नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू फार्मर्स एंड फिशरमैन एंड ऑल दैट, इस देश के कलाओं को, संस्कृति को संवर्धन करने में आकाशवाणी का एक बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश के कलाकारों को तैयार करने में, आज भी कलाकार मुझसे आके मिलते हैं हैबिटेट सेंटर में और मुझसे कहते हैं सर मैं आकाशवाणी ए ग्रेड आर्टिस्ट हूं, मैं ये ग्रेड आर्टिस्ट हूं। उनका रिकॉग्निशन है। आकाशवाणी की इतनी बड़ी एक भूमिका है, इट टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर सोसाइटी। व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट जर्नलिज्म, सॉरी टू से, नन ऑफ द प्राइवेट चैनल्स आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट जर्नलिज्म। ओनली प्रसार भारती इज टॉकिंग अबाउट, एंड कम्युनिटी रेडियोस ऑफ कोर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट।
2: उमेश, आई थिंक सोशल इंटरेस्ट हो चाहे एंटरटेनमेंट हो, कमर्शियल इंटरेस्ट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, इवन सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ चैनल, अ लॉट डिपेंड्स ऑन क्या वो सस्टेनेबल है। तो ये कॉमर्स, सोशल, एंटरटेनमेंट, इसको बैलेंस करना फ्यूचर में आप कैसे देखते हैं?
3: मुझे लगता है कि थोड़ा अपने इतिहास को भी और उसके बेस को भी झांकना चाहिए कि आज जो प्रसार भारती रन कर रही है, बीजी बर्गीज कमेटी की सिफारिशों से रन कर रही है। जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर को जो होना चाहिए, उसको अपनी परंपरा की पूंजी की बुनियाद पर, अपने संस्कृति की पूंजी की बुनियाद पर आगे बढ़ना होगा और उस पहचान को बनाए रखना होगा। और कमर्शियलाइजेशन की आप जो बात कर रही हैं, वो कमर्शियलाइज प्रसारक और सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका में कुछ तो अंतर होगा ही, वो उस तरह से बाजार के हवाले नहीं हो सकता। आपको मैं बता दूं, चुनाव की गिनती होती थी ना, तो जो फाइनल ब्रॉडकास्ट करने के लिए, टेलीकास्ट करने के लिए और भरोसा करने के लिए हम सब लोग रेडियो की कमेंट्री सुनते थे और अपने एक इनपुट डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी लगा के रखते थे कि भैया जरा रेडियो से टैली करते रहो। क्यों? क्योंकि रेडियो ने उसने डूज और डोंट्स का एक बहुत क्लियर वो बना के रखा। मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बहुत स्पष्ट है कि जब तक हम पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करते हैं तो हम कोई खबर नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है जो आपने कहा, प्रसार भारती या रेडियो प्रसारण जो है, जो यहाँ चर्चा चली, तो मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि हमारी पहचान हमारे मूल ऑडियो मीडियम के ही रूप में है और बनी रहनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, रेडियो अगर विजुअल हो रहा है तो विकास के साथ कदम ताल कर रहा है और तकनीक जो है ना, आपको अपनी पुरानी पहचान में बांधने नहीं देती। वो आप एडाप्ट करें चाहे ना करें, वो आपको एडाप्ट करने के लिए मजबूर करती है। मुझे लगता है रेडियो प्रसारण के साथ भी वही बात है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपना अपना परसेप्शन सिर्फ थ्रो करते रहेंगे।
2: एक सुंदर शब्द पे आपने इस कार्यक्रम को एक आई थिंक अंतिम पड़ाव पे ले आए हैं, परसेप्शन। और वही शब्द है जिससे हमने शुरुआत की थी, हमने व्यूइंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ व्यू की बात की थी। एंड मेनी ऑफ द पीपल इन द ऑडियंस आर कनेक्टेड टू ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक काफी सारे तार अंदर भी खनके होंगे, है ना, सितार बजा होगा। लाइक टू इनवाइट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस।
4: जी, मेरा नाम कीर्ति बैद है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कर रही हूँ आकाशवाणी के प्रसारण कर्मियों पर। तो आकाशवाणी का जो

0: आर्काइव है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप बात करें।
1: मैं ये सवाल अपने सारे एक्सपर्ट्स को देती हूँ, एंड कौन बात करना चाहेगा?
2: आकाशवाणी का बहुत ही समृद्ध आर्काइव है। रेडियो ने खास तौर पर शास्त्रीय संगीत को निष्ठा से संरक्षित किया है, और मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी थाती है। ना सिर्फ आकाशवाणी की यह थाती है, ना सिर्फ यह प्रसार भारती की है, बल्कि यह भारत की थाती है। और दूसरी बात यह मैं कहना चाहूँगा, आपको संविधान सभा की पूरी डिबेट्स मिल जाएगी यहाँ। और जिन आवाज़ों की पहचान की हम बात करते हैं, उन पहचान को भी अगर आपको ढूंढना है, खोजना है, तो आर्काइव में जा सकते हैं। और एक बात और है कि आर्काइव का अपना यूट्यूब एक अलग से चैनल भी है, आप उसमें अद्भुत अद्भुत इंटरव्यू भी सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आई थिंक वील क्लोज द प्रोग्राम हियर। अर्चना, अंजुम, उमेश, के जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम।
3: प्रसारण का बदलता क्षितिज, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये विशेष वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर केजी सुरेश, फिल्म निर्माता और मीडिया विशेषज्ञ अर्चना कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और संपादक अंजुम शर्मा, और प्रिंट और मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। इस वार्तालाप का संचालन कर रही थीं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी गौरा धवन लाल, प्रस्तुति सहयोग जय सिंह और प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत।

अभी हम शास्त्रीय संगीत सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित निखिल बैनर्जी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
2: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। केटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक

पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।